सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा मीडियम वेव और FM के मीटर्स पर एक साथ आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भूराजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल

0: करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

मुरलीधर गोपाल कृष्ण राधा के मन भावन, तेरी बंसी की धुन सुनकर झूम उठा है मधुवन। माखन चोर नटखट काना तेरी लीला है न्यारी, मोर मुकुट और पीतांबर में छवि लगे सबसे प्यारी। यमुना तट पे रास रचाए सबका मन हर लेते हो, जो भी आए शरण तुम्हारी उसे अभय वर देते हो। गीता का उपदेश दिया तो मिटा जगत का अंधियारा, हे नारायण हे जगदीश्वर अब तुम ही हो जीवन का सहारा।

मटकी तोड़ी माखन खाए, ग्वाल बाल संग धूम मचाए, पकड़े जाने पर मुस्काते, मैं नहीं माखन खायो गाते, गोपियां पीछे पीछे भागें, कान्हा तो है सबसे आगे, नटखट लीला सबको भाई, धन्य धन्य हो यशोदा माई।

हम हैं दीवाने ख्वाजा जी तेरे नाम के, छोड़ के दुनिया आए हैं तेरे मकाम पे। तेरी चौखट पे आकर बड़ा सुकून मिलता है, मुरझाया हुआ चेहरा भी यहाँ आके खिलता है। तुमने सबको नवाजा है अपनी रहमत से, भर दी झोलियाँ सबकी तुमने अपनी नेमत से।

गुरुवाणी अमृत की गंगा बहे निरंतर धार, जो मन इसमें डूब ले हो जाता भव से पार। सच्चा मार्ग ये दिखाए हरे मन का क्लेश, अंधकार सब दूर हो उपजे ज्ञान विशेष। नाम सिमरन की रीत सिखाए मन को दे विश्राम, लोभ मोह और क्रोध तज पावे उत्तम धाम। गुरुवाणी अनमोल है हृदय में लो तुम धार, जीवन सफल हो जाएगा महकेगा संसार।

माँ लक्ष्मी तुम घर में आओ, खुशियाँ भर दो हर आंगन में। हाथ जोड़ हम शीश झुकाते, प्रेम भाव से तुम्हें बुलाते। खुशियों से भंडार भरो माँ, सबके संकट दूर करो माँ। कमलासन पर हो सवार माँ, कर दो भक्तों का उद्धार।

श्रोताओं, इसी के साथ आज की वंदना अब यहीं संपन्न होती है। आज की वंदना में भावांजलि थी अनूप जलोटा, नितिन मुकेश, छोटे साले और हरप्रीत कौर की।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: मजहब के कवानीन को अमली जामा देने के लिए मुख्तलिफ शक्ल में इबादत के तरीके मौजूद हैं। दुनिया के हर मजहब में अपने अपने इबादत के तरीकों को राइज किया है। अफलातून ने कहा है कि हमारी इबादतें आम लोगों के लिए दुआएं होनी चाहिए। ये खुदा बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ईरान के जरदश्त हों या यूनान के अपोलो, सूरज देवता या साकाई, हर मजहब के पैरों ने खुदा की अपनी इबादतों से खुश किया है। कभी इंसान ने हाथ जोड़कर नम्रता से सूरज देवता के सामने अस्थियों को झुकाया है, कभी उसके लिए कुर्बानी का एहतमाम किया है। इबादत कुदरत के कवानीन को फर्मा बरदारी का एक तरीका है। ग्रेशियस कहता है कि लोग कुदरती कानून की फर्मा बरदारी खुदा के डर से या फायदे के ख्याल से या मसलहतन नहीं करते, बल्कि उसे अक्ल और आदत से उसकी फर्मा बरदारी करते हैं। अपने अपने मजहब के एतबार से खुदा की इबादत करते हैं। इबादत एक ऐसा अमल है जो इंसान को गुमराही और गुनाह से दूर कर देता है। यजुर्वेद में भगवान की प्रार्थना करते हुए लिखा है, हे प्रभु, हमसे गुमराही और गुनाहों को दूर कर। इबादत ही इंसान और खुदा से मोहब्बत का जरिया होती है। इबादत से इंसान भलाई की दुआ करके बेगरजाना तौर पर अपने आप को खुदा को अर्पित कर देता है और उसमें वो अपने जाती नफे की ख्वाहिश मायूम समझता है। इंजील में खुदा कहता है, इबादत से एक जमीर इंसान की तामीर होती है। इबादत के लिए सबसे बेहतर लफ्ज है वो ये कि खुदा सबसे बड़ा है और हर चीज को जानने वाला है। तौरेत में खुदा कहता है, गौर करो जो तुमने देखा हो और कामयाब होते हो, खुदा पर ईमान लाओ, तुम खुश रहोगे। इबादत हमेशा इंकसारी के साथ और नेक ख्वाहिशात के साथ की जाती है। इबादत नेकी को हासिल करने का वसीला होता है। इबादत से दिलों को सुकून हासिल होता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, खुदा की याद से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। इबादत इंसान में नेकी के ऐसे उसूलों को उसके अंदर जज्ब कर देती है कि अगर किसी नेकी में इंसान को तकलीफ हो या तकलीफ उठानी पड़े तो वो उसे बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि इबादत का पहला उसूल होता है कि तकलीफ जाती रहेगी मगर नेकी बाकी रहेगी। इबादत ही लोगों की नेकी की तरफ बुलाती है और अच्छे काम करने को प्रोत्साहित करती है। इबादत का ताल्लुक मादती मफाद से नहीं होता, ये सिर्फ खुदा और इंसान के रिश्ते को कायम रखता है।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब समय है स्वास्थ्य संदेश का। स्वास्थ्य संदेश में आज जानकारी का विषय है आधुनिक जीवन शैली और कमर दर्द। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनय वर्मा।
2: स्वास्थ्य संदेश के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, यदि आज के दौर की पुराने दौर से तुलना करें तो हम ये पाएंगे कि जहां पहले कमर दर्द की समस्या बुजुर्गों को भी नहीं होती थी, वहीं आज के दौर में युवा ही नहीं वरन बच्चों को भी कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। अगर हम किसी रोग विशेष को हटा दें तो इसके पीछे अत्यधिक संसाधनों से पूर्ण जीवन शैली, शारीरिक श्रम एवं व्यायाम का अभाव, अनुचित खानपान, कमजोर पाचन तंत्र, आदि मुख्य कारण हैं। रीढ़ की हड्डी हमारे संपूर्ण शरीर का आधार है। यह 33 हड्डियों से बनी होती है, जिन्हें कशेरुकाएँ कहते हैं। ये कशेरुकाएँ एक दूसरे से लचीले एवं मजबूत लिगामेंट से जुड़ी होती हैं, जो शरीर के दाएं बाएं आगे पीछे मुड़ते समय इन कशेरुकाओं को अपने स्थान पर बनाए रखते हैं। दो कशेरुकाओं के बीच गद्दी नुमा तंतु उपास्थ होती हैं और कशेरुकाओं के बीच से ही तंत्रिकाएं निकलकर शरीर के सभी अंगों तक जाती हैं। ये गद्दियाँ शॉक एब्जॉर्वर्स की तरह काम करती हैं, जिससे झटकों से ही सुरक्षा नहीं होती बल्कि गतिशीलता के दौरान दो कशेरुकाओं की सतह आपस में रगड़ भी नहीं खाती। इन गद्दियों में एक चिपचिपा चिकना पदार्थ भरा होता है। रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ही तंत्रिकाओं द्वारा हमारा मस्तिष्क संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। वर्तमान समय में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम होगी जिन्हें जीवन में कभी कमर दर्द ने परेशान न किया हो। कमर दर्द उत्पन्न करने वाले सामान्य कारण इस प्रकार हैं। जीवन में शारीरिक सक्रियता का अभाव। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में प्रचलित कार्यशैली में शारीरिक सक्रियता से कहीं अधिक मानसिक सक्रियता जरूरी हो गई है। अपने और अपने परिवार के जीवन यापन हेतु ज़्यादातर लोग इस कार्यशैली को अपनाने को विवश हैं। अलग से कोई शारीरिक श्रम या व्यायाम तो दूर की बात है, दैनिक जीवन की सक्रियता की उपस्थिति भी नगण्य है। परिणाम स्वरूप शरीर की मांसपेशियां एवं स्नायु कमजोर व शिथिल होने लगे हैं। यही कारण है कि आजकल कमर दुखने की समस्या हर किसी के मुंह से सुनने को मिल जाती है। अत्यधिक शारीरिक वजन, अनुचित जीवन शैली और खान पान का ही परिणाम है कि मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अधिक शारीरिक वजन और व्यायाम का अभाव जहाँ शरीर की मांसपेशियों और लिगामेंट्स को कमजोर करते हैं, वहीं शरीर की हड्डियों पर भार भी बढ़ाते हैं। पानी की कम मात्रा का सेवन, बहुत से लोग आदतन कम मात्रा में पानी पीते हैं या पीते भी हैं तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के रूप में। रीढ़ की पेशियों, लिगामेंट्स और कशेरुकाओं के बीच पाई जाने वाली गद्दियों में जल की कमी से कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। तेज गति से वाहन चलाना, जिन लोगों का पेशा ऐसा होता है जिसमें फील्ड वर्क अधिक होता है, वे दोपहिया वाहन पर प्रतिदिन कई कई किलोमीटर यात्रा करते हैं। ज़्यादा समय वाहन चलाने और जल्दबाजी में किसी गड्ढे में वाहन जाने से कमर पर जोर पड़ता है और धीरे धीरे कमर दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कमर दर्द से मुक्ति के उपाय, यदि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया जाए, यानी योग, व्यायाम, उचित आहार विहार को अपनी जीवनचर्या में शामिल किया जाए तो कमर दर्द ही नहीं बल्कि कई अन्य शारीरिक समस्याओं से भी बचाव हो जाता है, क्योंकि कमर दर्द की ही तरह कई अन्य रोगों की जड़ अनुचित जीवन शैली और गलत आहार विहार ही होते हैं। सक्रिय दिनचर्या को अपनाएं। यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि यदि मांसपेशियों को लचीला और शक्तिशाली बनाना है तथा हड्डियों के कार्यभार को कम करना है

0: तो अपनी जीवनचर्या में शारीरिक सक्रियता को महत्व देना ही होगा। यहाँ एक बात तो ध्यान में रखने योग्य है कि प्रातःकालीन आहार में खट्टे फल जैसे आंवला, मौसमी, संतरा आदि को शामिल करने से शरीर कब्ज से मुक्त रहता ही है, साथ ही शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी प्राप्त होने से शरीर की हड्डियाँ शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि हड्डियों के प्रमुख प्रोटीन कोलेजन के निर्माण के लिए विटामिन सी अत्यावश्यक होता है। दिन भर में पानी की उचित मात्रा सही विधि से सेवन करनी चाहिए। सामान्य मौसम में 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करें। भोजन के 1 घंटा पहले व 1 घंटा बाद पानी का सेवन कर सकते हैं। भोजन के पहले व तुरंत बाद पानी का सेवन न करें। आहार में कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का उपयुक्त समावेश होना चाहिए। कैल्शियम हड्डियों एवं पेशियों दोनों की ही मजबूती के लिए आवश्यक होता है। रागी, दूध, दही, पनीर, छाछ, चीज, मक्खन और हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। श्रोताओं, स्वास्थ्य संदेश में आज बस यहीं तक जानकारी। अगले कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी, तब तक नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। जानकारी का विषय था आधुनिक जीवन शैली व कमर दर्द। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनय वर्मा। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस कांड की भाग संख्या 330। सुबह 7 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम लोक रंग, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे मोहन सिंह रीठा गाड़ी के कुछ लोकगीत। सुबह 7:31 पर प्रस्तुत होगा फिल्म संगीत का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

सुबह 9:30 पर सुनना ना भूलिएगा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाला उर्दू प्रोग्राम। सुबह 9:50 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

सुबह 10:30 पर कार्यक्रम सुनहरा दौर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे 70 के दशक के कुछ सदाबहार गीत। दिन में 11 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम धरोहर, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे धारावाहिक और फन बेमिसाल है का कड़ी संख्या 3। दिन में 11:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम मन भावन।

दोपहर 12:10 पर प्रस्तुत होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम। दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम परिवार जगत। दोपहर 2:30 प्रस्तुत होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

शाम 5 बजे से हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। कार्यक्रम आज शाम के साथ शाम 5:15 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:10 पर प्रस्तुत होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

शाम 6:20 पर किसान साथी सुन पाएंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। शाम 7 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम कानून और हम। 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। रात्रि 8 बजे प्रस्तुत होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

0: रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्यिक पत्रिका और रात्रि 10:30 पर प्रस्तुत होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की भाग संख्या 330। कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और संगीत है सतीश भाटिया का।
1: एपिसोड नंबर 330। 330।

कुंभकर्ण वध के बाद युद्धभूमि में अब रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद आ उतरा है। अनेक प्रकार के वाण कृपाण तथा अन्य आयुध चारों दिशाओं में छा गए हैं। इधर वानर और रीछ योद्धा पर्वत खंडों और वृक्षों से उस पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु इनका उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। मेघनाद ने हनुमान, अंगद, नल, नील, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि महारथियों के शरीर अपने अस्त्रों से छलनी कर दिए। मेघनाद के कुछ वाण सर्पों का रूप धारण कर वानर सेना के महारथियों को बांधते जा रहे हैं। तब श्री राम ने अपनी एक और लीला दिखाने के लिए अपने को भी नागपाश में बंधवा लिया। ये देख देवतागण चिंतातुर हो गए। मेघनाद ने तब त्रिशूल से वयोवृद्ध जांबवान पर आक्रमण किया, लेकिन जांबवान ने वही त्रिशूल अपने हाथों से ग्रहण कर मेघनाद पर प्रहार किया, जिसके आघात से वो मूर्छित होकर गिर पड़ा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान की भाग संख्या 330। कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 हुए हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तन्त्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र 11 सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्तवार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सहविश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
2: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्स्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक रूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतृणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिक व्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोक सेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोक सेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्यपरीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेब फलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिक परीक्षा फलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग।

बस दीगा अपना, बहुत वर्ष बीती गई, परदेश ग्रोण सु 10 रुपए नौकरी मेरा घर आई जा बजू।

भुजानी भरा चढ़नी न घरा तेरी बदलो मेरा पोथिया कब यूं से।

अंग्रेज का लड़ाई करी तुमला जतरी को फेरा अंग्रेज के साधु समुंदर पारू पूजा गोसा झंड थमा फेर मोहन गुमान

बिन छड़े खालिन में कोई दिन पहाड़ में तुमले रोजा जे जंगल में न्योई को शबत बिन छड़े की खाई आदलीनी ताई सारा जंगल में बुरुंची पाता लो ठंडा पानी ठंडी हवा भंगरी का पिन जिसकी राणा प्रताप गई जंगल में बिछरा जंगल तुमले तरस के कड़ी दे दिन मोहनदास।

कर दूबा तुमरे सुन मेरा भूलियो। ये भगवान जी दयाशा करो दुर्भागी आमा अगर झंडू छुटा फिर भरता वीर नदी गोसा यापू गोसा बैकुंड धाम जुआरे की घानू सारे भारत तुमके मान लो राम का समान।

0: சொல்கு சாயின் சிங்களோ ஹரிசிங்களோ மோகன் சிங்கா பதியா சத்ரி பரகை முன்னா படி துலியாசே மேருவா பஜ்ரா பதியா குசாயி ராம கோத்தியா போலா ரேடியோ ஸ்டேஷன் மே ஹரோசோத்கள்
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग।
2: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
3: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: भी आजादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा के निशान में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

0: काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: भी आजादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में, उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:18 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान, नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी विविध कार्यक्रमों की हुई शुरुआत। और अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जाँच के लिए गठित विशेष जाँच दल SIT पहुँची अयोध्या, जाँच शुरू। अब समाचार विस्तार से। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें कल से शुरू हो गईं। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा। उन्होंने बताया कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी।
3: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए हब बनेगा और खास तौर पे यहाँ एरोट्रोपोलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाकर बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
2: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई पहली उड़ान से हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसान स्थानीय विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ कल लखनऊ पहुंचे और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। इस अवसर पर सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 trillion की इकोनॉमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़ते हुए एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना

0: में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। आयुष मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस साल योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल से अपनी जांच शुरू कर दी। SIT की अध्यक्षता लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन इसमें सदस्य हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि SIT के सभी सदस्य कल अयोध्या पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। उन्होंने आयुक्त और अयोध्या के DM के साथ मंदिर परिसर का दौरा किया। SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कल वहां मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
4: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
2: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2023 के तहत उत्तर प्रदेश नवीन अनुपूरक पुष्टाहार योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बीते 14 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से इसका शुभारंभ किया। गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्र ने बताया कि इस योजना के तहत 7 श्रेणी के लाभार्थियों को 10 प्रकार की रेसिपी उपलब्ध कराई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए

औपचारिक कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी विविध कार्यक्रमों की हुई शुरुआत और अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT पहुंची अयोध्या, जांच शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 7:32 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

श्रोताओं, आज हम जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस कलाकार को जिसने अपनी मेहनत, प्रतिभा और जज्बे से करोड़ों दिलों में एक अलग जगह बनाई। वो कलाकार जिसने न केवल अभिनय में बल्कि नृत्य की दुनिया में भी एक नया अध्याय लिखा। हम बात कर रहे हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की। 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है, लेकिन भारतीय सिनेमा ने उन्हें एक ऐसा नाम दिया जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि सपनों को पाने का जुनून हो तो कठिन से कठिन रास्ते भी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, हर चमकते सितारे के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है। मिथुनदा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने आर्थिक तंगी, अस्वीकृति और कई मुश्किलों का सामना किया। एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने काम पाने के लिए लगातार संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। साल 1976 में फिल्म मृग्या से उन्होंने अपने अभिनय सफर की शुरुआत की। पहली फिल्म में उनके शानदार अभिनय ने सबका ध्यान खींच लिया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। ये किसी भी नए कलाकार के लिए एक असाधारण उपलब्धि थी। लेकिन असली लोकप्रियता उन्हें मिली 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से। इस फिल्म का गीत आई एम अ डिस्को डांसर ये सिर्फ एक गीत नहीं था बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक तूफान था जिसने भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में धूम मचा दी। मिथुनदा का अनोखा डांस स्टाइल, उनका आत्मविश्वास और उनकी ऊर्जा उस समय युवाओं के लिए एक नया फैशन बन गई थी। उन्हें डिस्को किंग कहा जाने लगा। खास बात यह रही कि उनकी लोकप्रियता रूस और पूर्वी सोवियत देशों तक पहुंच गई, जहां डिस्को डांसर ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। मिथुनदा की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने खुद को किसी एक छवि में सीमित नहीं रखा। एक और वो बेहतर डांसर थे तो दूसरी ओर गंभीर और संवेदनशील भूमिकाओं में भी उतने ही प्रभावशाली दिखाई दिए। प्यार झुकता नहीं, कमांडो, वक्त की आवाज़, अग्निपथ, गुरु, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का अलग अलग रंग दिखाया। सिनेमा के जानकार कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती हमेशा आम आदमी के नायक रहे। उनकी सफलता केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी बल्कि छोटे कस्बों और गाँवों में भी लोग उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। और शायद यही कारण है कि वो केवल अभिनेता नहीं बने बल्कि जनता के दिलों का स्टार बन गए। किसी भी कलाकार के लिए जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मिथुनदा के कैरियर में भी ऐसे दौर आए जब लगातार कई फिल्में सफल नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने स्वयं को समय के अनुसार बदला, नए किरदार अपनाए और हर बार एक नई शुरुआत की। आज जब हम उनके जन्मदिन पर उन्हें याद कर रहे हैं तो केवल उनकी फिल्मों को नहीं बल्कि उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और उनके अदम्य आत्मविश्वास को भी सलाम कर रहे हैं। एक साधारण परिवार से निकलकर भारतीय सिनेमा के शिखर तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने ये साबित किया कि प्रतिभा और परिश्रम मिल जाएं तो सपने सच हो सकते हैं। तो आइए इस विशेष अवसर पर हम सब मिलकर भारतीय सिनेमा के इस महान कलाकार को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दें। ईश्वर उन्हें स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन प्रदान करे ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को इसी तरह प्रेरित करते रहें। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माया एक मधुर गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ अपने रेडियो साथी अनिल राजपूत को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। ये देश हमारा घर है और इसे स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
4: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
5: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
6: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
5: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
4: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
7: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हुर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
9: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा, टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
2: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जहाज दिशा बाहिफाजत आबनाए हुर्मुज से गुजर गया है। जनूबी कैलिफोर्निया में वाके अमरीकी फिजाइया के अड्डे पर B-52 बम्बार तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्डे ने स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया, जबकि बेल्जियम और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अब खबरें तफसील से। स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के आला तरीन सरकारी एजाज द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बावकार एजाज पर स्लोवाकिया के सदर, स्लोवाकिया की हुकूमत और वहां के अवाम का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। एजाज कबूल करते हुए उन्होंने कहा कि एजाज भारत के 1,40,00,00,000 अवाम और भारत व स्लोवाकिया के दरमियान देरीना दोस्ती के नाम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एजाज भारत और स्लोवाकिया के अवाम के दरमियान मौजूद खलूस, एतमाद और मोहब्बत के मजबूत रिश्तों का मजहर है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एजाज दोनों ममालिक की आने वाली नस्लों को भी बाहमी दोस्ती और खसूसी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की तरगीब देगा और इस दोस्ती को आइंदा भी फरोग देता रहेगा। भारत और स्लोवाकिया ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। ब्रेटिस्लावा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हमनसब रॉबर्ट फीको के दरमियान बातचीत के बाद फरीकैन ने अहम शोबों में बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 माहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा शामिल हैं। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ताल्लुकात का फरोग मुश्तरका अकायद, तरजीहात और मुस्तकबिल की अलामत है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबों में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए MOU से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फीको ने भारत की तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर-ए-आज़म के दौरे ब्रातिस्लावा के दौरान कई तारीखी फैसले किए गए, जिनमें भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को नुमाया तौर पर मजबूत करने की सलाहियत मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी के दौरे के दौरान कुल 11 अहम मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। इन मुआहदों में दिफा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, सियाहत, क्वांटम कम्युनिकेशन और मसनूई जहानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी और आला तालीम जैसे शोबों में ताउन बढ़ने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फीको के दरमियान बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने में ताउन को मजबूत बनाने के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने का भी फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज ब्रातिस्लावा से रवाना होंगे और G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस जाएंगे। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम पुलुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दो मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में दो रोजा दौरे पर आज फ्रांस के शहर एवियन पहुंचेंगे, जहां वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों उनका बाज़ाब्ता इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू नई शराकतदारियों का क़याम और बैन-अल-अक़वामी इत्तेहाद की अज़र नौ तश्कील है। इस इजलास में G7 ममालिक के रहनुमा, शराकतदार ममालिक के नुमाइंदे, नीस, आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्की

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और नीति मोहन को फिल्म कलंक में। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म उरी से यासिर देसाई और शाश्वत सचदेव की आवाजों में।

शुदा, अभी आपने सुना फिल्म मलंग में अरिजीत सिंह और मिथुन को। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म शिमला मिर्च से। गीतकार है मीत ब्रोज और स्टेविन बैन।

श्रोताओं, अभी आपने सुना यासिर देसाई को फिल्म गोल्ड में। कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स का अंतिम गीत है फिल्म जाने तू या जाने ना से, राशिद अली और वसुंधरा दास की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:15 होने को हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए मेरठ और शामली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मेरठ में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने छावनी क्षेत्र के माल रोड पर 150 पौधों का रोपण किया। वृक्षारोपण अभियान में छावनी परिषद की संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी हर्षिता चमाणिया ने छावनी परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ वृक्षारोपण किया और बताया कि छावनी परिषद द्वारा छावनी क्षेत्र में 12,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने 1001 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसके तहत अभी 150 पौधे लगाए गए हैं जबकि 500 पौधे कैंट क्षेत्र में लगाए जाएंगे। इस स्थान को उपवन नाम दिया जाएगा। इसकी देखरेख के लिए एक संस्था को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके अलावा बचे हुए पौधे कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे जिन्हें वे अपने आसपास घर मंदिर या पार्क में लगाकर उनकी देखभाल करेंगे। उन्होंने कहा कि माल रोड उनके बचपन में ठंडी सड़क के नाम से जानी जाती थी क्योंकि यहाँ घने पेड़ हुआ करते थे। समय के साथ सड़क के एक हिस्से से पेड़ कम हो गए, इसलिए कैंटोनमेंट बोर्ड के सहयोग से यहाँ फिर से हरियाली बढ़ाने की पहल की जा रही है। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय पहुँचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हॉर्टिकल्चर ब्लॉक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब का निरीक्षण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने भाजपा सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि देश की जनता यह जान चुकी है कि उसका हित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है। कृषि क्षेत्र से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है, किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार यूरिया के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी निगरानी लगातार की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने विश्वविद्यालय और कृषि सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई। उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान, नई तकनीक और किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है तथा सरकार इसके विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ स्थित अटल सभागार में वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद स्तर पर टॉप 10 में अपना स्थान बनाने वाले छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, लोकसभा सांसद अरुण गोविल, जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल द्वारा जनपद के 19 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र मेडल के साथ 21,000 रुपए की धनराशि का चेक देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। हाई स्कूल में जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अबीदा, इंटरमीडियम में जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा वंशिका उपाध्याय समेत 19 मेधावियों को सम्मानित किया गया। मेरठ में 119 किलोमीटर की सफाई अब आधुनिक मशीनों से होगी। इस योजना का मेरठ के सांसद अरुण गोविल, महापौर हरिकांत आहलूवालिया, एमएलए अमित अग्रवाल, महानगर और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस योजना के तहत सफाई पर एक महीने में करीब 1,23,00,000 रुपए खर्च होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी को सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में मुख्य मार्गों की सफाई करनी होगी। इनकी लंबाई 119 किलोमीटर बैठती है। सांसद अरुण गोविल का कहना है कि उनकी कोशिश है मेरठ को इंदौर की तर्ज पर नंबर 1 बनाना, जबकि महापौर हरिकांत अहलूवालिया का कहना है कि इंदौर और सूरत की तर्ज पर मेरठ की सफाई व्यवस्था करने की हर कोशिश की जा रही है और ये उसी का एक बड़ा प्रयास है। मेरठ में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजा रहाटकर ने सर्किट हाउस में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी महिलाओं से संवाद कर उन्हें केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही विकास भवन सभागार में महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम में महिलाओं से संबंधित मामलों की जन सुनवाई की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजा रहाटकर ने लाभार्थी महिलाओं से संवाद के माध्यम से योजनाओं की सफलता की कहानी सुनी और महिलाओं को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर ने बताया,
3: एम्पावर्ड जो महिलाएं हैं जिन्होंने योजनाओं के साथ चलते हुए खुद को बहुत अच्छे तरीके से समर्थ बनाया है, काम करने के बाद के जीवन में क्या बदलाव आया है और ये बदलाव मुझे बहुत पॉजिटिव लगा है। महिलाओं का जिस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ा है, घर में उनकी निर्णय प्रक्रिया में की सहभागिता बढ़ी है, समाज में भी अभी आज उनको सम्मान मिल रहा है, ये देखते हुए बहुत अच्छा लगता है।
1: मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज कुमार का।
4: शामली जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी और तस्करी रोकने के लिए अब हर गाड़ी पर जीपीएस का पैरा रहेगा। केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय के वाहन स्थान ट्रैकिंग सिस्टम VLTS के तहत बिना सुरक्षित OTP के यूरिया की अनलोडिंग मुमकिन नहीं होगी। शामली में इस हाईटेक व्यवस्था का सफल ट्रायल कर इसकी शुरुआत कर दी गई है। इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत रैक पॉइंट से बफर गोदामों और सहकारी समितियों तक खाद ले जाने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों में GPS अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी लाइव मॉनिटरिंग कंपनियों के मुख्यालय समेत जिला कृषि अधिकारी करेंगे। यदि कोई वाहन तय रूट से भटकता है तो तुरंत अलर्ट जनरेट हो जाएगा। हाल ही में KFL कंपनी की 1068 मीट्रिक टन यूरिया इसी तकनीक से सुरक्षित पहुंचाई गई। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया,
5: रैक पॉइंट से जाने वाले सभी ट्रक GPS OTP वेस्ट माध्यम से भेजे जा रहे हैं और जिस स्थान पर पहुंच रहे हैं उस स्थान पर OTP डालने के बाद ही उतरने की व्यवस्था कराई गई है तथा वाहन जो उर्वरक लेकर जा रहे हैं उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग कराई जा सके।
4: शामली जिले में मानसून की आहट के साथ ही जिले में खरीफ सीजन 2026-27 की तैयारियां तेज हो गई है। कृषि विभाग ने इस बार 22,000 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा है। इसमें अकेले 18,000 हेक्टेयर में धान की खेती की जाएगी। कृषि विभाग ने किसानों को राहत देते हुए प्रमाणित बीजों पर 50% तक का अनुदान और पात्रता के अनुसार निःशुल्क मिनी किट देने की घोषणा की है। इसके लिए विभागीय एग्री दर्शन पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि सभी विकास खंडों के गोदामों पर धान, उड़द, मूंग और मोटे अनाजों का पर्याप्त स्टॉक पहुंचा दिया गया है। 15 जून से मुख्य बुआई शुरू होने की संभावना को देखते हुए किसान खेतों को तैयार करने और धान की पौध लगाने में जुट गए हैं। विभाग ने किसानों से जल्द बुकिंग कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। शामली जिले में यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग से उपजाऊ मिट्टी बंजर होने के कगार पर है, जिससे कैंसर और ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी घातक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गिरती सेहत और बिगड़ते पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने जून माह में विशेष खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, ताकि किसानों को जहर मुक्त और संतुलित खेती के प्रति जागरूक किया जा सके। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि जिले में खाद की किल्लत नहीं है बल्कि अति प्रयोग समस्या है, जिसे सुधारने के लिए सरकार जहर मुक्त और जागरूक खेती पर दे रही है। शामली में अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर के गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए सरकार 20,000 की आर्थिक सहायता देगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना का लाभ लेने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक आय 1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर लाभ दिया जाएगा। हालांकि पति की मृत्यु के बाद निराश्रित हुई महिलाओं और दिव्यांग आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा। बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदक विभागीय वेबसाइट पर जाकर जनसेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र या निजी इंटरनेट के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी हार्ड कॉपी संबंधित उपजिलाधिकारी या खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी। शामली जिले के उपभोक्ताओं और किसानों को जल्द ही लो वोल्टेज अघोषित कटौती से मुक्ति मिलेगी। ऊर्जा निगम ने क्षेत्र के 6 प्रमुख बिजली उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए 12 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत टिटोली, बनत, जलालाबाद, थाना भवन टाउन, कमालपुर और देवी मंदिर कैराना विद्युत उपकेंद्रों का क्षमता विस्तार कर नवीन पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। मुख्य अभियंता विनोद कुमार ने बताया, टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही धरातल पर काम शुरू होगा, जिससे गर्मियों में ओवरलोड और ट्रिपिंग से राहत मिलेगी। शामली जिले को वेस्ट यूपी का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कांधला में मिनी उद्योग क्षेत्र की स्थापना के तहत 11 भूखंडों और 1 शेड के आवंटन की इन नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उद्योग निदेशालय की इस बड़ी पहल से जिले में भारी निवेश आएगा और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। कांधला बुढ़ाना मार्ग पर स्थित इस उद्योग क्षेत्र में भूखंडों को 99 वर्ष की लीज पर विनिर्माण इकाइयों को आवंटित किया जा रहा है। कांधला और कैराना के बीच बन रहा PSC कैंप उद्यमियों को मजबूत सुरक्षा कवच देगा, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। पारदर्शी ई ऑक्शन से होने वाला यह काश जिले के राजस्व और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
6: मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है गौरव भारत देश के।

0: 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन प्रभाव की खोज विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इस प्रभाव के कारण कई आधुनिक वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरण विकसित किए गए। उनके अनुसंधान ने न केवल भौतिकी बल्कि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी खोजों ने प्रकाशिकी और परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में नए मार्ग खोले। रमन की पूरी शिक्षा दीक्षा भारत में ही हुई। स्वयं 200 रुपये का स्पेक्ट्रम मापी अभिकल्पित कर केवल लगन, परिश्रम और एकनिष्ठ अनुसंधान के बल पर इतनी महत्वपूर्ण खोज कर सके। 60 से ज्यादा विभिन्न द्रव्यों पर प्रयोग दोहराने के बाद यह सुनिश्चित हो गया कि सभी द्रव्य रमन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। यह एक अद्भुत प्रभाव है। इसकी खोज के एक दशक बाद ही 2000 रासायनिक यौगिकों की आंतरिक संरचना निश्चित की गई थी। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। यह माध्यम ठोस, द्रव्य और गैसीय कुछ भी हो सकता है। यह घटना तब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को प्रकीर्णित कर देते हैं। यह उसी तरह होता है जैसे कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर गोटियों को छितरा देता है। फोटोन की ऊर्जा या प्रकाश की प्रकृति में होने वाले अति सूक्ष्म परिवर्तनों से माध्यम की आंतरिक अणुसंरचना का पता लगाया जा सकता है। सीवी रमन ने भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके अनुसंधान और खोजों के कारण भारतीय विज्ञान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। रमन का निधन 21 नवंबर 1970 को हुआ, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी खोजें आज भी वैज्ञानिक समुदाय के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। उनकी उपलब्धियों और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे गौरव भारत देश के।
2: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
3: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: भी आज़ादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशान में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है उर्दू प्रोग्राम।
3: तमीन आपका खैर मकदम है आज के उर्दू प्रोग्राम में। रामपुर रेडियो मरकज से आयशा राहत का आदाब। सामीन बज़्म, ये इस्लामी साल जो अब हमसे रुखसत होने वाला है और नए साल का आगाज है, यानी सबको पता है कि मुहर्रमुल हराम से ये नया साल शुरू होता है। ये साल नौ का वो मुतबर्रिक माह है जो अपने दामन में गम और रंजो अलम की दास्तानें समोए हुए है, जो जुल्म व सितम का बयान है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इसलिए कि ये माह हमें याद दिलाता है उस अजीम कुर्बानी की जो नवासे रसूल और जिगरगोशा अली बतूल सैयदना हुसैन इब्ने अली और शोदाए करबला ने दी। ये जुर्रात, शुजात और तस्लीम और रजा और बातिल के सामने सीना सुपर होने का वो प्याम है जिसकी अहमियत कभी कम ना होगी, बल्कि रहती दुनिया तक ये याद किया जाएगा। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया दीन

0: इतना कि जंजीरें जो थी वो गोश्त में पेवस्त हो गई, लेकिन सिवाय सब्र और शुक्र के उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन का ही दिल था जो इस दर्जा बुलंदी को फायज होता है। और आगे की बात के लिए मैं मौलाना से चाहूंगी कि वो अपने इजहार ख्याल करें।
1: जी, जैसा कि ये सिलसिला चल रहा है इमाम हुसैन के सिलसिले में, इमाम हुसैन और पैगाम इंसानियत, ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं कि शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दियास्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। सरदार नदार दस्त दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। के हुसैन शाह भी हैं, हुसैन बादशाह भी हैं, हुसैन दीन भी हैं और दीन को पनाह देने वाले भी हैं। यकीनन जो इस्लाम पैगंबर इस्लाम लेकर आए थे उसको बचाने वाले हजरत इमाम हुसैन हैं। अगर इमाम हुसैन ना होते तो दीन मिट गया होता, यजीद ने बिल्कुल इसके नामो निशान को मिटा दिया होता। मगर इमाम हुसैन ने कहा कि हम खुद मिट जाएंगे, अपने खानदान को कुर्बान कर देंगे, लेकिन इस्लाम को बचा कर रहेंगे और कयामत तक इस्लाम बचा रहेगा। ये इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है। बस इसी पर हम अपनी गुफ्तगू को तमाम करते हैं। अल्लाह हम सबको हजरत इमाम हुसैन के रास्ते पे चलने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
2: कभी हर्फ तड़पता है, कभी लफ्ज दहकता है, कभी अश्क बहते हैं, कभी दिल धड़कता है, कभी सच्चाई लहू मांगती है और कभी हक परचम लहराता है। आज हम जिस अजीम हस्ती का जिक्र कर रहे थे समिन, वो रोशनी नहीं रहनुमाई हैं, वो कोई शोला नहीं शऊर हैं, बल्कि दीन की बका का रोशन आफ्ताब हैं। वो चिराग हैं हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो न सिर्फ नवासे रसूल हैं बल्कि दीन हक के इमाम हैं, सब्र के सुल्तान हैं और कुर्बानी के उनवान हैं। सलाम उन पे तह तैक भी जिन्होंने कहा, सलाम उन पे तह तैक भी जिन्होंने कहा, जो तेरा हुक्म, जो तेरी रजा, जो तू चाहे। हजरत इमाम हुसैन और पैगाम इंसानियत। अभी आपने समात की ये गुफ्तगू जिसमें शिरकत फरमा रहे थे जनाब मौलाना मोबीन हसन, जनाब सरबत हुसैन जैदी और मोहतरमा उम्मे अबीहा। इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम अब रामपुर रेडियो मरकज से इख्तिताम करने की अपनी मेज़बान आयशा राहत को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आदाब।
3: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उप शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अयोध्या प्रसाद द्वारा पखवाज वादन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पखावज वादन। वादक थे अयोध्या प्रसाद। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

कार्यक्रम आपके अनुरोध पर मैं हमें पहली फरमाइश भेजी है पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन्निशा असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन, मकसूद हुसैन और नाजिम अली। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, ग़ुलाम साबिर राही और महराज जहां। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान और डॉक्टर हुकुम सिंह। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना और सुमेद कुमार दामोदर। परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा और असलम सैफी। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर और इरफान कुरैशी। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है फिल्म बॉर्डर का ये गीत रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपके अनुरोध में हमें अगली फरमाइश भेजी है। शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पोंडरा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। किदवई नगर एटा से जमील अख्तर, रेशमा यास्मीन, अदीबा जमील, बुशरा और असरा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आजमनाज अंसारी, वसीम अकरम, सोनम, मियां कुरेशी और असलम सैफी। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। ज़िला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, सलीम, फ़हीम और यासीन अंसारी। मालेगांव से दत्ता घयाल, सुनीता बाई घयाल, सानिका घयाल और गजानन घयाल। बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़ से, रक्षाताई खड़ से, ललिता, संजना, गणेश, कार्तिक और मालती चौधरी। आप सभी श्रोताओं ने सुना चाहा है उदित नारायण और विनोद राठौड़ को फिल्म दीवाना मस्ताना में।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपके अनुरोध पर का अंतिम गीत है। फिल्म देशवासी से नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल। रामपुर लिसनर्स क्लब नालापार से नवाबुद्दीन, निज़ामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा और हम्माद। नाज मंजिल सीतामणि बिहार से अकरम हुसैन, प्रिंस बेशम, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान बाबू और हमजा बाबू। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमान मोल, धर्मपाल, वीर सिंह, लखविंदर संधु, महावीर संधु। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बीबी काव्या और भाई सुच्चा पाठक। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है फिल्म देशवासी का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 70 के दशक के कुछ सदाबहार नगमे।

शुदा, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म जानी दुश्मन का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है दुश्मन।

श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार को फिल्म देश परदेश में। कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है अनामिका।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हेमलता और शैलेंद्र को। फिल्म का नाम था अखियों के झरोकों से। कार्यक्रम का अंतिम गीत है हेमलता और येसुदास की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भाए।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुनहरा दौर अब यही संपन्न होता है। आज कार्यक्रम में आपने सुने 70 के दशक के कुछ सदाबहार नगमे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक और फन बेमिसाल है की कड़ी संख्या 3।

और फन बेमिसाल है। इस धारावाहिक की दूसरी कड़ी में आपने सुना कि चार बैत के स्वरूप और भाषा को शायरी के उसूलों पर परखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पठानों का लोकगीत है जिसने आम लोगों के घरों, मैदानों और चौपालों की खुली हवा में जन्म लिया। ये रागों और तालों में नहीं बल्कि तंबल की थाप पर रजस धुन में गाया जाता है। आपने उर्दू, हिंदी, पश्तो और पंजाबी भाषाओं से मिश्रित चार बैत भी सुनी। बिन देखी दिलबर को दिल रहता बेकरार है, आपने जाना कि चार बैत पठान गाते थे इसलिए उसे पठानी राग भी कहा जाता है। और आपको ये भी मालूम हुआ कि चार बैत को चार बैत गो और उसकी हमनवाओं के साथ ऊंची आवाज में गाया जाता है। और आपने ये भी जाना कि रोहेलखंड की रोहेला रियासत रामपुर में नवाब फैजुल्ला खां की दौरी हुकूमत यानी 1774 से 1794 में इसका जन्म हुआ और मेहनत मजदूरी करने वालों ने आम बोलचाल की भाषा में इसकी रचना की। ये पठानी राग पढ़े लिखों और दौलतमंदों की महफिलों से दूर रहा और फन बेमिसाल है। आइए सुनते हैं इस धारावाहिक की आज की तीसरी कड़ी।

और इन जंगों का खात्मा 1774 में हुआ, जब रामपुर आबाद हो गया। जब चैन मैसर आया तो चार बेटा याद आया, जिसे वो अफगानिस्तान और सरहदी इलाकों में छोड़ आए थे, और उन्होंने पश्तो और हिंद को चार बेटा की तर्ज पर उर्दू चार बैत की बुनियाद डाली, और पश्तो चार बेटा का मिजाज और हैयत यानी शक्ल को भी बदल दिया।

0: पश्तों की तरह उर्दू चार बैत में भी हैयत के बेशुमार तजर्बे किए गए हैं। आगाज से अब तक उर्दू चार बैत ने लगभग 250 साल का तवील सफर तय किया है। इस अरसे में तकरीबन 20-25 हजार चार बैतें कही गई होंगी, इनमें से सिर्फ 1000 के करीब अब दस्तयाब हैं।
1: हालांकि उर्दू चार बैत पश्तो चार बैता की तर्ज पर लिखी जाती है, फिर भी दोनों में फर्क है। चार बैता का सर या मतला चार मिसरों का होता है, फिर चार चार मिसरों की कड़ियां होती हैं। लेकिन उर्दू की जितनी भी कदीम और जदीद चार बैते मौजूद हैं, इनमें सर या सिरा या मतला में या तो दो मिसरे होते हैं या एक मिसरा होता है। इसी तरह पश्तो और हिंद को चार बैता में कड़ी या कली में चार मिसरे होते हैं, लेकिन उर्दू चार बैत में चार मिसरों की कैद नहीं। महबूब अली की इस कदीम चार बैत में सिरा सिर्फ एक मिसरे का है।
2: बिन देखे दिलबर को दिल रहता बेकरार है, सिगरी रैन बैठ के काटी मैंने यूं तमाम, आया ना प्यारा मेरा कर गया इकरार है। बिन देखे दिलबर को दिल रहता बेकरार है।
1: इस चार बैत का सिरा दो मिसरों का है।
3: फिर नवेदे फसले गुल बादी सबा लाने लगी, फिर कहीं कलियां हंसे गुंचे बहार आने लगी, आई यादे गुल बदन जिसदम चली ठंडी हवा, आसमां को देखकर अशकों का मेह बरसा दिया, अब्रे गम छाया उठी जिस वक्त पूरब से घटा, बर्क जब चमकी दिले आशिक को तड़पाने लगी, फिर नवेदे फसले गुल बादी सबा लाने लगी, फिर कहीं कलियां हंसे गुंचे बहार आने लगी।
1: बात सिर्फ एक मिसरा या दो मिसरों की नहीं, डेढ़ मिसरे का सिरा कहने का भी कामयाब तजर्बा बहुत खूब किया गया।
4: छोड़ से सकता गया करके जफाकारियां, हाय वो कातिल मुझे, छोड़ से सकता गया करके जफाकारियां, हाय वो कातिल मुझे, क्या करूं शायदा मैं भला उसकी जफाकारियां, रहने दे यूं ही यहाँ, क्या करूं शायदा मैं भला उसकी जफाकारियां, रहने दे यूं ही यहाँ, कितनी उठाई है तूने जिल्लतें और ख्वारियां, जीस्त मुश्किल है यहाँ, छोड़ से सकता गया करके जफाकारियां, हाय वो कातिल मुझे।
1: कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों में चार बैत लिखने या गाने का जौक पैदा होने लगा। ऐसा भी होता कि अनपढ़ लोग तंबल लेकर बैठ जाते, कोई धुन दिमाग में आ जाती और तंबल की जर्ब पर धुन पूरी उतरती तो लफ्जों को किसी ख्याल में बांध लेते, फिर किसी लिखने वाले से कागज पर लिखवा लेते। इसका नतीजा ये निकला कि तरह तरह की हैयत यानी शक्लों की चार बैतें वजूद में आ गईं। हर चार बैत को दूसरे चार बैत गो से अलग हैयत की चार बैत लिखना चाहता था ताकि उसका नाम हो। इसी कोशिश में एक नई हैयत की चार बैत पैदा हो गई जिसे जंजीरी चार बैत कहा जाता है।

इस चारबैक में बंद का पहला टुकड़ा यानी चलती है ठंडी हवा, सिरे के आखिरी टुकड़े यानी चलती है ठंडी हवा की तकरार है। इसी तरह बात का हर बंद अपने से पहले बंद के आखिरी टुकड़े की तकरार है। ये तकरार हर बंद को जंजीर की तरह बांधे रखती है। इस किस्म की चार बैतें उस्तादाना होती हैं। चार बैत के लिए सबसे बड़ी रुकावट अदबी जुबान और खासतौर से गजल थी। रुहेलखंड में कायम चांदपुरी और मुसफ़ी और उनके शागिर्दों ने गजल को रुहेला दरबार, रईसों की महफिलों और तालीम याफ्ता तबके की तहजीबी निशानी बना दिया था। दरबार और महफिलों में तवाइफों के गाने और नाजो अदा ने गजल को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। लेकिन गजल की जलवागिरी सिर्फ आला तबके तक ही महदूद रही। मेहनत कश तबका तो सिर्फ चार बैत का ही रसिया था।

0: रोहर कार्यक्रम के अंतर्गत धारावाहिक और फन बेमिसाल है की तीसरी कड़ी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11:30 हो रहे हैं। अब सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम मन भावन, और आज का मन भावन लाया है आप श्रोताओं की शब्दावलियां और कुछ सुमधुर गीत।

श्रोताओं, हम हाजिर हो गए हैं कुछ शब्दावलियों के साथ और उसके साथ समेटे हुए कुछ खूबसूरत से गीतों को मन भावन के आज के कार्यक्रम में। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है इस कार्यक्रम में, और स्वीकार कीजिए सुरेंद्र कौर का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अगर आपके दिल में भी कोई बात है, कोई ख्याल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अभी अपने विचार, अपनी भावनाएं हम तक भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है patramila@rampur.gmail.com। और देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर आप श्रोताओं के खत, तहरीरें इस बात की गवाह हैं कि हर किसी के साथ कोई ना कोई है, खुशबू की तरह यादों को समेटे हुए, खामोशी भरा शोर लिए हुए। रोज़ आते हैं ख्यालों में कई खत तेरे, रोज़ आते हैं ख्यालों में कई खत तेरे, कुछ लफ्ज़ों में डले कुछ अश्क बने मेरे। तो आइए कार्यक्रम का सिलसिला आप शुरू करते हैं इस पहली खूबसूरत सी शब्दावली के साथ, जो हमें लिख भेजी है आदाब और नमस्कार के साथ सिंधौली, मीरगंज, बरेली के हमारे श्रोताओं ने। जी शान वारसी साहब और इमरान शेख आपके साथ ही आपके साथ हैं। करूला मुरादाबाद के हमारे श्रोता अयूब खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का, और ख़ासकर इस शब्दावलियों का जो आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तक भेजी हैं। ज़िंदगी के बारे में बड़ी ही खूबसूरत सी बात आपने लिखी है कि ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है जहाँ हर नया सवेरा नई उम्मीदों और नए अवसरों का संदेश लेकर आता है। कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं और संघर्ष हमें सफलता का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट और आत्मविश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में उम्मीद का दामन थामे रखता है, वही अपने जीवन को खुशियों से भर देता है। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है जिशान वारसी साहब आपके साथियों ने, कि जो उम्मीद का दामन थामे रखते हैं वो अपना जीवन तो खुशियों से भरते ही हैं, साथ ही साथ अपने आसपास के जो उनके लोग जुड़े हुए हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनका जीवन भी वो अपनी सकारात्मक सोच के साथ खुशियों से

भर देते हैं, और वाकई जिनका जीवन इस चीज़ से, इस अमानत से महरूम है, तो हम चाहते हैं कि उनके जीवन में भी खुशियाँ आएँ इस गीत की तरह।

कार्यक्रम में अगली शब्दावली हमें लिख भेजी है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली के हमारे श्रोता लाल मोहम्मद अंसारी, और आप लिख रहे हैं बुज़ुर्ग हमारे घर की धरोहर हैं, इनको संभाल कर रखना चाहिए। बुज़ुर्ग हमारे घर की शान होते हैं, बुज़ुर्ग हमारे घर की रौनक होते हैं। बुज़ुर्गों से हमें बहुत सा ज्ञान मिलता है। अगर हमारे घर में बुज़ुर्ग नहीं हैं तो हमें चाहिए कि हमारे घर के बुज़ुर्ग के जो दोस्त हैं, उनके साथ के जो लोग हैं, उनकी उम्र के जो लोग हैं, उनको मान सम्मान देना चाहिए। उन बुज़ुर्गों के चेहरे में अपने बुज़ुर्गों का चेहरा महसूस करना चाहिए। उन बुज़ुर्गों से दोस्ती करनी चाहिए, उनका हाल चाल पूछना चाहिए, उनकी परेशानी को सुनना चाहिए, उनकी हर हाल में मदद करनी चाहिए। बुज़ुर्गों की दुआएं हमारे बहुत काम आती हैं। बहुत सी दुआएं होती हैं उनकी बातों में, और बुज़ुर्गों से ख़राब बात हमें नहीं करनी चाहिए, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, उनसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने बड़े और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करेंगे तो हमारे भी जो छोटे हैं वो उसी तरह से हमारी भी इज़्ज़त करेंगे। और आप आगे लिखते हैं कि ये जो वक्त है उसकी कद्र कर लो, गुज़रा हुआ ज़माना वापस नहीं आता। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी सी बात कही है और बहुत अच्छी सलाह दी है। ख़ासकर जो आज के हमारे बच्चे हैं उनको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि अपने से बड़े, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो हमारे माता पिता हों, अपने बड़े भाई बहन हों, सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए।

हमारे श्रोता आकाशवाणी रामपुर से इस समय सुन रहे हैं मन भावन कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी शब्दावलियाँ और कुछ खूबसूरत मधुर गीत। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें अपनी शब्दावली लिखकर भेज सकते हैं पत्र मिला airrampur@gmail.com पर। और ये अगली शब्दावली हमें प्राप्त हुई है नमिता गर्ग की, गाज़ियाबाद से आप लिख रही हैं। सबसे पहले आपने रामपुर केंद्र के सभी गणमान्य सुधीजनों को वॉकथन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं और जीवन के विषय पर अपने विचार आप रख रही हैं। कहती हैं कि जीवन बहुत अनमोल होता है, लेकिन अनमोल तब होता है जब हम उसका महत्व समझें। हमें जीवन एक बार ही मिलता है, हमें अपने बहुमूल्य जीवन में अपने चरित्र को उन गुणों से सजाना चाहिए जिससे हमारी अलग ही पहचान बने। अगर हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं तो हमें संतुष्टि और अलौकिक अनुभव का प्राप्त होता है जिससे हम ईश्वर से नज़रें मिलाने की शक्ति का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत अगर हम बुरे काम करेंगे तो हम ईश्वर से नज़रें मिलाने लायक नहीं होंगे और मन में ग्लानी भी अनुभव होती रहेगी। ये काम कर्तव्य और अधिकार दोनों रूप में हो सकते हैं। यदि आप अपने माता पिता और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन करते हैं तो हमें शांति और जीवन की सार्थकता का एहसास होता है।

अन्यथा ये जीवन जीवन ना कहलाकर किसी तुच्छ प्राणी का जीवन कहलाएगा, क्योंकि ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि में केवल मनुष्य को ही प्रज्ञा दी है। इसलिए मानव को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना माना जाता है। और हम कर्मों की बात करते हैं कि हमारे सबसे अच्छे बुरे कर्म हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारे बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है जो जीवन में हमें पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं दे पाता। तो क्यों ना अच्छे कर्म करें, अच्छे काम करें और अपने इस अनमोल जीवन को सार्थक बनाएं। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत सा एक संदेश दिया है कि हमें अच्छे काम करने ही चाहिए, क्योंकि अच्छे कामों से ही हमारा भूत भविष्य भला होता है। और अपना तो हम भला करते ही हैं, साथ में अगर अच्छे काम करेंगे तो दूसरों का भी भला होगा, समाज का भला होगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इतनी खूबसूरत शब्दावलियों के लिए।

0: घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: मन भवन में इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर से शब्दावलियों का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अगली शब्दावली हम शामिल कर रहे हैं मुंबई के हमारे श्रोता हैं अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज विनारा जी की। बेटियों पर बड़ी ही खूबसूरत सी बात आपने लिखी है कि बेटियां घर की रौनक होती हैं, जहां उनकी हंसी खुशी गूंजती है वहां उदासी टिक नहीं पाती। बेटी का रिश्ता माँ बाप के दिल से बहुत करीब होता है, बिना शर्त प्यार, बिना वजह भरोसा। पहले लोग बेटियों को बोझ समझते थे, लेकिन अब सोच बदली है। बेटियां पढ़ रही हैं, खेल रही हैं, बिजनेस संभाल रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। मैरी कॉम से लेकर कल्पना चावला तक हर फील्ड में बेटियों ने साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं। बेटी का सबसे बड़ा गुण है समझदारी। छोटी उम्र से ही वो घर की जिम्मेदारियाँ समझने लगती हैं, माँ का हाथ बटाती हैं, भाई बहन का ख्याल रखती हैं और बड़ी होकर माँ बाप का सहारा बनती हैं। बेटियों के बाद दो घरों को जोड़ने का काम भी वही करती हैं। असल में बेटियाँ घर की नींव होती हैं। अगर बेटियाँ सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर हों तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। इसलिए कहते हैं कि बेटियाँ बचाओ, बेटियाँ पढ़ाओ, क्योंकि बेटी होगी तभी कल होगा। एक बड़ी ही खूबसूरत सी शायरी भी आपने साथ में लिख कर भेजी है। घर की रौनक आंगन की बहार होती हैं बेटियाँ, माँ बाप की धड़कन दिल का सहारा होती हैं बेटियाँ, हंसे तो उजाला हो जाए हर तरफ, इतनी प्यारी और निराली होती हैं बेटियाँ। दुआओं में मांगी थी जो खुशियाँ, वो बेटी बनकर आई है। घर के आंगन में खिली है वो फूल जिनकी खुशबू से सारी दुनिया बहकी है। बेटी बोझ नहीं होती, ये वो वरदान होती है, हर माँ बाप की शान होती है। जब वो मुस्काती है ना तो घर स्वर्ग सा लगता है। वाकई बहुत ही खूबसूरत सी बात आपने लिखी है, और बेटियां वाकई बहुत बड़ा वरदान होती हैं भगवान का, और भगवान हमेशा ही उन्हें आशीर्वाद देता रहता है। और हमेशा ही हम तो यही दुआ करते हैं हर बेटी के लिए कि वो हमेशा खुश रहें अपनी ज़िंदगी में।

और श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमें प्राप्त हुई है मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर के हमारे श्रोताओं की। आप हैं भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोज़ा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी जी। लिख रहे हैं कि दोस्तों, अगर दोस्ती की बात करें तो एक सच्चा दोस्त ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम अपने दिल की हर बात उससे कह सकें, उसे सुना सकें। और दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के हर सुख और दुख में काम आए, उसका दुख सुख समझ सके और उसके हर जज्बात को समझ सके, वही सच्चा दोस्त होना चाहिए। और दोस्त हर सुख और दुख में अगर काम आता है, बाकी में वही सच्चे दोस्त होते हैं जो कि उनके दुख सुख में काम आते हैं। आप यही कहना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि ऐसे दोस्तों को जो दुख और सुख में काम आते हैं, उन दोस्तों को आप सलाम करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती पर आपने शब्दावली लिखकर हमें भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया।

इसी खूबसूरत से गीत के साथ आप सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी हमें शब्दावलियाँ भेजी। आज जितनी भी शब्दावली हमें प्राप्त हुई थी सभी मैंने कार्यक्रम में शामिल की हैं और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भी करती हूँ। और ये कार्यक्रम समेटने की अब सुरेंद्र कौर को दीजिएगा इजाज़त। अगले कार्यक्रम में फिर से बात होगी, मुलाकात होगी, आपकी शब्दावलियाँ होंगी और कुछ होंगे खूबसूरत से गीत। नमस्कार।

मन भवन। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी रामपुर से ये कार्यक्रम। 12 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारी में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद MT सिटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:05 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश और गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में कुछ आवश्यक सूचनाएं।
3: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

प्रभारी निरीक्षक थाना असमोली जिला संभल हमें सूचित करते हैं। कुमारी मुस्कान पुत्री धनसब पुत्र अब्दुल रशीद निवासी ग्राम मातीपुर थाना असमोली जनपद संभल, ये विगत 4 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 22 वर्ष है। रंग गोरा, लंबाई तकरीबन 5 फीट 2 इंच है। बैंगनी रंग के सूट और सलवार में आप हैं और पैरों में जूते पहने हुए हैं। किसी भी सज्जन को इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इन मोबाइल नंबरों पर सूचित करने का कष्ट करें। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9927236478। एक और नंबर नोट कीजिएगा 9454404029। और इसके साथ ही आप थाना असमोली जिला संभल उपनिरीक्षक को भी आप सूचित कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9445304423। गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

एक अन्य सूचना सुनिए। प्रभारी निरीक्षक थाना हयात नगर जनपद हमें सूचित करते हैं कि शाहीन पुत्री मोहम्मद मोबीन, निवासी मोहल्ला तकिया सरायतरीन थाना हयात नगर ज़िला संभल, शाहीन की उम्र 20 से 21 वर्ष लगभग है, कद 4 फुट 6 इंच है और इनका रंग गोरा, आँख नाक कान औसत और कपड़े आपने पहने हुए हैं पीले रंग की कुर्ती और कत्थई रंग का दुपट्टा और सलवार, पैरों में आपने हवाई चप्पल पहनी हुई है और आप दिमागी रूप से कुछ कमज़ोर हैं। 7 मई 2026 से आप घर से लापता हैं। जिस किसी व्यक्ति को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया सूचित करने का कष्ट करें। आपके घर का पता है मोहसिन पुत्र मोहम्मद मोबीन, निवासी मोहल्ला तकिया सरायतरीन थाना हयात नगर संभल। आपका मोबाइल नंबर है 9941622786 और उपनिरीक्षक थाना हयात नगर में भी आप सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8650582308। इसके साथ साथ एक नंबर और भी नोट कर लीजिए, 9454404040। गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं प्रथम सभा के प्रसारणों को। कार्यक्रमों की श्रृंखला का हमारा अगला कार्यक्रम अब पसंदीदा लोकप्रिय फरमाइशी कार्यक्रम गीत आपके नाम होगा। कुछ क्षण की प्रतीक्षा कीजिए।

कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त सुरिंदर कौर। सभी श्रोता साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली फरमाइश आप श्रोता साथियों ने हमें लिख भेजी है। आप हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार के हमारे श्रोता ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और मैं राज जहां। पदमपुर ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान के हमारे श्रोता मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा हमें ये फरमाइश लिख भेज रहे हैं। ग्राम नथाना पंजाब के हमारे श्रोता हरजिंदर, छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, खुश रहो खुशियां बांटो, बहुत प्यारा सा ये संदेश आपने दिया है। और आप हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया जी, नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुँचाया है। दुर्गा चौक जूनापानी सनावद एमपी के हमारे श्रोता कालू सिंह, सीताराम, हीरालाल, साहिल, सुमन, विशाल, हरिओम और भावना। ये अगला मैसेज बुल्डाना बड़शिंगी महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं का हमें प्राप्त हुआ है। अमूल मान का, शोभता ईमान का, दीपाली और श्लोक कुमार, साथ में आपके बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमित कुमार। आदाब और नमस्कार के साथ फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोता नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमद नगर के हमारे श्रोता जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर हमें ये मैसेज भेज रहे हैं। और अगला मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है मऊ भंजन उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोताओं का, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा और आपके साथ शिव मंदिर हकीकतपुरा के हमारे मऊ के श्रोता मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार जी कार्यक्रम को सुन रहे हैं और फरमाइश हमें लिख भेज रहे हैं। पालदा नाका इंदौर मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं हसीना बी मंसूरी, आमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी मंसूरी और साथ में हुसना हमें मैसेज कर रहे हैं। और ये मैसेज पहुँचा है आदाब और नमस्कार के साथ छोटी बलिया करजत मुंबई के हमारे श्रोता अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदब आरजू जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले और साथ में कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली के हमारे श्रोता बिटिया आमना नसरीन, आसना परवी और साथ में राबिया मतन शाह, आशु अहमद फूल वाले और साथ में समस्त फूल वाले परिवार की फैमिली। और अगला मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूलापुरा उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोताओं का, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। और आप हैं ग्राम टोरोवाल ज़िला नवांशहर पंजाब के हमारे श्रोता गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रेम थांदी और साथ में हैं बेबी वमिका और वाणी थांदी। नमस्कार के साथ आपने इस मैसेज को हम तक पहुंचाया है। ग्राम महेशपुर खेम के हमारे श्रोता ज़िला मुरादाबाद से आदाब के साथ ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं तौफीक अहमद सिद्दकी, अतीक अहमद सिद्दकी और साथ में हैं मोहम्मद दानिश सिद्दकी साहब, हमज़ा सकलैनी और गुलशन साहिबा। ये मैसेज मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं का अभिजीत गावणकर रही, श्री सरिता गावणकर, प्रिंस एकांश गावणकर और बदलापुर मुंबई की हमारे श्रोता प्रणीता गावणकर, सिद्धांत गावणकर, अर्जुन गावणकर, टुक टुक और आपके साथ हैं बहादुरा नागपुर की हमारे श्रोता वैशाली, शैलेश गावणकर, सिद्धांत गावणकर और सुमित गावणकर, कुमारी ध्वनि गावणकर परी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुनना चाहा है, फिल्म का नाम है कुर्बानी और इस गीत को गाया है मनहर और कंचन ने, गीत में संगीत दिया है इंदिवर ने।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश आपने लिख भेजी है। आप हैं आरसी जमनिया मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता मनीष रावत, लीलू रावत, रोहन रोशन रावत, और ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है बहारुल हसन सिद्दीकी, आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान, मोहम्मद यूसुफ, अनाबिया बिटिया अलीशा, शकील अहमद, और माफ़ कीजिएगा शकील सिद्दीकी, फ़हीम, और साथ में हैं मोहम्मद यासीन अंसारी, सुदेश चौहान जी। आप हैं ज़िला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा के हमारे श्रोता। और ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है स्टेशन रोड जमशेदपुर के हमारे श्रोताओं का, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया, सोनू भाटिया, नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुँचाया है। ये अगला मैसेज बैरड़ी मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त हो रहा है। आप हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर जी। गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक और सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान प्यार भरा नमस्कार हमें लिख भेज रहे हैं। और अगला ये मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता पूना जंक्शन मस्तानपुरा के हमारे श्रोता हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत जी। ग्राउंड फरासी हिसार के हमारे श्रोता हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी जी। किसी भी गीत के लिए फरमाइश कर रहे हैं राजद्वारा रोड मीठा कुआ रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित, अभेरिया, आरुष और फिरासत हमें ये मैसेज लिख भेज रहे हैं। पटियाली रोड गंज डुंडवारा के हमारे श्रोता आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और आपके परिवार के सभी सदस्य। और ये अगला मैसेज छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से हमें प्राप्त हो रहा है। आदाब के साथ ये नमस्कार कर रहे हैं मोहम्मद जाहिद अली सैफी और आबाद खान, मोहम्मद जोहान सैफी और लीबा मलिक जी। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून हमें ये मैसेज कर रहे हैं। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू नमस्कार के साथ इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं। कनापुरा कोतारा एमपी के हमारे श्रोता हैं भुरला भाई और साथ में खुशबू। और ये अगला मैसेज हमें मिला है, आप हैं लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती और उमर राज जी। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाटा, दीक्षा कुश मूड़त इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं नमस्कार और प्रणाम सहित। और ये अगला मैसेज आप लिख रहे हैं कि आज गायक हेमंत कुमार की जन्म जयंती है, उन्हीं का गीत सुनवा दीजिए जी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और आप हैं चंडीगढ़ सिटी के हमारे श्रोता सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अगला मैसेज हमें भेजा है सरगुजा मेन पार्ट के हमारे श्रोता हैं सरिता डोमिन, प्रमिला डोमिन, आशा डोमिन, लड्डू डोमिन और आपका पूरा डोमिन परिवार। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से आपने ये मैसेज हमें भेजा है रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा देवी और मिश्री देवी साहू जी ने। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें इस मैसेज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला ये मैसेज हम तक पहुँचा है हमारे श्रोता हैं झज्जर हरियाणा के हमारे श्रोता हैं बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया जी का। आप सभी श्रोताओं के नाम कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म का नाम नमक हलाल और आवाज़ें हैं आशा भोंसले की। इस गीत को संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर से गीत आपके नाम कार्यक्रम। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइशें आप सभी की हमें प्राप्त हो रही हैं। आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान के हमारे श्रोता धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार जी, हार्दिक नमस्कार के साथ आपने इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करवाई है। और आप हैं भिलाई छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा। ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है पोफाली ज़िला वार्ड नंबर 1 के हमारे श्रोता जयराम सिंघड़कर, दिशांत कुमार सिंघड़कर और अर्पिता जी का।

मौला बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर की हमारी श्रोता फौजिया रोशनी, शाइना काजल और शहजाद अली मंसूरी साहब इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं, और ये अगला मैसेज ज़िला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हमें प्राप्त हुआ है। आप हैं रिजवान खान, आयशा सबीहा और साथ में हैं अनस और रेहान। ये मैसेज हमें मिला है मैसोल सीतामणि बिहार के हमारे श्रोताओं का। नूर महल से आपने ये मैसेज हमें किया है। मुसर्रत जहां नाज, तलत जहां नाज, रफत फरत जहां नाज, रिफत जहां नाज, नुजत जहां, शाजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये मैसेज हम तक पहुंचाया है ख़ैल बाज़ार पानीपत के हमारे श्रोताओं ने। नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, इनके पापा जी नानक चंद मल्होत्रा जी, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का, नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। और ये मैसेज रघुनाथपुरा ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान से हमें प्राप्त हो रहा है। आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हिना, हर्षिता और साथ में खुशी गोस्वामी। बागपत उत्तर प्रदेश से आप हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया जी। जैन मंदिर वाली गली कुरावली के हमारे श्रोता राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और साथ में हैं मोहम्मद कैफ अंसारी साहब। ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली के हमारे श्रोता शाहरू नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान जी। गांव व डाकघर निम्नाबाद ज़िला जींद हरियाणा के हमारे श्रोता हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत। मधुबनी बिहार से राजनगर से ये मैसेज ज्योति सिंह और नवीन सिंह का हमें प्राप्त हो रहा है। आपके साथ हैं ताजपुर मोरवा के हमारे श्रोता कामेश्वर प्रसाद गुप्ता और भूलिया गुप्ता। और ये मैसेज उत्तम नगर दिल्ली से हमें प्राप्त हुआ कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का। अहमदपुर खैगांव खांडवा के हमारे श्रोता हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वैदिका फूलमाली। टैगोर गार्डन नई दिल्ली के हमारे श्रोता रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज आपने किया है। आपका हर पल खुशियों से भरा हो इस मैसेज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का। और कार्यक्रम में ये अगला गीत आप सभी श्रोताओं के नाम, फिल्म का नाम सनम तेरी कसम, और इस गीत को गाया है आर डी बर्मन ने और आशा भोसले ने। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को।

जहाँ, और साथ में हैं दिल्ली से सुमन शर्मा, मुकेश, सौरभ और गौरव। ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान के हमारे श्रोताओं का, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष। सादर नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली के हमारे श्रोता गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं नमस्कार के साथ। और आप हैं पटेल नगर मलोट के हमारे श्रोता डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, आरजू जाजौरिया और साथ में हैं गुड्डू। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली के हमारे श्रोताओं ने, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा। आपके साथ हैं चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना जी। ये मैसेज प्राप्त हुआ है हमें, आप हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बिल्लू निषाद, बल्लू निषाद और साथ में हैं तरुण यादव और श्रीनिका और श्री निजा। ये अगला मैसेज छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हमें प्राप्त हुआ है मोहम्मद इसाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और आपके साथ हैं छत्तीसगढ़ रायपुर के हमारे श्रोता मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रज़ा और साथ में गौसिया फातिमा। ये अगला मैसेज गुन्नौर से हमें प्राप्त हो रहा है आदिल कमर तस्गीदीक और साथ में हैं अली मोहम्मद अली। आदाब के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। और ये अगला मैसेज हमें पहुंचाने वाले हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं नादेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ जी। सादर नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। सिद्धार्थनगर ज़िला नांदेड़ से आप हैं आरती, छोटी बबली, रूपाली, वंदना धुले और सरुबाई धुले मराठवाड़ा से, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अगला मैसेज प्राप्त हो रहा है हमें जसपुर उत्तराखंड के हमारे श्रोताओं का, रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हुसैन सिद्दीकी और रिफाकत हुसैन सिद्दीकी जी का। ग्राम पजौनिया ज़िला जालौन से सतेंद्र कुमार चांसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चांसौलिया इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और सादर नमस्कार हम तक पहुंचा रहे हैं। कापासेड़ा दिल्ली से फिरोज़ खान, अहमद मोगा, इकबाल मोगा और साथ में आपके साथी। ये अगला मैसेज पहुंचाया है राजधानी रायपुर के हमारे श्रोताओं ने, नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार जी ने।

और रमेश्वर कठेरिया, उमाकांती कठेरिया, कमलेश्वर कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार हमें ये मैसेज भेज रहे हैं सादर नमस्कार के साथ, ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हैं श्राफ रोड राजकोट के हमारे श्रोता प्रेमा रानी जाटव, डॉली और सुरेश डोकर, गुजरात से प्रवीण राज सोनी और श्वेता सोनी, चमनपुरा मोरबी से प्रमिला जेटली, दीपक और आशु जेटली हमें इसका मैसेज को पहुंचा रहे हैं। और अगला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ के श्रोताओं का, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा और शिवांश वर्मा जी का। आप सभी श्रोताओं के नाम कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत आग ही आग फिल्म से, गायक कलाकार आशा भोसले और शब्बीर कुमार और संगीतकार बप्पी लहरी।

कुमारी शर्मा कलेर बिहार से, मोहम्मद आसिफ खान और निघत परवीन जी। और बहुत खूबसूरत सा ये मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है एयरपोर्ट रोड बंद्रा नगर इंदौर मध्य प्रदेश से। नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और आपके परिवार के सभी सदस्य। ये मैसेज नवाज़ कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी और नंदनी रघुवंशी, लड्डू चौधरी, स्वाति प्रयाग, प्रज्ञा चौधरी, कुमारी वंदनी मराठा भाऊ और आप हैं। हरियाणा से हमारे श्रोता अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा प्रिंस बोट और सीताराम कांगड़ा के साथ साहिल कांगड़ा जी। ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ रहा है गंज डुंडवारा के हमारे श्रोताओं का, शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान जी का। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शब्दावलियों के साथ साथ अपनी फरमाइशें भेजने के लिए। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, प्यार झुकता नहीं फिल्म से हमने इस गीत को लिया है। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ें हैं और इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज सिने स्टार मिथुन चक्रवर्ती जी का जन्मदिवस ही है, उसी उपलक्ष्य में सुनवा रहे हैं आपको ये खूबसूरत सा गीत।

0: हमारे श्रोताओं ने सुना फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम गीत आपके नाम। एक बजने वाला है, कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है।

0: पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि ई-20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 1:05 हो रहे हैं। आइए अब आपको बता दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के विषय में संक्षिप्त जानकारी। उससे पहले कुछ जरूरी संदेश।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
5: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
4: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
5: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
4: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रूपरेखा। श्रोताओं, आपको बता दें कि 1:15 पर आपके लिए प्रस्तुत होगा परिवार जगत। आज इसमें चर्चा का विषय रहेगा पारिवारिक खेल और मनोरंजक गतिविधियां। इसके साथ साथ एक वार्ता भी सुनवाई जाएगी। विषय होगा वर्तमान परिवेश में विस्तृत परिवार का महत्व, पिंकी मंडल। इसके साथ ही क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी आपको दी जाएगी और हेल्थ टिप्स में आपके लिए होंगे कुछ टिप्स नियमित व्यायाम के ऊपर। 2:30 पर श्रोता साथियों के लिए हम लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और हमारी शाम की सभा आरंभ होगी संध्या 5:00 आज शाम कार्यक्रम के साथ। 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

6:10 पर हमारे श्रोता साथी आनंद लेंगे कुछ फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत और 6:20 का समय है दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का। किसान साथियों के लिए आज इसमें चर्चा का विषय रहेगा किचन गार्डन का महत्व। इसके साथ साथ कुछ अन्य कार्यक्रमों भी आपको सुनवाए जाएंगे और होगी मौसम का पूर्वानुमान। संध्या 7 बजे सुनिएगा कानून और हम कार्यक्रम। और 7:31 का समय है सुगम संगीत कार्यक्रम का। आज इसमें आयुषी से सुनिएगा कुछ गीत। गीत गाता चल व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। 9:30 पर सुनिएगा साहित्यिक पत्रिका। आज इसमें वार्ता होगी हिंदी कविता में वेदन के स्वर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर प्रणव शास्त्री। इसके साथ साथ आप सुनेंगे काव्य पाठ आशा विसारिया से। एक कहानी भी आपको सुनवाई जाएगी अंजलि वर्मा से। खेल दर्पण ये रिले कार्यक्रम लखनऊ से आपको मिलेगा रात्रि 10 बजे और 10:30 का समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का।

तो श्रोताओं, ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इलाकाई खबरें नश्र होंगी।

0: डॉक्टर पू राम मोहन नायडू ने इफ्तिताही तकरीब में कहा कि यह हवाई अड्डा पूरे मुल्क में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन का नतीजा है। इस दरमियान हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले 170 किसान कल मकामी MLA धीरेन्द्र सिंह के साथ लखनऊ पहुंचे और वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। किसानों से बातचीत करते हुए वजीर आला ने कहा कि हुकूमत किसानों के मुनासिब हुकूक को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है।
1: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है, और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मुनक्किदा डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शिरकत की। इस मौके पर सोशल मीडिया तख्लीककारों के साथ बातचीत करते हुए वजीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाना एक विजन है और हुकूमत की मुल्क के तई एक जिम्मेदारी है, जिसे समाज के तमाम तबकात को शामिल करके एक अवामी तहरीक बनाकर ही कामयाब बनाया जा सकता है। 10 से ज्यादा रियासतों के 100 से ज्यादा डिजिटल असर व रसूख रखने वाले तख्लीककारों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गुज़िश्ता 12 सालों में नुमाया तरक्की की है। इस मौके की मुनासबत से ऑल इंडिया रेडियो न्यूज एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है, जिसका उनवान है 12 साल के एतमाद, तरक्की और लोगों के लिए फलाह व बहबूद। आज हम दहशतगर्दी से निमटने के लिए हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर बात करेंगे।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: आयुष की वजारत ने कल नई दिल्ली में 12वें बैनुल अक्वामी योगा डे की शानदार तकरीब के लिए रस्मी तकरीबात का आगाज किया। आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में नामानिगारों को बताया कि इस साल योगा डे की अहम तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के रेड रोड पर मुनक्किद होगी। उन्होंने बताया कि इस मौके पर 45 मिनट का योगा प्रोटोकॉल मुनक्किद किया जाएगा। दरी असना बैनुल अक्वामी योगा डे के मौके पर 21 जून तक चलने वाले योगा हफ्ते के तहत रियासत के तमाम अजला में प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। योगा हफ्ता रियासत के दारुल हुकूमत लखनऊ, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर समेत मुख्तलिफ अजला में शुरू हुआ, जिसमें अवामी नुमाइंदों, इंतजामी और पुलिस अफसरान, मुलाजमीन और समाजी कारकुन प्रोटोकॉल के मुताबिक योगा कर रहे हैं। वाराणसी में इस मौके पर खिताब करते हुए आयुष के वजीर दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क्यादत में रियासत में योगा, आयुष और सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2023 के तहत नई सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन स्कीम नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। 14 जून को वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इसका आगाज किया। गोरखपुर के जिला प्रोग्राम अफसर अभिनव मिश्रा ने बताया कि इस स्कीम के तहत 7 किस्म के मुस्तफिदीन को 10 किस्म की रेसिपी दस्तियाब कराई जाएंगी। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में अतियात और कीमती अशिया के गबन के इल्जामात की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई खसूसी तफ्तीशी टीम SIT ने कल अपनी तहकीकात शुरू कर दी। SIT की क्यादत लखनऊ के डिवीजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किरण S और महकमा खजाना के खसूसी सेक्रेटरी नील रतन इसके मेंबर हैं। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी कि SIT ने तमाम मेंबरान कल अयोध्या पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। उन्होंने कमिश्नर और अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट के साथ मंदिर अहाते का दौरा किया। SIT को 7 दिन के अंदर इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन के अंदर हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव और एफएम पर आप श्रोताओं ने ट्यून किया है आकाशवाणी का रामपुर केंद्र। श्रोताओं, समय हुआ है 1:15:23। आइए अब सुनते हैं स्वास्थ्य और पारिवारिक गतिविधियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम परिवार जगत। आज का कार्यक्रम लेकर स्टूडियो में उपस्थित हैं सुनीता और आयशा।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम परिवार जगत में आप सभी को आयशानवार
1: और सुनीता सिंह का प्यारा सा नमस्कार
0: और मेरा भी प्यार भरा आदाब और नमस्कार।
1: श्रोताओं, गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन अब बचपन स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हुए नजर आता है। जानकर बताते हैं कि छुट्टियों में बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं और सबसे ज्यादा खोजते हैं और सबसे ज्यादा यादें बनाते हैं, यानी कि छुट्टियों को यादगार बनाते हैं। क्यों आशा?
0: बिल्कुल सुनीता जी, लेकिन ऐसे में आप थोड़ी सी योजना और कुछ मजेदार गतिविधियों से भी अपने बच्चों को छुट्टियाँ और ज्यादा मजेदार बना सकते हैं। दोपहर की तपती धूप में भी घर के अंदर मस्ती की कोई कमी नहीं होगी जब आप रंग, ब्रश, चार्ट पेपर से और कुछ बेकार पड़ी चीजों से बच्चों को कुछ नया करने को देंगी।
1: बिल्कुल सही कहा, इससे बच्चे अपना ड्रीम हाउस, रंग बिरंगे बुक मार्क और पुराने डिब्बों से खूबसूरत पेन स्टैंड बना सकते हैं और रसोई घर भी छुट्टियों में बच्चों के सीखने का एक शानदार जगह हो सकती है ऐसा। और उसमें देखिए, फ्रूट सलाद या सैंडविच बनाना, नींबू पानी तैयार करना जैसे छोटे छोटे काम उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं और उन्हें खुशी लगती है। ये चीज़ें तो सीखनी चाहिए छुट्टियों में बच्चों को।
0: बिल्कुल सुनीता मैम, आपने बहुत सही कहा। जब बच्चा अपने हाथों से कुछ बनाकर परिवार को खिलाता है तो इससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। बच्चों को खेल खिलौने के लिए घर या बगीचे के अलग अलग कोने में छोटे छोटे सुराख छिपाकर बच्चों से उन्हें खोजने को कहिए और हर सुराख के साथ बढ़ता उत्साह बच्चों के घंटों व्यस्त रखता है।
1: बिल्कुल, और इससे उनकी सोचने और समस्या हल करने की क्षमता मजबूत होती है और छुट्टियों में परिवार के साथ बिताया समय बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कीमती होता है।
0: और इसके अलावा बोर्ड गेम्स खेलना, पुरानी तस्वीरें देखना, साथ बैठकर कहानी सुनना या घर की छत पर छोटी सी पिकनिक पार्टी करना बच्चों को अपने परिवार के और भी करीब लाता है, जो सालों बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये सब सोचकर अपनी यादों में मुस्कुराते हैं और अपने बचपन को एक बार फिर से जीते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा ऐसा। और देखिए, पारिवारिक खेल और मनोरंजक गतिविधियां घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे के करीब लाने का और तनाव कम करने का और मजेदार यादें बनाने का एक बेहतरीन जरिया है, जैसे कि अभी आपने बताया।
0: बिल्कुल, जैसे आप घर के आंगन या लिविंग रूम में बोर्ड गेम्स जैसे लूडो, शतरंज, कार्ड गेम या ऊनो, रचनात्मक गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं।
1: तो क्यों ना हम अपने श्रोताओं को पारिवारिक मनोरंजन के लिए कुछ बेहतरीन आइडिया दें, जैसे कि लूडो, सांप सीढ़ी, मोनोपोली या फिर ऊनो जैसे जो क्लासिक खेल हैं वो अपने बच्चों को खिलाएं और उनके साथ व्यस्त रहें ताकि उनकी जो छुट्टियां हैं वो मज़ेदार रहें।
0: बिल्कुल, और साथ ही सभी लोग मिलकर एक बड़ी जिक्सा पजल हल भी कर सकते हैं।
1: बच्चों के साथ मिलकर केक, कुकीज या कोई नई डिश ट्राई करें।
0: कुर्सियों और चादरों की मदद से टेंट बनाएं और उसके अंदर बैठकर कहानियां सुनाएं, कितना मजा आएगा ना।
1: बिल्कुल, और बैडमिंटन, म्यूजिकल चेयर्स या फिर रिंग टॉस जैसे खेलों का आनंद भी लें।
0: श्रोताओं, पारिवारिक खेल और मनोरंजक गतिविधियों से ही परिवार के सभी सदस्य मिलकर आनंद ले सकते हैं, मनोरंजन करते हैं और आपसी संबंधों को भी मजबूत बनाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आशा। मनोरंजक गतिविधियों के लिए हम पिकनिक पर जा सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं,
0: गीत संगीत और नृत्य भी कर सकते हैं
1: और फिल्मी या टीवी कार्यक्रम साथ में देख सकते हैं
0: और बागवानी भी कर सकते हैं,
1: चित्रकला और हस्तकला कर सकते हैं।
0: इन गतिविधियों को मिलकर करने से परिवार के सभी सदस्यों के बीच में जो प्रेम है और सहयोग की भावना है वो बढ़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा, इससे तनाव कम होता है,
0: बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में सहायता मिलती है
1: और परिवार में खुशहाली और एकता बनी रहती है।
0: तो सुनीता मैम, मिलजुल कर खेलने से सहयोग और सामंजस्य की जो भावना है ना वो बढ़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा आयशा, पारिवारिक खेल परिवार में एकता, खुशी और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए अपने बच्चों के साथ व्यस्त रहिए, खुश रहिए और उन्हें कुछ नया करने को दीजिए ताकि वो अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकें।
0: श्रोताओं, परिवार में मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की समस्याएं सुनना हमारे जीवन का हिस्सा, और अगर परिवार बड़ा है ना तब भी उसके अपने अलग फायदे हैं क्योंकि बड़े परिवार में एक के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं होता। घर के सभी सदस्य आपस में मिलकर काम करते हैं और बच्चे भी परिवार के साथ खुश रहते हैं और उनसे संस्कार सीखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा ऐशा। और आज इसी विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं पिंकी मंडल, और वार्ता का विषय है वर्तमान परिवेश में विस्तृत परिवार का महत्व। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी नारायण मंडल और आज हम सब एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। विषय है वर्तमान परिवेश में विस्तृत परिवार का महत्व। कहा जाता है कि मनुष्य अकेला जन्म तो ले सकता है लेकिन अकेले जीवन जी नहीं सकता। आज तकनीक ने दूरियों को कम कर दिया है लेकिन दिलों के बीच की दूरियों कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई देती है। ऐसे समय में विस्तृत परिवार अर्थात संयुक्त या बहुपीढ़ी परिवार का प्रासंगिकता पहले से अधिक बढ़ गई है। आज के इस वार्ता में हम जानेंगे कि विस्तृत परिवार क्या है, विस्तृत एवं संयुक्त परिवार में अंतर क्या है, पहले और आज के पारिवारिक जीवन में क्या अंतर है, आधुनिक समाज में इसकी आवश्यकता क्यों है, विभिन्न विद्वानों और लेखकों के विचार जानेंगे, परिवार में जुड़े प्रेरक प्रश्नोत्तर और अंत में हम सबके लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश। आइए जानते हैं विस्तृत परिवार का अर्थ। विस्तृत परिवार या एक्सटेंडेड फैमिली वह परिवार है जिसमें केवल माता पिता और बच्चे ही नहीं बल्कि दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, मामा मामी, आपके मित्र तथा अन्य रिश्तेदार भी भावनात्मक और सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं। भारतीय संस्कृति में परिवार केवल रक्त संबंध नहीं बल्कि संस्कारों का विद्यालय माना गया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्र मैकाइवर ने कहा था, परिवार समाज की आधारभूत एक इकाई है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। पहले का परिवार और आज का परिवार, यदि हम कुछ दशक पीछे जाएं तो गांव और कस्बों में संयुक्त परिवार आम बात थी। एक ही आंगन में कई पीढ़ियां रहती थी। दादी जीवन का अनुभव देती थी, वहीं दादाजी कहानियों में संस्कार देते थे, माता पिता अनुशासन और शिक्षा देते थे, भाई बहन सहयोग और साझेदारी सिखाते थे। बच्चों की परवरिश केवल माता पिता की जिम्मेदारी नहीं होती थी बल्कि पूरा परिवार उनका मार्गदर्शन करता था। आज का दृश्य कुछ अलग है। शहरीकरण, रोजगार, शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बढ़ती चाह के कारण एकल परिवारों की संख्या बड़ी है। आज हमारे पास बड़े मकान हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, लेकिन कई बार भावनात्मक सहारा कम होता जा रहा है। प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में बार बार परिवार और सामाजिक एकता को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बताई है। उनकी रचनाएं हमें सिखाती हैं कि परिवार केवल रहने का स्थान नहीं बल्कि मनुष्य के चरित्र निर्माण का केंद्र है। भारतीय संस्कृति में परिवार का स्थान। भारत में परिवार को सदैव एक पवित्र स्थान माना गया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने पारिवारिक मर्यादा, त्याग, संबंधों की महत्वता को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का संबंध केवल भाइयों का संबंध नहीं बल्कि आदर्श पारिवारिक मूल्यों का उदाहरण है। इसी प्रकार महाभारत हमें यह भी सिखाती है कि जब परिवार में संवाद और विश्वास कमजोर पड़ते हैं तो संघर्ष उत्पन्न होता है। अर्थात परिवार में महत्व तभी है जब उसमें प्रेम, सम्मान और संवाद बना रहे। विस्तृत परिवार और संयुक्त परिवार, अक्सर लोग इनको एक समान समझ लिया जाता है जबकि समाजशास्त्री दृष्टि से इन दोनों में अंतर है। आइए जानते हैं विस्तृत परिवार और संयुक्त परिवार में क्या अंतर है। कहा जाता है कि प्रत्येक संयुक्त परिवार एक विस्तृत परिवार होता है लेकिन प्रत्येक विस्तृत परिवार संयुक्त परिवार नहीं होता। विस्तृत परिवार वह व्यवस्था है जिसमें माता पिता और बच्चों के अतिरिक्त दादा दादी, चाचा चाची एवं अन्य रिश्तेदार भावनात्मक और सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं। आवश्यक नहीं है कि वे सभी एक ही घर में निवास करें। विपरीत संयुक्त परिवार वह व्यवस्था है जिसमें परिवार की कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती हैं, संसाधनों का साझा उपयोग करती हैं तथा दैनिक जीवन की जिम्मेदारियां सामूहिक रूप से निभाती हैं। आइए जानते हैं विस्तृत परिवार की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। प्रिय श्रोताओं, विस्तृत परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं बल्कि सहयोग, स्नेह और सामूहिक उत्तरदायित्व की एक जीवंत व्यवस्था है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। इसमें एक से अधिक पीढ़ियां शामिल होती हैं, जिससे अनुभव और ऊर्जा का सुंदर समन्वय बनता है। परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध निरंतर बने रहते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे के सुख दुख, सफलता असफलता और जीवन की चुनौतियों में सहभागी बनते हैं। बच्चों को विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के साथ रहने और सीखने का अवसर मिलता है। भौगोलिक दूरी होने के कारण पारिवारिक जुड़ाव और अपनत्व बना रहता है। बुजुर्ग परिवार की परंपराओं और संस्कारों और जीवन अनुभवों के संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भौगोलिक दूरी होने के बावजूद पारिवारिक जुड़ाव और अपनत्व बना रहता है। वास्तव में विस्तृत परिवार व्यक्ति को यह अनुभव कराता है कि जीवन की यात्रा में वह अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ संबंधों का एक सशक्त आधार मौजूद है। आज के समय में भले ही परिवार में सदस्य अलग अलग शहरों या देशों में रहते हों, फिर भी यदि उनके बीच अपनत्व, सहयोग और नियमित संवाद बना हुआ है तो वे विस्तृत परिवार की भावना को जीवित रखते हैं। आइए जानते हैं मित्र और पड़ोसी किस प्रकार से विस्तृत परिवार का विस्तारित रूप है। आधुनिक समाज में परिवार की अवधारणा केवल रक्त संबंधों तक सीमित नहीं रह गई है। कई बार मित्र, पड़ोसी और निकट सहयोगी हमारे जीवन के परिवार जैसे भूमिका निभाते हैं। वे हमारी खुशियों के सहभागी बनते हैं, कठिन समय में हमारा संबल बनते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी स्वार्थ के सहायता के लिए आगे आते हैं। विशेष रूप से शहरी जीवन में जहां लोग अपने मूल परिवार से दूर रहते हैं, वहां मित्र और पड़ोसी सामाजिक समर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत बनकर जाते हैं। भारतीय संस्कृति का महान आदर्श वसुदेव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है, इसी व्यापक दृष्टिकोण के अभिव्यक्त करता है। यह विचार हमें सिखाता है कि परिवार केवल जन्म से प्राप्त संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास और सहयोग से बने संबंध भी परिवार का ही स्वरूप है। संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार का एक विशेष रूप है। किस प्रकार से, आइए जानते हैं। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार को विस्तृत परिवार का

सबसे संगठित और प्रभावशाली स्वरूप माना गया है। संयुक्त परिवार में अनेक पीढ़ियां एक साथ रह करके जीवन के दायित्वों को साझा करती हैं। यहाँ संसाधनों का सामूहिक उपयोग, पारस्परिक सहयोग, आपसी सम्मान तथा सामूहिक निर्णय की परंपरा देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार को हम ज्वाइंट फैमिली भी कहते हैं। संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के हित के लिए

परिवार संयुक्त हो या एकल, अंततः कहा जाता है कि संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार का एक विशेष और सशक्त स्वरूप है, जिसने भारतीय समाज को सदियों तक स्थिरता, सुरक्षा और सांस्कृतिक निरंतरता प्रदान की है। वर्तमान परिवेश में विस्तृत परिवार की आवश्यकता क्यों है, आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला है भावनात्मक सुरक्षा। आज तनाव, अवसाद और अकेलापन तेजी से बढ़ रहा है। जबकि व्यक्ति असफलता, बीमारी या संकट से गुजरता है, तब सबसे पहले परिवार ही है जो उसके साथ खड़ा होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन का मानना था कि व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्तित्व निर्माण के सामाजिक और पारिवारिक सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विस्तृत परिवार व्यक्ति को यह विश्वास देता है कि तुम अकेले नहीं हो। बच्चों के संस्कार और व्यक्तित्व विकास। आज माता-पिता दोनों नौकरी करते हैं, ऐसे में दादा-दादी बच्चों के लिए जीवंत विद्यालय बन जाते हैं। कहानियाँ, लोक कथाएँ, अनुभव और जीवन मूल्य बच्चों को पुस्तकों से अधिक प्रभावी ढंग से परिवार से प्राप्त होते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, चरित्र निर्माण की पहली पाठशाला परिवार है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बुजुर्गों का सम्मान और संरक्षण आधुनिक जीवन में वृद्ध अवस्था एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। केवल बुजुर्ग अकेलेपन का महसूस करते हैं। विस्तृत परिवार बुजुर्गों का सम्मान, सुरक्षा, उद्देश्य प्रदान करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो समाज अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, उसका भविष्य उज्जवल कभी नहीं हो सकता। दूसरा, आर्थिक सहयोग। संयुक्त परिवार सदैव आर्थिक सुरक्षा का आधार रहा है। किसी सदस्य पर संकट आने पर पूरा परिवार उसकी सहायता करता है। आज भी शिक्षा, विवाह, चिकित्सा या अन्य आवश्यकताओं पारिवारिक सहयोग अमूल्य साबित होता है। तीसरा, सामाजिक मूल्य का संरक्षण। सत्य, करुणा, सहनशीलता, सहयोग और त्याग जैसे मूल्य केवल पुस्तकों से नहीं आते, ये परिवार में जीकर सीखे जाते हैं। प्रख्यात समाजशास्त्र एमिल दुर्गिम ने कहा था कि समाज की एकता सामाजिक संस्थाओं से बनी रहती है और परिवार उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। आज के इस आधुनिक युग में किन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, आइए अब प्रश्न यह है कि यदि विस्तृत परिवार इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर कमजोर क्यों होता जा रहा है? इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम, शहरीकरण। रोजगार की तलाश में लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। दूसरा, व्यस्त जीवन शैली। समय की कमी रिश्तों को प्रभावित कर रही है। तीसरा, डिजिटल दुनिया। ऑनलाइन जुड़ाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन वास्तविक संवाद कम हुआ है। लोग आज ऑनलाइन की दुनिया में इतने ज़्यादा खो गए हैं कि अपने पारिवारिक जीवन में मेल मिलाप करना, मिलना जुलना कम करते जा रहे हैं। चौथा है व्यक्तिवाद। मैं की भावना कई बार हम पर भारी पड़ जाती है। क्या विस्तृत परिवार केवल साथ रहने के नाम है? नहीं, आज के समय में विस्तृत परिवार का अर्थ केवल एक घर में रहना नहीं है। यदि अलग अलग शहरों में रहते हुए भी हम एक दूसरे की चिंता करें, संवाद बनाए रखें, सुख दुख के साथ खड़े हों, तो परिवार की भावना जीवित रहती है। साहित्य और पुस्तकों में परिवार का महत्व समय समय पर बताया गया है। जैसे कि गोदान, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने बताया है कि ग्रामीण जीवन पारिवारिक संघर्ष और सामाजिक संबंधों की गहराई को दर्शाता है। द फैमिली एंड द इंडिविजुअल डेवलपमेंट, एरिक एरिक्सन ने बताया है, इसमें परिवार की व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला बताई गई है। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों और पारिवारिक संस्कृति को राष्ट्र निर्माण के आधार माना। ऐसे ही कई किताबों में अलग अलग तरीके से हमें परिवार की बारे में उनकी बारे में बताया गया है। एक प्रेरक प्रसंग। एक युवक ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, परिवार को जोड़े रखने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? दादाजी ने झाड़ू उठाई और कहा, एक एक दिन का अलग कर दो, सब टूट जाएंगे, लेकिन जब ये साथ बंधे हों, तब
तब मजबूत बन जाते हैं। युवक मुस्कुरा

0: और समझ गया कि परिवार की शक्ति एकता में है। भविष्य की दिशा आज आवश्यकता इस बात की नहीं कि हम पुराने समय में लौट जाएं, आवश्यकता इस बात की है कि हम आधुनिकता और पारिवारिक मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करें, तकनीक अपनाएं, प्रगति करें, सपने पूरे करें, लेकिन परिवार को पीछे ना छोड़ें। प्रिय श्रोताओं, विस्तृत परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं, भावनाओं का आश्रय, संस्कारों का विद्यालय और जीवन की कठिन राहों में सहारा देने वाला सबसे मजबूत स्तंभ है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तब परिवार की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। मैं अपनी बात रविन्द्रनाथ ठाकुर के विचारों में समाप्त करना चाहूँगी। मनुष्य की वास्तविकता विकास संबंधों की ऊष्मा में होती है। आइए संकल्प ले, परिवार से जुड़े रहें, बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को संस्कार दें और रिश्तों की इस अमूल्य विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। आप सभी को पिंकी नारायण मंडल की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।
1: वर्तमान परिवेश में विस्तृत परिवार का महत्व, इस विषय पर अभी वार्ता के माध्यम से जानकारी सुन रहे थे और हमारी वार्ताकार थी पिंकी मंडल।
2: श्रोतो, आंगनवाड़ी बच्चों के विकास, पुष्टाहार और प्राथमिक शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे सभी लाभ उठा सकते हैं जो इसके पात्र हैं, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं और किशोरियां।
1: और आंगनवाड़ी में किस तरह से लाभ ले सकते हैं, इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए चलते हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम की ओर। आंगनवाड़ी से जुड़ी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं अनुराधा पाल और इससे जानकारी के लिए लेंगी सुनीता सिंह।
2: श्रोताओं, बाल विकास विभाग की रीढ़ की हड्डी होती है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। तो श्रोताओं, आंगनवाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अनुराधा पाल और हम आपसे बात करेंगे आंगनवाड़ी जो विभाग है उससे जुड़ी कुछ जानकारी के लिए। तो हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय दीजिए।
3: नमस्ते, मेरा नाम अनुराधा पाल है, मैं ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद से आई हूँ।
2: अनुराधा जी, आप एक आंगनवाड़ी वर्कर हैं और कितने सालों से आप इस पोस्ट पर पोस्टेड हैं?
3: मेरी पोस्टेड 17 साल हो गई
2: जी। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आंगनवाड़ी की जब हम शुरुआत करते हैं, आंगनवाड़ी विभाग में हम ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहला काम आंगनवाड़ी का क्या होता है?
3: सबसे पहला काम ये होता है कि हम पूरे गांव का एक सर्वे करते हैं। सर्वे के हिसाब से मतलब उसका जो मकान नंबर वगैरह सब डालते हैं
2: जी।
3: फिर उसके बाद में जितनी हमारी गर्भवती होती हैं उनको एक तरफ छांट लेते हैं
2: जी।
3: फिर हम गर्भवती के बाद में जब उनका बच्चा रहता है तो वो धात्री कहलाती हैं। फिर धात्री के बाद भी फिर हम 0 से 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे अलग छांटते हैं और 0 से जो 7 महीने के बच्चे होते हैं उसे धात्री कहते हैं। और जो 3 से 6 वाले होते हैं उन्हें हम मतलब अपने केंद्र पे बुलाते हैं और उनको मतलब खेल खेल में भावगीत में शिक्षा देते हैं
2: जी। और कौन कौन से लाभार्थी होती हैं? शायद किशोरियां भी होती हैं।
3: इसमें किशोरियां भी होती हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं
2: जी। सबसे पहले आपने बात करी गर्भवती महिलाओं की, तो गर्भवती महिलाओं को आप छांटती हैं सर्वे क्षेत्र से, पहली प्राथमिकता क्या होती है उनके लिए, आप क्या काम करती हैं?
3: देखिए, जब हम लोगों को पता होता है आशा के द्वारा तो वो 3 महीने की हम लोग उन्हें पंजीकृत करते हैं राष्ट्र में। जब 3 महीने के बाद में फिर हम उनके घर पे जाते हैं, उन्हें बताते हैं, फिर 4 महीने बाद हम उनको टीका लगवाते हैं, पहला टिटनिस का, फिर उसका फिर दूसरा टीका लगता है। मतलब 1 महीने के बाद में 5 या 6 महीने का जब हो जाता है प्रेगनेंट तब दूसरा टीका लगता है। और उन्हें हम हरी सब्जी के बारे में बताते हैं, खान पान के बारे में बताते हैं, टीकाकरण के बारे में जो गोलियां मिलती हैं आयरन की, वो आयरन की गोलियां वगैरह उनके बारे में समझाते हैं। समय समय पर उनके घर जाते हैं, जब तक उनको 9 महीने पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक उनके घर पर हम 1 महीने में जाते ही रहते हैं। और उनके परिवार वालों को भी समझाते हैं कि इनका देख भेख अच्छी तरह से करें, उन्हें दाल वगैरह वगैरह सब कुछ खिलाएं
2: जी। अब जैसे कि अभी हमने बात करी गर्भवती महिलाओं की, अब बात करते हैं धात्री महिलाओं की। तो धात्री महिलाओं के लिए आपका क्या क्या काम होता है?
3: जब वो धात्री हो जाती हैं, आशा के साथ में जाते हैं, पता चलता है, तब उनको हम स्तरपान के बारे में बताते हैं, स्तरपान के बारे में बताते हैं जब वो स्तरपान करती हैं। और किस तरह से बच्चों को रखना चाहिए, छोटे बच्चों को परिवार का कैसे देखभाल करना चाहिए, किस तरह से स्तनपान देना चाहिए बार बार किस समय, और जब जब बच्चा होता है तो उसका जो पहला दूध होता है कोलेस्ट्रॉल, वो बताते हैं उनको सबसे पहले दूध वो पिलाना चाहिए बच्चे को, उससे काफी बीमारियां वगैरह दूर भागती हैं।
2: जैसे माँ का दूध कहते हैं कि 6 महीने तक बहुत जरूरी है, तो किस लिए और क्यों जरूरी होता है?
3: माँ के दूध में जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। पहले तो 6 महीने तक दूध होता था, अब तो ये कहते हैं जब तक माँ का दूध हो तब तक बच्चे को पिलाना ही चाहिए।
2: अच्छा, 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ कौन कौन से और चीजें बच्चे को देने चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे?
3: 6 महीने के बाद में बच्चे को दलिया है हल्का हल्का, मतलब केले को मसल के देना चाहिए और पतली पतली खिचड़ी देना चाहिए। घर में जो छोड़ी हुई चीज वगैरह बनती है माँ को अपने साथ में बच्चे को खिलाना चाहिए, उसका उसका स्वाद पता चलता रहता है।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तो रही खान पान की बात, और अब बात करते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। साफ सफाई की आप क्षेत्र में जाते हैं, गृह भ्रमण का एक चंक होता है उसमें जब जाते हैं, तो स्वास्थ्य के बारे में और खान पान के बारे में महिलाओं को, गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, उनको क्या जानकारी देती है?
3: देखिए हम गृह भ्रमण जब करने जाते हैं तो सबसे पहले तो हम उस घर में जाते हैं, जैसे हमारी गर्भवती या धात्री या 0 से 7 माह से 3 वाले बच्चे हैं उनको हम सफाई वगैरह बताते हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ बनाएं तो उसे हाथ धो के बनाएं, या सब्जी बनाएं सब्जी को धो के बनाएं, और जिस स्थल पर हम खाना बना रहे हैं उसकी सफाई करें। बच्चों को बताते हैं कि टॉयलेट वगैरह जाएं उसके बाद में आने से हाथ धोना चाहिए, कोई भी चीज़ खाना चाहिए हाथ धो के खाना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए, वॉश वगैरह करना चाहिए।
2: जी अनुराधा जी, हमारी सरकार जो कुपोषण के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक है, तो आंगनवाड़ी की तरफ से इतनी सारी चीजें सरकार ने उपलब्ध करा रखी हैं, वेट मशीन है, लंबाई नापने की मशीन है, तो उसके माध्यम से अगर हम लंबाई और वजन लेते हैं बच्चे का, तो कैसे पता चलता है कि ये कुपोषण की श्रेणी में है, बच्चा कुपोषित है, तो उसके लिए आप कैसे करते हैं और कैसे पता लगाते हैं कि ये बच्चा कुपोषित है?
3: पहले तो ऐसा होता था ना, मतलब मशीन वगैरह हम लोग को नहीं मिलती थी तो हम लोग इंची टेप वगैरह से लंबाई वगैरह नापते थे, अब मशीन मिल गई है तो उसको मतलब कई तरह से कुपोषण देखा जाता है। कुछ बच्चे होते हैं बाजू से नापे जाते हैं
2: जी,
3: तो कुछ बच्चे अब तो पट्टी वगैरह मिली है, और मतलब एक तो होता कि बच्चा हाइट में कम हो उसे भी कुपोषित कहा जाता है, और एक बच्चा पतला दुबला होता उसे भी कुपोषित कहा जाता है। तो ये तो वजन वगैरह लेने के बाबा जो, जैसे वजन में भी बच्चे की संख्या वही आ रही है और लंबाई में भी वही आ रही है तब तो बच्चा कुपोषित है, और कुछ लोग मानसिक तौर से भी कुपोषित कहलाते हैं।
2: नहीं, जैसे कि हमने बच्चे का वजन लिया, वजन के 3 मानक होते हैं, एक हरे में होता है सामान्य में, एक पीला होता है,
3: लाल,
2: एक लाल होता है। तो मान लीजिए जब हम वजन लेते हैं तो अगर हम चार्ट में उसका वजन और लंबाई को देखते हैं तो बच्चा लाल श्रेणी में आता है तो वो कुपोषित होता है, और पीली श्रेणी में आता है तो आंशिक रूप से कुपोषित। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए जो आपको पोषाहार मिलता है क्या उसको डबल खुराक देते हैं?
3: हाँ, लाल वाले जो श्रेणी में आते हैं उनको हम लोग डबल देते हैं,
2: और पीले वाले को,
3: पीले वाले को जो सिंगल मिलता है उसका तो उसको वो देते हैं, और हरे वाले को तो मतलब उनको नहीं दिया जाता है,
2: उनको तो वही दिया जाता है जो कि
3: जो उनके वहाँ आता है।
2: जी, और मान लीजिए बच्चा बहुत कमजोर है और लाल श्रेणी में, तो उसके लिए रेफर की सुविधा होगी आपके?
3: जी, हॉस्पिटल के लिए जाया जाता है, मतलब हम लोग आशा को बताते हैं, या आशा ना जाए तो खुद जाके मतलब हॉस्पिटल जाके मतलब उनको एडमिट किया जाता है।
2: जी अच्छा, जो 3 साल से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए आप क्या क्या करते हैं?
3: 3 से 6 वाले बच्चों को हम केंद्र पे बुलाते हैं
2: जी,
3: फिर केंद्र पे बुलाने के बाद उनको थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं और उनको भावगीत वगैरह कराते हैं, उन्हें खेल खेल में जानकारी देते हैं उन्हें, हम कैसे वो जब दूसरे स्कूल में जाएं तो उन्हें दिक्कत नहीं आए, और बच्चों को एक जानकारी रहती है कि हम दूसरे स्कूल में जाएंगे तो वो पर माँ बाप को परेशान भी नहीं करते हैं, और सारी जानकारी देते हैं जैसे भावगीत के बारे में या ABCD के बारे में या खेल खिलाने के, उन्हें तो सारी चीजें उनके लिए अच्छी तरह से जानकारियां हो जाती हैं।
2: अनुराधा जी, जो पोषाहार की भी सुविधा आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध है, तो किस तरह से और क्या क्या चीजें आंगनवाड़ी पर आती हैं पोषाहार के रूप में, और किस तरह से आप वितरण करती हैं वो हमारे श्रोताओं को बताएं?
3: राशन तो हम लोगों के लिए वही आता है, पंजीरी मतलब दाल दलिया और रिफाइंड, और लाभार्थी के लिए जैसे जितने हम लोग के पंजीकृत होते हैं उस हिसाब से गर्भवतियों को हम लोग के लिए हिसाब से और आता है, और 3 से 6 वाले के लिए अलग आता है, 7 से 3 वाले के लिए अलग आता है। 3 से 6 वाले के लिए तो हम आधा किलो दाल देते हैं और आधा किलो दलिया का देते हैं, और जो गर्भवती और धात्री होती है उनको एक आधा किलो रिफाइंड और 1 किलो दाल 1 किलो दलिया देते हैं, वही चीज 7 से 3 वालों को दी जाती है।
2: बिल्कुल,
3: और किशोरी लड़कियों को भी दी जाती है।
2: जी अनुराधा जी, आपने हमें इतनी विस्तार से जानकारी दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
4: आंगनवाड़ी से जुड़ी जानकारी विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए अनुराधा पाल से बात कर रही थी मैं स्वयं सुनीता सिंह। और अब आयशा एक प्यारा सा गीत सुन ले हम और श्रोता मिलके।
3: जी जी बिल्कुल।
4: तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, गीत के बाद फिर से चलते हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम की ओर, जिसके अंतर्गत सुनते हैं एक और क्षेत्र संकलित। और इसके लिए जानकारी लेंगे हम आंगनवाड़ी से, और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है प्रवेश। तो चलिए करते हैं इनसे बातचीत।
1: बच्चों को पूरक पोषाहार विषय पर क्षेत्र संकलित बातचीत करेंगे हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से। तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
2: मेरा नाम प्रवेश है, मैं बाबा दीप सिंह नगर की कार्यकर्ती हूँ।
1: जी, तो जी आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ये पूरक पोषाहार क्या होता है।
2: पूरक पोषाहार एक अतिरिक्त भोजन है जो हम बच्चों को 6 माह की उम्र के बाद देते हैं, और दूध के साथ साथ उसे कि बच्चा बड़ा होने लगता है, माँ को दूध कम उतरता है, इसलिए ये सब चीजें हम देते हैं बच्चों को, जैसे कि मसला केला है, दूध, फलों का रस, दलिया, खिचड़ी, चावल का माड़। 6 माह तक बच्चों को केवल माँ का दूध ही पिलाते हैं, पानी घुट्टी कुछ नहीं। 6 माह के बाद बच्चों को तरल पदार्थ देते हैं, जैसे कि दलिया, पानी और फलों का रस।
1: तो इसमें आंगनवाड़ी जो ये सामान देती है, इसमें बच्चों की उम्र क्या होती है?
2: भारतीयों को जो लाभ देते हैं हम, वो 0 से लेकर 7 साल तक के बच्चों को देते हैं
1: जी।
2: उसमें समय पहले हम गर्भवती महिलाओं को देते हैं, क्योंकि गर्भवती महिला के 9 महीने में प्रसव हो जाएगा, तब वो 0 से 6 माह में आएगा, ठीक है। फिर उस 0 से 6 माह, 6 माह से 7 माह से 3 साल के बच्चे और 6 साल तक के बच्चों को हम ये लाभ देते हैं। जिसमें अब तो सरकार के द्वारा बहुत कुछ आ रहा है, जैसे कि दाल है, दलिया है, तेल है, चावल है, ये हम सब कुछ अपने लाभार्थियों को उनके घर तक पहुंचवाते हैं
1: जी। तो प्रवेश जी, पूरक पोषाहार में आंगनवाड़ी का क्या काम होता है?
2: जो सामान आता है हम उसको बांटते हैं बच्चों को। शाला पूर्व शिक्षा लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को हम शाला पूर्व शिक्षा देते हैं, केंद्र खोलते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं। जो छोटे बच्चे उनको टीकाकरण कराते हैं, 7 माह से 3 साल के बच्चे हैं उनको भी हम घर घर जाकर परामर्श देते हैं, गर्भवतियों को परामर्श देते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में समझाते हैं हम
1: जी। तो यानी पूरक पोषाहार से शिशुओं को जो लाभ मिलता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वो बीमारियों से बचते। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहता है? पूरक पोषाहार से बच्चों को क्या लाभ मिलेगा, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगी?
2: पोषाहार से बच्चों को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि जब पूरक पोषाहार बच्चों को दिया जाएगा, संतुलित आहार दिया जाएगा, जिसमें कि हरी सब्जियां हो गई और फल हो गए, ये सब चीजें हम देंगे तो उनके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब स्वास्थ्य ये सब चीजें खाएंगे तो कम बीमार पड़ेंगे।
1: यानी कि पूरक पोषाहार अगर बच्चों को मिले तो वो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं
2: जी।
1: इसलिए हर किसी को इसके लाभ को समझना चाहिए।
2: हम समझाते हैं क्षेत्र में, परामर्श देते हैं हम उनके, बच्चे की साफ सफाई पे ध्यान दीजिए, बच्चे के खाने पे ध्यान दीजिए, और हम वजन तोलते हैं, वजन तोल के ही बच्चों को बताते हैं कि कौन से किस बच्चे का वजन कम है, कौन कुपोषण की ओर जा रहा है। वजन के द्वारा ही हम सब उनके माताओं को समझाते हैं। अगर वजन में बच्चे सही हैं, सामान्य में, तो उनको तो हम कभी कमी सलाह देते हैं, जो कुपोषण है उनकी माओं को तो हम बहुत सलाह देते हैं
1: जी। प्रवेश जी,
2: ध्यान दीजिए और बच्चे को अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। टीकाकरण के लिए बोलते हैं कि हर महीना समय से टीकाकरण कराइए अपने बच्चे का, होने वाली बीमारियों से बच सके आपका बच्चा
1: जी। आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, उम्मीद करते हैं कि श्रोता इससे जरूर लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: ठीक है जी, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: आंगनवाड़ी से जुड़ी जानकारी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आयशा अनवर के साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर प्रवेश, और शायद हमें ये उम्मीद है कि ये जानकारी से काफ़ी लाभ लिया होगा हमारे श्रोताओं ने
1: जी। और क्यों ना सुनीता जी, अब हेल्थ टिप्स में बात कर ली जाए।
0: बिल्कुल,
1: और इसमें हम बात करेंगे नियमित व्यायाम करें विषय पर
0: जी।
1: श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए टाइम मिलता ही नहीं है, जिसका असर सीधा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा आयशा, तो कुछ टाइम अपने लिए जरूर निकालें, योग करें, व्यायाम करें।
1: सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है।
0: बिल्कुल, और मौसमी फल और सब्जियों का सेवन करें।
1: पानी खूब ज्यादा पिएं, अक्सर लोग पानी पीते ही नहीं है और वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अपने साथ पानी रखें, छाता रखें, गमछा लेकर जाएं, मूवी देखने जाएं तब भी आप छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं,
3: और ये जो तेज धूप है इसकी किरणों से हमें बचना चाहिए। आंखों को बचाने के लिए आप चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और अगर हो सके तो दोपहर में तेज धूप में ना निकले, और ज़रूरी काम हो तो ये सारी चीज़ें लेकर ज़रूर निकले, और पानी तो अपने साथ ज़रूर निकले, और जैसा कि हमने बताया योग और व्यायाम करते रहें। वैसे भी 21 जून को हम योगा दिवस मना रहे हैं
3: जी, बिल्कुल,
0: तो बिल्कुल अभी से तैयारी करें, योग करें।

0: व्यायाम करें और अपने आप को फिट रखें।
1: और अब बात कर लेते हैं पत्रों की।
0: बिल्कुल,
1: हमें प्यारा सा पत्र जिसको लिखने वाले हैं हमारे श्रोता थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खां PWD वाले, शाहिदा परवीन उर्फ शीबा, इमरान खां, रेहान खां, इकराम खां, समीना बी, आसिफा और शबीना ने। आप सभी ने 9 जून का परिवार जगत कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। इसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे कार्यक्रम को अपने पत्र भेजते रहा करें, हमें भी आपके पत्रों का इंतज़ार रहता है।
0: बिल्कुल, हमारी और भी श्रोता हमें पत्र लिखें और पत्र हमें हम तक पहुंचेंगे तो हम अपने कार्यक्रम में उनको जरूर शामिल करेंगे। और अब चलते चलते आशा एक और प्यारा सा गीत सुन लें।
1: जी जी बिल्कुल।

परिवार जगत, अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप तक पहुंचेंगे मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सुप्रे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
2: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार

0: करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: यूएनएससी रिफॉर्म वुड बी ग्रॉसली इनएडिक्वेट।
2: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप श्रोता जुड़े हुए हैं।

0: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है
0: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं,
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
0: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
0: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी।
0: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है,
0: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना, पक्षियों को दाना खिलाना, डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
0: जी।
1: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है,
0: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है, वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी, अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा?
0: अजीत जी, इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
1: जी।
0: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है।
1: हुँ?
0: और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
1: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
0: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए।
1: हुँ?
0: और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
0: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे?
0: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
0: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
0: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
1: वाह यानी?
0: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
0: दूसरा शब्द है केई।
1: जी,
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
0: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे।

0: श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ, पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो, ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
3: और हाय।
4: हर गोविंद भाई,
3: हाँ?
4: तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया।

0: हर कोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: नना नना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हाले गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।

0: जीते रहो हरगोविंद बेटा, क्या समाचार है?
1: जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
0: मेरी बेटी का कोई संवाद?
1: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
0: हाँ?
1: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
0: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
1: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
0: सो तो है।
1: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
0: अरे हर गोविंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
0: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।
1: अच्छा अच्छा माँ जी।
0: अरे हर गोविंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हर गोविंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोविंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हर गोविंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
1: माँ जी अब आज्ञा दीजिए।
0: अरे
1: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पाए लागू।
0: जीते रहो बेटा,
1: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
1: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
1: अच्छा, राम राम।
3: राम राम
1: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पीलो पीलो, शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई, तुम
2: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, यहीं रहूंगी।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: जॉइन टुगेदर इन द जनजातीय गरिमा उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ प्राइड, एस्पिरेशन एंड द जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत, इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ट्राइबल कम्युनिटीज मूव फॉरवर्ड विथ होप, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June. Showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट अ डेजर्ट इज रियली लाइक। The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and, therefore, no vegetation grows. It is dry, hot, waterless, and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals, and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar, or cold like Ladakh. But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. Some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry, shifting sands. All living things need water in order to survive. Camels can do without water for days together. The reason is they sweat very little. We sweat because we must keep our body temperature constant. We sweat when it gets hot, and this cools the body. Camels can stand high body temperature. They don't need to sweat and can, therefore, retain the water they drink for long periods of time. The smaller desert animals do not drink water. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variations of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth.
3: आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग
8: उमंग। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 3 बज रहे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों को। अब से लेकर संध्या 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के प्रसारण। संध्या 5 बजे अपनी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव और FM पर आपसे पुनः भेंट होगी। अब मीडियम वेव पर हमें ये सभा सम्पन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ है
1: आरती श्रीवास्तव।
0: आप सभी को हमारा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक है। बस इस गर्मी में जितने ठीक हो सकते हैं उतने ठीक है।
0: बिल्कुल सही कहा, इस गर्मी में हम जितने अपने आप को अच्छा रख सकते हैं उतना हमें रख लेना चाहिए, वरना तो तबीयत खराब होती, देर भी नहीं लगती।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से ना बहुत परेशानियां हो रही हैं, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छा ध्यान रखिए।
0: हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने पढ़ने का ध्यान रखना है, सोने का, कब सोते हो कब उठते हो,
1: और कोशिश करिए
0: सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहें। ठीक है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो तो है ही, इसके अलावा फालतू बाजार में जो घूमने की हमारी आदत होती है वो हमें थोड़ा बदलनी है।
1: बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और पूरे चीजों के साथ निकलिए, यानी कि अपने अच्छे से अपना सिर ढक के निकलिए, एक गीला कोई कपड़ा है उसको अपने सर पे रखिए, या इस तरीके की चीजें आप करके, और पानी की बॉटल जरूर लेके जाए, इस तरीके का आप लेके चलिए, तो जिससे कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तबीयत ना खराब हो।
0: और घर पर बैठकर पढ़िए ना, सबसे अच्छी बात है कि दिन हो या रात हो या शाम हो, अगर हमने पढ़ने की आदत डाल ली है ना आरती, तो पढ़ना जो है वो एक बेहद शानदार आदत है। और ये जो किताबें हैं वो हमारे ज्ञान तो खैर बढ़ाती ही है, इसके अलावा हमें नई दुनिया में ले जाती है और हमारा तनाव कम कर देती है और हमारे मन को सुकून देती है।
1: बिल्कुल, और हमारा शब्द भंडार भी बढ़ा देती है। और जितना हम किताबों से जान सकते हैं ना, उतना मोबाइल में देख के, या फिर बाहर इतना ज्यादा इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, तो वहां बाहर जाके अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है हम घर में रह के थोड़ा अच्छा साहित्य पढ़ें, या जो भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसको पढ़ें, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा।
0: खासतौर से गर्मी को कोसने से अच्छा है कि हम पढ़े, कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़े, जीवनी पढ़े,
1: पढ़ के थोड़ा बहुत उसको लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा, या क्या आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें, देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी।
0: बिल्कुल सही कहा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो चलिए बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आई हैं।
1: आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती आपको किस तरीके से अजय बना देती है। अजय मतलब ये, आप अगर देखिए मन के जीते जीत होती है, अगर आपको आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग्र सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
0: सबसे बड़ी बात है हमारा मन कितना सशक्त है, अगर मन के हारे हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
0: मन को सशक्त बनाते हैं, हमारे श्रोता बता सकते हैं हमारी
1: किस तरह से, अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं या फिर हिचकिचा जाते हैं।
0: और कई बार क्या होता है आपकी घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में, ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती है कि अरे भाई आज तो पति देव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने

0: ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं या फिर हिचकिचा जाते
1: और
0: हैं
1: कई बार
0: तो
1: क्या होता है आपकी
0: जी
1: घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में, ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती है कि अरे भाई आज तो पति देव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया। तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती हैं और डटकर इन चीजों का, इन समस्याओं का मुकाबला कैसे

0: ध्यान रखिए, अच्छा ध्यान रखिए।
1: हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है,
0: जी
1: अपने पढ़ने का ध्यान रखना है, सोने का, कब सोते हो कब
0: बिल्कुल,
1: उठते हो,
0: और
1: और
0: कोशिश
1: धीरे धीरे
0: करिए।
1: सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहें। ठीक है,
0: बिल्कुल।
1: कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो तो है ही, इसके अलावा फालतू बाजार में जो घूमने की हमारी
0: जी
1: आदत होती है वो हमें थोड़ा
0: बिल्कुल,
1: बदलनी है।
0: बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और पूरे चीजों के साथ निकलिए, यानी कि अपने अच्छे से अपना सिर ढक के निकलिए, एक गीला कोई कपड़ा है उसको अपने सर पे रखिए, या इस तरीके की चीजें आप करके, और पानी की बॉटल जरूर लेके जाएं, इस तरीके का आप लेके चलिए, तो जिससे कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तबीयत ना
1: हाँ,
0: खराब हो।
1: और घर पर बैठकर पढ़िए ना, सबसे अच्छी बात है कि
0: हाँ
1: दिन हो या रात हो या शाम हो, अगर
0: जी
1: हमने पढ़ने की आदत डाल ली है ना आरती, तो पढ़ना जो है वो एक बेहद शानदार आदत है। और
0: बिल्कुल
1: ये जो किताबें हैं वो हमारे ज्ञान तो खैर बढ़ाती ही हैं, इसके
0: बिल्कुल
1: अलावा हमें नई दुनिया में ले जाती है और हमारा तनाव कम कर देती है और हमारे मन को सुकून देती है।
0: बिल्कुल, और हमारा शब्द भंडार भी बढ़ा देती हैं, और जितना हम किताबों से जान जान सकते हैं ना, उतना मोबाइल में देख के, या फिर बाहर इतना ज्यादा, इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, तो वहां बाहर जाके अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है हम घर में रह के थोड़ा अच्छा साहित्य पढ़ें, या जो भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसको पढ़ें, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा।
1: अच्छा लगेगा, खासतौर से गर्मी को कोसने से अच्छा है कि
0: ना
1: हम पढ़ें,
0: जी
1: कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़ें,
0: बिल्कुल,
1: जीवनी
0: और
1: पढ़ें।
0: उस पढ़ के थोड़ा बहुत उसको लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा, या क्या
1: हाँ
0: आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें,
1: बिल्कुल
0: देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस उसका
0: जी
1: उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो
0: जी
1: चलिए बताइए, आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आई हैं?
0: आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती आपको किस तरीके से अजेय बना देती है। अजेय मतलब ये, आप अगर देखिए, मन की जीते जीत होती है, अगर आपको आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
1: सबसे बड़ी बात है हमारा मन
0: बिल्कुल
1: कितना सशक्त है। अगर मन के हारे हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
1: मन को
0: बिल्कुल,
1: सशक्त बनाते हैं। हमारे
0: हाँ
1: श्रोता बता सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: हमारी
0: कि किस तरह से
1: सखियां।
0: अगर कोई आपको कहीं पे

0: हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमने हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहरी में उन्हें अच्छा भी लगा होगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी।
0: थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं, जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: जी। तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों जब मनाते हैं इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है।
0: हाँ हाँ
1: तो
0: बिल्कुल।
1: जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को बाहर से भेजता है, तो उसे प्रेक्षण या रेमिटेंस कहा जाता है।
0: हाँ बिल्कुल। ये परिवार को भेजा गया धन केवल आर्थिक सहायता नहीं होता आरती, बल्कि उसमें प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी शामिल होती है। और हर वर्ष आज ही के दिन मनाए जाने वाले इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी एफएडी ने IFAD ने की थी।
1: जी, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं, वो अपने परिवारों को उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को पहचान देना और उनके योगदान को सम्मानित करना था।
0: हाँ, बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल को समर्थन दिया और जिससे इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिली। ये दिन उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए चुना गया है जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर दिवस किसी न किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, परिवारों और समुदायों के विकास में रेमिटेंस की भूमिका को उजागर करना।
0: हाँ, और

0: सुरक्षित धन प्रेषण सेवाओं को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों में रेमिटेंस के योगदान को रेखांकित करना भी इसका खास उद्देश्य है। और आज दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक नियमित रूप से अपने परिवारों को धन भेजते हैं।
1: जी, और ये धन केवल परिवारों की दैनिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में निवेश का भी आधार बनता है। इसीलिए इस प्रेषण को या रेमिटेंस को कई देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है।
0: बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस हमें ये भी याद दिलाता है आरती, कि भेजी गई हर राशि के साथ जुड़ी होती है उम्मीदें, है ना, रिश्ते और बेहतर भविष्य की कामनाएं। देखो, जब हमें कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं।
1: बिल्कुल।
0: हमारे परिवार में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे, तो कितनी कितनी खुशी
1: खुशी होती
0: थी
1: कि ना, कि अब चलो ये जरूरतें हमारी,
0: हाँ, हम पूरी कर लेंगे, है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो कितने उन लोगों को उसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को।
0: बिल्कुल।
1: तो चलते चल के एक सुनते हैं गीत ना।

0: तो आरती महीना तो जून का है।
1: जी हाँ, पसीना भी बहुत आ रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा, और इसी जून के महीने में हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाए
1: हाँ, इस
0: रखना है।
1: पसीने से भी बचा के रखना है अपने को।
0: तो हमारे
1: जी
0: श्रोता लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, बताओ क्या क्या लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
0: ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने, उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिन इस दिन मनाया जाता है 16 जून को, और ये दिन विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में रहने वाले परिवारों को भेजे जाने वाली धनराशि यानी कि रेमिटेंस और उनके वित्तीय योगदान को सम्मानता देने और सम्मानित करने को लेकर समर्पित है। और ये दिन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों के त्याग और प्रयास को सराहता है जो दूर रहकर भी अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो भेजने की जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है। और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है। और यह दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हमारे साथ। और आरती, और देखा आपने कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग, और कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे, है ना।
1: और बहुत जरूरी भी है, अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती है, क्योंकि भाई जीवन है, उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है, है ना, या उसकी तरह क्यों नहीं। जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी, आपको जरूरी नहीं है आपको पता हो उसके ऊपर।
0: आपने उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना, आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह से हंसना बोलना और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानियां है, वो हम नहीं जान पाते हैं।
1: बिल्कुल, इसी को लेकर छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे। लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वो है कौआ।
0: बिल्कुल,
1: वो जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो उस ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी है जो है ना वो उस तक उस पर वेस्ट नहीं, उस पर बिल्कुल भी जाया नहीं करता। वो अपनी उड़ान के ऊपर ऊंचा कर देता है, वो इतना ऊंचा उठ जाता है
0: कि
1: कौआ वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो वो मतलब उससे जूझा नहीं, उससे उसने कोई बात नहीं करी, उसके ऊपर अपनी
0: डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपना संतुलन नहीं,
1: लक्ष्य से नहीं हटा, किसी को देखे, बस उसने अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लिया कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो तंग करने वाले, परेशान करने वाले, है ना, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाए रखना चाहिए कि नहीं, आपकी उड़ान चील जैसी होनी चाहिए, कि आपको इतना ऊंचा उड़ना है कि कौवा खुद ब खुद अपनी उड़ान हटा ले, है ना।
1: बिल्कुल, वो हार मान के अपने आप ही हट जाए।
0: ये होना चाहिए और होता भी है। कुछ लोग जो महान बने हैं उन्होंने ऐसे ही तो महानता अर्जित नहीं की ना आरती। तो जीवन में हर नई चुनौतियों को, हर नए संघर्ष को और हर नई परिस्थितियों को जो है वो हमें वो हमारा इंतजार कर रही होती है, और कुछ लोग छोटी सी कठिनाई से, छोटी सी बातों से, छोटे से दुख से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी मुस्कुराकर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है केवल परिस्थितियों का नहीं है बल्कि मानसिक मजबूती का होता है।
1: बिल्कुल, और मानसिक मजबूती व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र खोल दिया और आपने एकदम
0: कि आपके पास जादू की छड़ी आई, आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और ताला खुल गया।
1: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है।
1: बिल्कुल, और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। जी, और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है। क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना
0: तो उसका फायदा उठाया जाता है। उसका फायदा उठाया जाता है। कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी को, इसीलिए कहते हैं।
1: तो इतने कमजोर बनिए ही मत, किसी भी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: उसका सामना करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती, कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए। क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो आप दो टुक बात करें, जो सच है वो कह दें, फैक्ट्स जो है, और नहीं तो चुप रहें।
1: बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप विस्तार से उसे बताने की कोशिश मत करें।
0: अपनी सफाई देना,
1: उसको वही सफाई अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं है तो सीधे ना कहना जरूरी है। उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उसलिए, है ना। तो सिर्फ ना कहना काफी है, ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
0: होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है, या हमारे अंदर जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है,
0: शांत हो जाते हैं। कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता। जब आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पड़ा इन बातों में। और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो है घूम रही होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुक कर सहित होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
1: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं, ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे, ये जरूर आप पूछिए।
0: बिल्कुल, सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी हैं।
1: बिल्कुल,
0: और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं।
1: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं,
0: गलत माने जाते हैं। इसलिए किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, कि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता। होता क्या, हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं।
1: बिल्कुल, और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी इमोशन में आके कह दिया तो फिर आपकी परेशानी
0: सारी परेशानी खड़ी हो जाती है, फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं। लेकिन इस वक्त हमें सफाई ये देनी है आरती,
1: अंतराल का समय हो गया है,
0: एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।
1: जी,

0: हमने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए, और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए,
1: बिल्कुल सही कहा
0: क्योंकि ना
1: आपने।
0: देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्वर से धीरे और हम जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे क्यों देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है। तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता
0: बिल्कुल
1: है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना।
0: जी
1: तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए, तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते
0: कि
1: हैं
0: आपने
1: कि
0: इंतजार
1: शुक्रिया,
0: किया।
1: आपने हमारा इंतजार किया,
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: ये थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज का सामने।
1: है ना। तो
0: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके, आप सही हैं तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए
1: 10 लोगों के
0: दस
1: पास
0: लोगों के
1: मत
0: पास मत जाइए, है ना,
1: जाइए।
0: कि देखो देखो ये चीज सही है ना, देखो देखो ये चीज सही है ना। कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को
1: देखो।
0: भूल जाइए।
1: और ऐसा होता
0: बिल्कुल,
1: है, लोग जो है 10 लोगों के पास जा
0: हाँ
1: जाकर पूछते हैं, है
0: हाँ
1: ना।
0: कि हम सही हैं, हम सही हैं।
1: हम
0: अगर आप
1: सही है
0: सही
1: ना,
0: हैं तो
1: आप
0: अपने,
1: सही हैं,
0: बिल्कुल अपने
1: आप
0: दिमाग
1: सही,
0: से, अपने
1: बिल्कुल
0: अपने आपसे निर्णय लीजिए, आप
1: बिल्कुल,
0: सही हैं
1: आपका अपना
0: तो सही
1: निर्णय कोई
0: हैं
1: भी हो सकता है,
0: बस।
1: उसमें आपको डरना किस बात का है। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो
0: जी
1: आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल।
1: और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ। मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है ना,
0: जी जी बिल्कुल
1: कितना अच्छा है।
0: जी,
1: और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो
0: बहुत
1: कि
0: जरूरी है।
1: हम नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा, हम भावुकता
0: जी
1: में बह जाते हैं। तो लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते
0: बिल्कुल,
1: हैं,
0: बारीकी से, बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते
1: तब
0: हैं
1: वो कैसे होते
0: तब उनके
1: हैं,
0: चेहरे पे कैसे
1: क्या
0: भाव
1: होता
0: आते
1: है,
0: हैं,
1: ये
0: वो
1: आपको,
0: बहुत
1: हाँ
0: जरूरी
1: ये
0: है।
1: आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि
0: जी
1: आपने जब तक हाँ भरी तब तक
0: हाँ
1: आप बहुत अच्छे थे,
0: जी
1: लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं, है ना।
0: बिल्कुल।
1: आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने
0: बिल्कुल,
1: व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत
0: और
1: बनाइए।
0: इसके लिए जरूरी है हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखें, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया करते देते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और
1: बिल्कुल,
0: जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए,
1: हाँ,
0: क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत आ, आ, कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए,
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा,
0: बाद में हमें उसका पछतावा भी होता है। लेकिन
1: हाँ,
0: शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: इस बात का हमें ध्यान रख के
1: सोच
0: बोलना
1: समझ
0: चाहिए।
1: के बोलें, तोल मोल के बोलें। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में
0: जी
1: लगा पाते और अपना समझकर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी न कहें जो बाद में
0: जी
1: आपको पछतावा दे।
0: बिल्कुल।
1: और हम सबकी आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने, तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। ऐसे लोग हमसे
0: अच्छा।
1: नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में
0: जब
1: आ
0: हम,
1: जाती है।
0: क्योंकि लगता है ना उनको कि जैसे कि अब मैं अभी आपकी तारीफ करूं और उस किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि हाँ ये तो मैं करती नहीं हूँ, फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा अच्छा लगेगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए,
1: हाँ, फिर
0: क्योंकि
1: मैं
0: ये
1: हर दिन,
0: चाटुकारिता में आ
1: हाँ, ये
0: जाता है।
1: चाटुकारिता में आता
0: जी
1: है। और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने
0: बिल्कुल
1: वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
0: जी, अपनी
1: और
0: खूबी अपनी खामी हर
1: हाँ,
0: इंसान को पता होती है,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: होती
0: है ना।
1: है। और
0: तो
1: मजबूत मन ही वो
0: देखिए
1: जादू है
0: जी
1: जहां व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता
0: बिल्कुल
1: है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है।
0: जी
1: इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी।
0: बिल्कुल, और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें कि वो आपकी तारीफ करेंगे, मजाक
1: जैसा मैंने आज उम्मीद की थी कि
0: लीजिए।
1: आरती आते ही मेरी तारीफ
0: जी
1: करने वाली है, पर
0: नहीं
1: आरती
0: नहीं
1: ने आज
0: आप
1: तारीफ
0: नहीं,
1: नहीं की।
0: मैं तारीफ करती हूँ, लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई कि आपको चाटुकारिता लगी इस चीज को,
1: हाँ,
0: मैं एकदम सही तरीके से आपकी कि जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ वो करती
1: तो
0: हूँ।
1: मैं आगे उम्मीद रखती
0: बिल्कुल
1: हूँ।
0: बिल्कुल, उम्मीद रखिए अच्छे से तारीफ की।
1: तो चलिए,
0: जी
1: आप श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम उन्हें
0: एक
1: एक
0: गीत
1: प्यारा सा गीत
0: सुनाए।
1: सुनवा दें।
0: जी

0: हाँ
1: तो अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत मेघा मलिक की।
0: अरे वाह बिल्कुल
1: जी, तो रंगों की दुनिया में सपनों को आकार देने वाली एक सृजनशील व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग के एक प्रतिष्ठित उद्यमी है।
0: हाँ बिल्कुल, और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की। विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है।
1: जी, और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
0: बिल्कुल, और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉरपोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वे फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें शामिल है।
1: जी, और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, पीपीसी सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से अधिक निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं। कि कितना सुंदर दिख रहा है वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
0: क्या बात है।
1: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
0: और इसलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की, और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है।
1: बिल्कुल, और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है।
0: हाँ बिल्कुल, और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है, और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यावसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है, और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
0: और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज और उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: और बहुत ही अच्छी बात है ये। और महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना नया पहचान, अपनी नई पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं।
0: बिल्कुल, तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के, लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर बात करें हम?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा गीत क्यों ना सुने।
0: अच्छा, आपको गीत की तलब हो ही गई है चाय की तरह।
1: जी,
2: जरा नजरों से कह दो जी।

0: तो धूल के ढोल सुहावने। कई बार ऐसा होता है ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना, वो ऐसी देख के, तो देखने में तो इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें, जब हम शॉपिंग ऐप पे जाते हैं और जब वो आती है हमारे पास, तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना,
0: हाँ
1: ऑनलाइन शॉपिंग करते समय
0: जी जी
1: बहुत सुंदर ड्रेस लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती, यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने।
0: बिल्कुल। और फिर वापस करो, ये करो,
1: वो
0: गुस्सा आता है
1: सारी
0: ना उस
1: प्रक्रिया ही
0: समय,
1: शुरू हो जाती है।
0: इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस, सच में।
1: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है, वो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है, वो पास जाकर उतनी अच्छी होती नहीं है। उदाहरण,
0: जी
1: जैसे गांव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, पर
0: हाँ
1: शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है, फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोली सुहावने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया है। और एक और मैं जो श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे, जितना करीब जाओगे उतना ही ऊबड़ खाबड़ दिखाई देंगे। जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है, लेकिन साल जब मतलब उस पर जब यान भेजा गया तो उस पर देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितने कैसा अजीब अजीब सा है वो जगह। तो वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने, यहाँ से देखने में कितना सुंदर
1: बहुत
0: चमकता है।
1: सुंदर लगता है। हम उसकी तुलना करते हैं हर एक चेहरे
0: बिल्कुल,
1: से, चांद की तरह सुंदर चेहरा है ना, चांद जैसा
0: लेकिन
1: हमारा टुकड़ा है
0: जी, लेकिन जब
1: ना,
0: से वहां पे पहुंचे तब से
1: पता चलता
0: थोड़ा
1: है कि
0: सा
1: भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि सच्चाई क्या है।
0: जी।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब, एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं, वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं, लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती परिवार, एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए, तब वो सुंदर लगता है या संभालना अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी क्रूरता भी दिखाई देने लग जाती है।
0: बिल्कुल। तो हमारे एक श्रोता, इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलिया रलिया मना।
1: रलियामणा
0: जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत, और रलियामणा मतलब सुहाना,
1: सुहाना।
0: यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने
1: कहा
0: जो
1: कि पहाड़ों को दूर से जब
0: हाँ
1: हम देखते हैं, वही एक श्रोता भी लिखते
0: जी
1: हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कानफोड़ लगने लगती है। अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
0: बिल्कुल
1: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, ये हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, पर
0: जी,
1: जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
0: वैसे ही
1: अच्छे
0: सही
1: हैं।
0: है। जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती हैं, जैसे हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो, जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस किस तरह से कठिनाइयां और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए। लेकिन तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, इन्होंने इस
1: बिल्कुल,
0: चीज को
1: लेकिन
0: समझा।
1: यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती कि दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो अच्छी
0: अच्छी लगेगी। ऐसा
1: ही
0: नहीं है कि
1: लगेंगी।
0: आपको निराशा हाथ लगी है कुछ,
1: हाँ,
0: आप
1: इस
0: बिल्कुल
1: बात
0: हमसे
1: का
0: मिलिए तो हम आपको
1: वैसे
0: और
1: ही
0: बहुत अच्छी
1: लगेंगे
0: तरह से आपसे बात
1: जैसे
0: करेंगे।
1: हम अभी आपको लग रहे हैं।
0: जी
1: ठीक
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, एक श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में, खास करके पति पत्नी में, इस बात पर तकरार होती ही है। परंतु स्वयं मैंने धर्म पत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियां और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनके खर्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी की कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और फिर पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बजट की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में तनाव।
0: देखिए, आपका एक आप श्रोता का, आप हम लोगों ने दो दो बार उसको उनको पढ़ लिया।
1: हाँ,
0: उनको इतना ज्यादा उनका बढ़िया, उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके से समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना, वो यही चीजें होती है, हर घर की समस्या ही यही है, जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, और सबको लगता है हमारी हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना।
0: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरे इनायत बनी रहे, वो
1: बिल्कुल
0: हमसे
1: बिल्कुल,
0: खफा
1: हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए
0: ना हो। तो वही,
1: जी
0: अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है
1: जी
0: और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और
0: और
1: आतिश श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। सेल्युलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में सेल्युलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
2: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
1: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
2: वेरी इजी टू वर्क विथ। गाइड में पहले पहले शुरू शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि एक तो लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए ना, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी, तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे, मगर उस चीज को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कह रही, मैंने जो कहा वो ही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले, बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज कल आज की फिल्म होती तो जरूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, जो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया, वो खाली सिर्फ

0: थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट करते हैं, नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा, आप जाइए। वो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वॉज अ वेरी गुड डायरेक्टर।
1: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए, ये तो जरूर हम सुनवाना चाहेंगे।
0: जरूर।

0: वेदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया, दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वुदरिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई, तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा, कैसी लगी आपको ये किताब, वही हद तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले, क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा, वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है। यहाँ तो ये रूपा जी जो है अंत तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से हुआ। तो बोले, नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत मीम मेक निकालती हैं, अब नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हुआ, तो चुपके से आके कह देते, भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
0: आपको कहा?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको कहते थे।
0: किस
1: दिल दिया दर लिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
0: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा हो कि?
1: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो उस गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूं होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि यू नो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे, नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों, आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी यू नो, मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ, जैसे उन्होंने जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है, मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले, एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डाल रहा हूँ। तो मैं कहूँ, पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले, मैंने आपसे सुना है वो लफ्ज। मैंने कहा कब, तो वो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के, जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं बहीदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखे, बाकी आप ना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है।
0: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर है, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए।

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही, आपकी जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वाज वेरी कैरिस्मेटिक। उनको देखो तो दिल करता था, कई नज़र इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए, बड़ी ग्रेट फिल्म आई मीन पर्सनैलिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ साधना बहुत अच्छी थी, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है मगर उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओ हो इसको, इस सीन को और बेटर गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओ हो ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मजा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊं मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फायदा, तो वरना मैं उतना एंजॉय नहीं करती अपनी फिल्में।
0: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी। जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
1: नहीं देखिए, लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है जो हर किस्म की फिल्म बन रही है, मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है, मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज्यादा ही वायलेंट पे बेस्ड होती थी, और कहानियां रट्टी पट्टी की कि दो भाई हैं बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है एक अच्छी, नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, यू नो इट वाज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं मेल या फीमेल वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो हमारे जमाने में नहीं होते थे।
0: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
1: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की हो बस।
0: वो फिल्में देखते हैं आपकी?
1: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया, टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आई तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है प्यासा में, मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छे नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना, तो बोले टोरंटो में देखी। ओ मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा, तो बोले नहीं कॉलेज में देखी, मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई, तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है, तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं और दोनों बच्चे मेरे कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
0: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया और साहब बीबी गुलाम का भी आया है, साहब बीबी गुलाम का, तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का एक गाना और हो जाए उसमें।
1: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला,
0: हेमंत कुमार साहब की।
1: हाँ, हेमंत कुमार साहब की आवाज, वो बहुत अच्छा था।

वेदा जी, दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा की बहुत ही नामी कला।

0: कर तो है ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक
1: हाँ, बहुत
0: थे।
1: फिल्मों में थे, राम पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दलिया, आदमी, तो ये बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो यूज टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया, वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने, ऐसे इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वॉज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा चखा,
1: बिल्कुल या
0: खूब चखा उन्होंने।
1: चखा।
0: आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं, उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म, तीसरी कसम, शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे, जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उसके साथ में, वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे, और मेरे खास बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की है वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी, उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं, तो मैं नहीं हूं या नहीं तो राजी नहीं है, तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से, ये नहीं क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे, और वो बहुत मसरूफ थे, अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी, उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी मगर देख के फिल्म, मुझे खुद ताज्जुब होता था कैसे बनी फिल्म, क्योंकि कई दफा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइन, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं, और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था। तो वही वैसे हालात में फिल्म बनी, और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राजी, और वाकई में मैंने देखा राजी यूज टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू यू नो बहुत, और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने, एक क्या 420 और फिल्मों के गाने आवारा के सब गाते थे।
0: वेदा जी इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था, और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था, शंकर जयकिशन साहब का संगीत था इस फिल्म में। क्या आपको संतुष्टि वाली भूमिका निभा करके तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं?
1: हाँ, मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, यू नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट, उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, यू नो, अच्छी लगती है, दिल को छूती है।
0: कुछ चीजों ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी, कुछ उसी तरह की वो फिल्म है, उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे। एक गाना उस फिल्म का हम जरूर सुनाए,
1: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है।

0: बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको। बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
1: पहले उनको समझना जरा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी तो वो बड़े टेंस रहते थे, और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजी ने कहा, वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा, तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कुछ गलत हो रहा है। तो कहने लगे, नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा मैं मानती हूँ, मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? तो बोले कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत तो है, तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई, यू नो।
0: वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किस फिल्म में काम किया? कौन सी फिल्म थी वो?
1: अभिजान।
0: अभिजान बंगला आपको आती
1: नहीं? उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी पुटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
0: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे साहब?
1: हाँ, पाथर पंचली देखी थी। अच्छा। उसके बाद भी और दो तीन फिल्में देखी थी मैंने, तो आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और
0: उन्होंने क्या कहा के बारे में? उनको कैसा लगा आपका काम?
1: हाँ, उन्होंने कहा जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्र चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की जरूरत नहीं है, जो जबान जो बोलती है उसके लिए। तो सबने कोरस में कहा है वहीदा रहमान। तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइज होता था, ना वक्त जाया होता था ना नेगेटिव जाया। वो तो कहते थे भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है, इससे कोई चूड़ियां प्लास्टिक की चूड़ियां भी नहीं बन सकती है, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं, या इतने ज्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूं कि इसकी टाइमिंग इतनी इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
0: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के। जब उनका ऑफर आया, पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने
1: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा, देखिए हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, आफ्टर ऑल इट्स अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे। मगर कई दफा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर खत्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे।

0: और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के या बहुत कम पैसे, जो डायरेक्टर के मन में आए
1: जी,
0: वो दे दे तो दे दे, नहीं तो नहीं।
1: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जे रोकम।
0: हाँ वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट आग हो गया था तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मजा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
1: मनोज कुमार साहब का नाम आया था। मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल, बड़े

0: डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे। तो मनोज हमेशा अपनी कहानियां, अपने सीन सुनाया करते थे। तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है। तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा, इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बोले अच्छा क्यों? मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में। तो काफी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे।
1: अच्छा वही जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने हैं, और वो फिल्में जब उतर भी जाएं सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को।

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है आपको? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो।
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ वो। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा, ये क्या फर्क पड़ता है आपको, गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अल्लाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं, तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, वो उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था और लता जी मान नहीं रही थी, कल्याण जी आनंद जी भाई जाके

0: बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा नहीं, बहुत वर्षों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं। कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो बस ब्रेक हुआ तो मैंने कहा लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोर दा भी मान गए हैं तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मजा आएगा, ये क्या बात है ये। नहीं क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुनील ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फायदा हुआ। मैंने कहा लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं। तो वो देखने लगी, बोले दो कौन? मैंने कहा एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगी, और फिर कल्याण जी भाई आनंद जी भी मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हो, मैंने सोचा गलत कहा है कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ
1: कहीं
0: जाऊंगी।
1: कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान मनोबल सब चलता है ना, तो फिर वो आई
0: या
1: उसमें। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
0: का हम दोनों का गाना, अल्लाह तेरो नाम
1: वाह,
0: ईश्वर तेरो नाम, मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से तो मेरा दिल भर आता है। तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

0: खामोशी जो है, अंदर की जो पीड़ा है, वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को, वो रुला देती है वो। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है, जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से, अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना इस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके जब ठीक हो जाते हैं। तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था, क्योंकि वो दरवाजा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाजें दे रहा है, राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफिकल्ट सीन था। और एक डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पर ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वॉज वेरी कॉमिकल, इट वॉज मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे, क्योंकि वो महसूस कर रही, ओह ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊँ। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे, तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं राजेश कहते थे वहीदा जी प्लीज हेल्प मी, तो मेरे स्टार्टिंग दे दीजिए। अब उनके गाना उनका है, तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था, मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किल हुई, और हंसते थे। मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट तो कीजिए, तो बोले क्या करूं भूल जाता हूं, तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें। वो कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यू मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई।
0: वही गाना सुनते हैं?
1: हाँ जी, वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है।

0: वहीदा जी, असिस्टेंट साहब का जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद, ये दो फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार मुलाकात हुई?
1: पर्सनल एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से वो गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं तो 20 साल बाद, नहीं कोहरा के वक्त शूटिंग खत्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं मेरी बहनें थी, तो उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे। तो जब फिल्म खत्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर के सीट पे थी, तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा, तो सुना उन्होंने, मुझे नमस्कार किया, और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे, तो उनकी बीबी उनसे बहुत नाराज हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने मत नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंदा ने कहा नहीं, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता वो वहां थी नहीं। बोले क्या मतलब आपका वहां नहीं थी? वो फिजिकली थी, वो फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज नॉट अ रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले अरे इतने लंबे चौड़े आदमी के उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए। तो नहीं, मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई तो 1-2 महीने के बाद उनकी सेट पे मैं गई, तो मुझे पूछने गया वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में। हाँ मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने वो फिल्म देखी? तो बोले क्योंकि मैं भी वहीं था। और रियली? मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको, आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा। और मजे की तो बात यह है, मैंने कहा क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम, वो नीचे थे, मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था। तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज हुई, और मुझे पता था कि आप वहां मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं कहा। तो बड़ी नाइस ऑफ फिल्म के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
0: वहीदा जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया रहा, किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे?
1: कोहरा का गाना झूम झूम ढलती रात।

0: वैसे जी फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हट करके भी आप काम कर रही हैं, और खास तौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघर और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपने सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम?
1: ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफ़ी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, म्यूनिसिपल स्कूल फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं, तो वो उनकी ज़िंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूंकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते, कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ है। इसका नाम है प्रथम, प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी आई फील, तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्यूनसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्यूनसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आ गए पढ़ाने के लिए, हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं टीचर्स, उनको कहानियों से, गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की ज़िंदगी बड़ी इंप्रूव हुई है, मगर आगे का जेनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी ज़रूर पढ़ें, कि इसका फ़ायदा क्या है।
0: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपनी भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
1: हाँ जी,
0: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़ें, आपसे बात करने का और भी मन करता है, और हम अपनी ओर से, विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज व एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर अभी तक आप विविध भारती मुंबई के प्रसारण सुन रहे थे। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण मीडियम वेव और एफएम पर अब एक साथ आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम।

दोस्तों, आज हम आ पहुंचे हैं अतीत की उन गलियों में जहां हमने किसी के साथ अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस मोहब्बत की जो वक्त के पन्नों में कहीं ठहर गई। वो गुजरा हुआ कल, वो हसीन पल जो आज भी जब याद आते हैं तो चेहरे पर एक बेसाख्ता मुस्कान और आंखों में हल्की सी नमी छोड़ जाते हैं। वक्त बदल जाता है, इंसान बदल जाते हैं, मगर मोहब्बत के वो लम्हे दिल से कहाँ जाते हैं। बात जब मोहब्बत की यादों की होती है ना दोस्तों, तो सबसे पहले जहन में आती है पहली मुलाकात। वो पहली बार किसी को देखकर धड़कनों का अपनी रफ्तार भूल जाना, बिना कुछ कहे सिर्फ नज़रों से सब कुछ कह जाना। आज भी जब अलमारी से कोई पुराना खत, कोई सूखा हुआ गुलाब या शायद फ़ोन की गैलरी में स्क्रोल करते हुए वो पहली तस्वीर दिख जाए तो दिल एक पल के लिए वहीं थम जाता है। याद है वो छोटी मोटी नोकझोंक, एक ही छतरी के नीचे बारिश से बचने की कोशिश करना, और वो एक कप चाय को आधा आधा बांटकर पीने में जो सुकून था, वो आज महंगे कैफे की कैपेचिनो में कहाँ है। दोस्तों, अगर आप हमसे पूछें कि जो पल गुजर गए, जो लोग दूर हो गए, उनकी यादों को सीने से लगाकर रखने में दर्द नहीं होता, तो हम आपसे कहेंगे कि हर अधूरी मोहब्बत या हर गुजरा हुआ पल दर्द नहीं देता। कुछ यादें इतनी पाक और खूबसूरत होती हैं कि वो आपको तोड़ती नहीं बल्कि आपको अंदर से और खूबसूरत बना देती हैं, और वो गवाह होती हैं इस बात की कि आपने किसी से बेपनाह और निस्वार्थ प्रेम किया था। इसी बात पर गुलजार साहब का ये शेर याद आता है कि अच्छी यादें भी एक अजीब नेमत है साहब, वक्त बदल जाता है पर वो मुस्कुराना नहीं भूलती। वो कहते हैं ना कि लम्हे गुजर जाते हैं, कारवां पीछे छूट जाता है,

पर सच तो ये है कि मोहब्बत में गुजरा हर एक लम्हा अमर हो जाता है। वो शामें, वो बातें, वो ठंडी हवाओं में उनका साथ, सब कुछ आज भी वैसा ही महकता है जैसे किताब में रखा कोई मोगरे का फूल। बीते हुए पलों की खूबसूरत यादें कोई बोझ नहीं होती, बल्कि ये तो वो सरमाया है, वो दौलत है जिसे हमसे कोई चुरा नहीं सकता। सचमुच मोहब्बत में बिताया हुआ एक पल भी मुकम्मल जिंदगी जैसा लगता है।

0: मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज शाम, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। प्रस्तुत है युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: शाम की ठंडी हवा का पैगाम लेकर, उम्मीदों और सपनों का नाम लेकर, हम आ गए हैं आपकी महफिल में आज का युवाणी प्रोग्राम लेकर। नमस्ते, गुड इवनिंग, आदाब साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त फातिमा खान। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे और हर रोज़ की तरह बेसब्री से कर रहे होंगे हमारे आज के कार्यक्रम का इंतज़ार। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम आज के इस सवाल के साथ। और हमारा आज का सवाल है, किस संगठन ने आरोग्य वन पहल शुरू की है? दोस्तों, सवाल एक बार पुनः सुन लीजिए, किस संगठन ने आरोग्य वन पहल शुरू की है? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर और आज के अपडेट किए हुए सवाल के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने अपने सही जवाब, और सही जवाब देने वाले सभी श्रोताओं के नाम हम बताएंगे प्रोग्राम के अंत में। दोस्तों, कहते हैं, दूरी चाहे कितनी भी हो, रिश्तों की डोर बनी रहती है। पसीना बहाकर की गई कमाई जब घर पहुंचती है तो उम्मीदें फिर से खिल उठती हैं। पर आप सोच रहे होंगे, मैं आपसे ये सब क्यों कह रही हूँ? दोस्तों, आज यानी 16 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस मना रही है। ज़रा सोचिए, कितने लोग अपने परिवार से दूर रहकर दूसरे शहरों देशों में काम करते हैं। वो अपने परिवार की खुशियों, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और बेहतर भविष्य के लिए अपनी कमाई का एक एक हिस्सा घर भेजते हैं। इसी धनराशि को रेमिटेंस कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के प्रयासों से हुई, ताकि उन करोड़ों प्रवासी कामगारों के योगदान को सम्मान दिया जा सके जो अपने परिवारों की आर्थिक मजबूती का आधार बनते हैं। और हमारा भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त होती है। तो दोस्तों, क्या आपके परिवार में कोई सदस्य नौकरी या काम के लिए दूसरे शहर या देश में रहता है? और दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है परिवार से दूर रहकर काम करना आसान होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो आइए इस खास अवसर पर उन सभी मेहनतकश लोगों को सलाम करें जो अपने परिवार की खुशियों के लिए घर से दूर रहकर दिन रात मेहनत करते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत एक छोटे से ब्रेक की, हम फिर लौटेंगे ब्रेक के बाद।
1: मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से जुड़ गए हैं आप अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
3: कुछ ख्वाबों की बात,
4: कुछ अपनों का साथ,
3: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
4: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
3: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
4: वाकई कुछ खास है आज,
3: कुछ खास है आज।
2: दोस्तों ज्ञान की रोशनी से जिसने विज्ञान का दीप जलाया, अपने शोध और कर्म से भारत का मान बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद और उद्यमी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी को, जिनकी पुण्यतिथि हर साल 16 जून यानी आज ही के दिन मनाई जाती है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र जी, उनका जन्म 2 अगस्त 1861 को तत्कालीन बंगाल में हुआ था। उन्हें भारत में आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में उन्हें सम्मान दिलाया। आचार्य जी एक उत्कृष्ट शिक्षक भी थे। उन्होंने लंबे समय तक छात्रों को विज्ञान की शिक्षा दी और उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास किया। वो सादगी, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों जब हम विज्ञान और तकनीक के नए नए आयामों को छू रहे हैं आज, तब आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी का जीवन हमें संदेश देता है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसका उपयोग समाज और देश की प्रगति के लिए किया जाए। दोस्तों आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करें। दोस्तों कुछ खास है आज को कंटिन्यू करते हैं और अब हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्हें पूरा देश प्यार से देश बंधु यानी देश का मित्र कहकर पुकारता है। दोस्तों देश बंधु जी का पूरा नाम है देश बंधु चितरंजन दास। उनका जन्म 5 नवंबर सन 1870 को तत्कालीन कलकत्ता यानी वर्तमान कोलकाता में हुआ था। वो एक सफल वकील थे, लेकिन देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना आरामदायक जीवन और सफल वकालत तक छोड़ दी। दोस्तों चितरंजन दास जी का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। दोस्तों देश बंधु चितरंजन दास जी ने सन 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी की स्थापना उन्होंने मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर की थी। देश बंधु जी समाज में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय जागरूकता के भी प्रबल समर्थक थे। दोस्तों 16 जून यानी आज ही के दिन सन 1925 को उनका निधन हो गया, लेकिन देश के प्रति उनका समर्पण और त्याग आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करता है। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। दोस्तों कुछ खास है आज में आज बस इतना ही।
3: कुछ ख्वाबों की बात,
4: कुछ अपनों का साथ,
3: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
4: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
3: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
4: वाकई कुछ खास है आज,
3: कुछ खास है आज।
2: दोस्तों प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए इस सुहानी शाम को और भी खूबसूरत बनाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक दिलकश गजल।

0: दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट भारत के गलियारे से की ओर, और ले चलते हैं आपको घुमाने भारत की गलियों में। भारत के गलियारे से का पहला सब सेगमेंट है इमारतें बोलती हैं।
1: पत्थर से नहीं बनती, वो इतिहास की सांसों से जीवित रहती हैं। सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन उनकी दीवारें अपने दौर की कहानियां सुनाती रहती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अद्भुत विरासत की, जो थार के रेगिस्तान के बीचों बीच आज भी शान से खड़ी है। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित सोनार किला, जिसे जैसलमेर फोर्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, ये किला साल 1156 ईस्वी में रावल जैसल द्वारा बनवाया गया था। पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित ये किला सूरज की किरणों में सोने की तरह चमकता है, इसीलिए इसे सोनार किला कहा जाता है। करीब 250 फीट ऊंची त्रिकुट पहाड़ी पर बना ये किला दुनिया के उन चुनिंदा किलों में शामिल है जहां आज भी लोग रहते हैं। इसकी विशाल प्राचीरें, 99 बुर्ज, भव्य महल, प्राचीन जैन मंदिर और संकरी गलियां अपने भीतर सदियों पुराना इतिहास समेटे हुए हैं। दोस्तों, जब ये किला बनकर तैयार हुआ होगा, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाली 9 सदियों तक रेगिस्तान का प्रहरी बनकर खड़ा रहेगा। उस समय जैसलमेर व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। भारत से मध्य एशिया और अरब देशों की ओर जाने वाले व्यापारिक कारवां यहां से गुजरते थे। ऊंटों की लंबी कतारें, व्यापारियों की चहल पहल और सैनिकों की निगरानी, यही उस समय के जैसलमेर की पहचान थी। दोस्तों, किले के भीतर स्थित राजमहल कभी राज परिवार का निवास हुआ करता था। यहां जैसलमेर के महारावल और उनका परिवार रहता था। अलग अलग समय में उनकी रानियां इस महल में रहीं, इसलिए किसी एक रानी का नाम विशेष रूप से नहीं जुड़ा है। महल में बने झरोके, नक्काशीदार बालकनियां और दरबारे हॉल उस समय की शाही जीवन शैली की झलक दिखाते हैं। दोस्तों, इस किले के भीतर सैकड़ों कमरे, आंगन और गलियारे हैं। दोस्तों, सोनार किले की एक और खास पहचान है इसके साथ सुंदर जैन मंदिर, जिनका निर्माण 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुआ। इन मंदिरों की बारीक पत्थर की नक्काशी देखकर ऐसा लगता है मानो पत्थर नहीं मोम को तराशा गया हो। इसके अलावा लक्ष्मीनाथ मंदिर भी यहाँ की प्रमुख धार्मिक धरोहरों में शामिल है। दोस्तों, जब हम किले की गलियों में चलते हैं, तो वहाँ बनी पुरानी हवेलियाँ भी हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इनमें व्यापारियों के परिवारों का निवास हुआ करता था। पत्थर पर की गई महीन कारीगरी राजस्थान की समृद्ध कला परंपरा का शानदार उदाहरण है। दोस्तों, आज का सोनार किला केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक इसकी सुंदरता देखने आते हैं। किले के भीतर छोटी छोटी दुकानें, हस्तशिल्प, राजस्थानी वस्त्र, लोक संगीत और पारंपरिक व्यंजन पर्यटकों को राजस्थान की संस्कृति से परिचित कराते हैं। और दोस्तों, अगर इसकी खूबसूरती की बात करें, तो शाम का समय सबसे खास माना जाता है। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है, उसकी सुनहरी किरणें पीले पत्थर पर पड़ती हैं और पूरा किला मानो सोने की चमक से जगमगा उठता है। यही वो दृश्य है जिसने सदियों से यात्रियों, इतिहासकारों और कलाकारों को आकर्षित किया है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप किसी ऐतिहासिक इमारत को देखें, तो उसकी दीवारों को केवल पत्थर मत समझिएगा। उनमें छिपी होती हैं अनगिनत कहानियां, संघर्ष, सपने और इतिहास की अनमोल यादें। और सोनार किला तो मानो सदियों से यही कह रहा है कि समय बदलता रहता है, लेकिन विरासत हमेशा जीवित रहती है।
0: दोस्तों, हमारे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले आइए सुनवाते हैं आपको ये प्यारी सी गजल।

दोस्तों, और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कर्नाटक के शाही शहर मैसूर में। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सैर के लिए जहां हर मोड़ पर इतिहास है, हर इमारत में शान है और हर सड़क पर संस्कृति की खुशबू बसी हुई है। दोस्तों, अगर आप बेंगलुरु से आ रहे हैं तो सड़क मार्ग से लगभग 3 से 4 घंटे में मैसूर पहुँचा जा सकता है। रेल और बस की सुविधाएं भी यहाँ आसानी से उपलब्ध है। जैसे ही आप मैसूर में कदम रखते हैं, आपका स्वागत चौड़ी सड़कों, हरियाली और शाही विरासत से होता है। सबसे पहले चलते हैं मैसूर की पहचान यानी मैसूर पैलेस की ओर। ये भव्य महल अपनी शानदार वास्तुकला, रंगीन कांच, नक्काशीदार दरवाजों और राजसी इतिहास के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रात के समय जब हजारों बल्बों से ये महल जगमगा उठता है तो नजारा किसी सपने से

कम नहीं लगता। महल की सैर के बाद बढ़ते हैं चामुंडी हिल की तरफ। शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित ये पहाड़ी मैसूर का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। यहाँ स्थित चामुंडेश्वरी टेम्पल श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पहाड़ी पर स्थित विशाल नंदी प्रतिमा भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दोस्तों अब चलते हैं सेंट फिलोमेनास कैथेड्रल की ओर। गॉथिक शैली में बना ये भव्य चर्च अपनी ऊंची मीनारों और खूबसूरत कांच की कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। दोस्तों अब वक्त है प्रकृति के करीब जाने का। हम पहुंच रहे हैं वृंदावन गार्डन्स में। यहाँ के संगीतमय फव्वारे, रंग बिरंगी रोशनी और सुंदर बाग पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। शाम के समय होने वाला म्यूजिकल फाउंटेन शो यहाँ की खास पहचान है। मैसूर की विरासत को और करीब से जानना हो तो चलिए जगनमोहन पैलेस। आज ये एक कला संग्रहालय है जहाँ प्रसिद्ध चित्रकारों की अनमोल कृतियाँ देखने को मिलती हैं। दोस्तों हमारा अगला स्पॉट है मैसूर जू, जो भारत के सबसे पुराने और सुव्यवस्थित चिड़ियाघरों में गिना जाता है। यहाँ विभिन्न देशों के दुर्लभ पशु पक्षी देखे जा सकते हैं। अगर आपको रेलगाड़ियों का शौक है तो रेल म्यूजियम मैसूरू भी जरूर देखिए, जहाँ पुराने इंजन और रेलवे इतिहास की रोचक झलक मिलती है। और अब बात करते हैं मैसूर के खाने के खजाने की। मैसूर आकर मैसूर पाक का स्वाद ना लिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके अलावा यहाँ की दक्षिण भारतीय थाली, डोसा, इडली और फिल्टर कॉफी भी यात्रियों को खूब पसंद आती है। तो दोस्तों मैसूर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, आस्था और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। यहाँ का हर कोना अपनी अलग कहानी सुनाता है और हर मंजिल यादों में बस जाती है। और अब इस शाही शहर की खूबसूरत यादों को अपने दिल में संजोकर घुमक्कड़ी का सफर यहीं रोकते हैं। हमारे सेगमेंट भारत के गलियारे से के सब सेगमेंट घुमक्कड़ी में आज बस इतना ही। दोस्तों जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो दिल को सुकून दें, यादों को ताज़ा करें और एहसासों को आवाज़ दें। और लफ्ज़ जब एहसासों का हाथ थाम लेते हैं तो गज़ल बनकर सीधे दिल में उतर जाते हैं।

दोस्तों, अब वक्त हो गया है प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव का, यानी शुरुआत में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने का। और हमने आपसे सवाल पूछा था कि संगठन ने आरोग्य वन पहल शुरू की है, जिसका सही जवाब है NHAI, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस सवाल का सही जवाब देने वाले श्रोता साथी हैं आप सभी, लाल मोहम्मद अंसारी, जीशान वारसी, दर्पण कुमार सैनी, धर्मेंद्र छिपा, श्री कृष्णा भाटे, दीपेश वर्मा, सुदर्शन शाह, नानक खन्ना, मुजफ्फर अली खान, रामकुमार रेवार, जॉन डी कैस्ट्रो, किशन सपकाल, फागुराम यादव, विट्ठल सुरोशे, चौधरी राजवीर सिंह, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, नवाबुद्दीन, सिद्धार्थ गोंदाने, जगदीश धाकड़, सुरेश जायसवाल, नंदकुमार ठाकुर, अजीत कसाना, गजनन येले दरियापुर, दिनेश वर्मा, जाकिर मंसूरी, आमिर हुसैन, दिलशाद हुसैन, सुरेश गगनेजा, मोहम्मद जाहिद अली, मोहम्मद सईद अब्बासी, बब्बल मल्होत्रा, संजय डिंगिया, हल्के जयपाल यादव, उत्तम कुमार भगत, बी कमाल, कैलाश फूलमाली, नाहिद खान, रियासत हुसैन सिद्दीकी, हाजी गफ्फार खां, बी एल धाकर, लालगिरी गोस्वामी, रघुनाथपुरा, मसरूर हसन, भुवन प्रकाश, सोहन जोशी जोशी, बलवंत कुमार वर्मा, राष्ट्रपाल गजबैये, दिग्दर्शन गोण, अरविंद कुमार, विनोद मुन्नत, मोहम्मद आमिर अंसारी, राधेश्याम पांडे, सत्येंद्र चंसोलिया, हीरामानी वर्मा, रवि कुमार राहुल, हरख राम पटेल, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, शाहरून नूर अंसारी, मुकेश कश्यप, राजवीर सिंह यादव, भगवत चौबे, मोहम्मद हफीजुर रहमान, भाई रफत साहब, एम खलील कुरैशी, धीरज भाई राबरी, बीपी गौतम, शमसुल कमर, मोहम्मद यासीन अंजान, शाहजी बोधके, रवि रस्तोगी, विजय सुरलकर और पुंजा जी नावकर। आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हमारे सवाल का सही जवाब देने के लिए। पर दोस्तों, आपको इसके बारे में बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने वित्त वर्ष 2025-26 में आरोग्य वन पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी जमीन पर औषधीय और आयुर्वेदिक महत्व वाले पेड़ पौधे लगाना है। आरोग्य का अर्थ है स्वास्थ्य और वन यानी जंगल। इस योजना के तहत नीम, आंवला, जामुन जैसे औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोगों में आयुर्वेद और प्राकृतिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़े। दोस्तों, आप अपने घरों में भी ऐसे पेड़ लगा सकते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वक्त धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जाने से पहले आइए सुनवाते हैं ये खूबसूरत गजल, जो शायद आपके दिल के किसी कोने को छू जाए।

दोस्तों, आप सभी को आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें लिखना न भूलिएगा। हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है, युवाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी रामपुर। हमारी पिन संख्या है 244901 और आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी लिख भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। हमारा पता एक बार पुनः सुन लीजिए। कार्यक्रम चिट्ठी आई है, युवाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी रामपुर। आप हमें ईमेल के माध्यम से भी लिख भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patrmila@rampur.gmail.com। उम्मीद है आज का ये सफ़र, ये बातें और गज़लें आपको पसंद आई होंगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इसी वादे के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 336.7 मीटर व एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर।
1: रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन।
2: बात तो है ये सदियों पुरानी,
3: लेकिन है जानी पहचानी।
2: पानी है सबकी जिंदगानी,
3: सोचो समझो बचाओ पानी।
1: जल की बचत का करो जतन, जीवन का ये अमूल्य रतन।
3: जितना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए योग,
1: उतना ही अनिवार्य है स्वच्छ जल का प्रयोग।
2: बस करना होगा जल का सदुपयोग।
1: पानी बचाओ जीवन बचाओ।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ व एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही क्षणों में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: मैं अजय तोमर
1: और कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये सातवीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ येस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुसियांग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम HIEF हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज व एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत हैं कुछ गुमशुदा सूचनाएं, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं ये आवश्यक संदेश।
3: मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

0: मैं प्लास्टिक। चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
1: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
0: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
1: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन। तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
2: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
1: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
3: से नो टू प्लास्टिक।
4: पहली गुमशुदा सूचना है, प्रभारी निरीक्षक थाना AHT गाजियाबाद सूचित करते हैं कि मोहित पुत्र ललित कुमार निवासी मुकेश नगर लालकुआं थाना वेब सिटी कमिस्ट्रेट गाजियाबाद विगत 2 जनवरी 2025 से लापता हैं। मोहित की उम्र 9 वर्ष और कद लगभग 3 फीट है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना AHT गाजियाबाद, मोबाइल नंबर 7678604932। अगली गुमशुदा सूचना है, प्रभारी निरीक्षक थाना नंदग्राम गाजियाबाद सूचित करते हैं कि दीपा उर्फ दीपाली पुत्री नरेंद्र सिंह निवासी संगम विहार थाना नंदग्राम गाजियाबाद विगत 9 जनवरी 2024 से लापता हैं। दीपा की उम्र 14 वर्ष, कद लगभग 4 फीट और चेहरा गोल है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना नंदग्राम गाजियाबाद, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर है 7678604932। सूचनाएं समाप्त हुईं।

ये आकाशवाणी रामपुर है। 6:10 हुए हैं। अब पेश है कुछ फिल्मी गीत, कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में स्वीकार कीजिए आपके रेडियो पार्टनर प्रियंका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जीनियस से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने।

0: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से।

ये थे कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम था चित्रपट संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर। 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: हरदेव भैया राम राम।
1: राम राम हेमपाल भैया और हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को, हम दोनों भाइयों की राम राम।
0: राम राम। और सुनाओ हरदेव भैया, कैसे हालचाल चल रहे हैं घर परिवार के?
1: बस बढ़िया बढ़िया हैं, और उम्मीद करता हमारे किसान भाई बहन जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे।
0: बिल्कुल भैया, देखो हमारी सबकी जय कोशिश रहता है कि हम सबसे प्रार्थना रहती है, भगवान से प्रार्थना रहती है कि जो भी हमारे किसान साथी हैं वो स्वस्थ रहें और खूब तरक्की करें।
1: बिल्कुल भैया।
0: अब भैया देखो, बात खेती बाड़ी की आ जाता है।
1: सही बात है भैया, देखो खेती बाड़ी को समय चल रहा हो और इस समय हमारे सभी जो किसान भाई हैं अपनी खेती बाड़ी की तैयारी में लगी हुई हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और भैया देखो क्या होता है ना, हमारे पड़ोस की बात करें।
1: हाँ।
0: अभी हमारे पड़ोस में कल ही की बात है, एक भैया आए खेत पे से और टाइम से आए गए, और उनके बच्चन ने कही कि उन्हें ना अपने घर के आसपास जो किचन गार्डन होता है, बाम अपने किचन गार्डन कर लीजिए।
1: अच्छा।
0: और बाम उन्हें कही कि जहां थोड़ी सी जो एक मेड़ चढ़ाए दो। अरे वे तो लड़ गए, खेत में काम करके आ गए कि घर है काम करें। तो भैया देखो बहुत से किसान साथी ऐसे हैं जो वे कह रहे हम तो छत पर से सुन रहे। तो वे पता क्या कह रहे, तुमने कहा जो झाड़ पाल लो है हमारे।
1: अच्छा।
0: खेत में सब्जी है तो
1: अच्छा,
0: तुम बहुत रह जाते।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो हमने उनसे कही, हमने की सुनना भैया हमारी बात सुन लो, लड़ो मत। हमने देखो किचन गार्डन बहुत लाभकारी होता है।
1: बिल्कुल भैया।
0: और हम तो देख रहे हैं वे उनके जो घर में बालक है ना, वे रोज बामे पानी लगाते है। कहूँ उन्हें हमारे सामने नीम की डुंगाई लेकर आए और उन्हें बाके पत्तन को तोड़ो और उबाल के और बाको स्प्रे कर देते बाके वाला
1: ना। बिल्कुल भैया, बहुत ही बढ़िया चीज है किचन गार्डन।
0: हाँ, तो हमने उन्हें समझाई तो बोले अरे भैया तुमने हमें समझा दी, अब हम कहूँ लड़ाई करेंगे
1: ना। सही बात है, देखो एकदम स्वादिष्ट तरोताजा।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और जैविक पद्धति से हमारे किसान भाई करते हैं, और बहुत सारे भैया शहरन में ही रही है। अब तो
0: देखो जिनके घर में, जिनके घर में जगह ना है, छत्तन पर गमलन में करते हैं,
1: गमलन में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ड्रम काट रखे हैं,
0: ड्रमन में काट लें, खूब ही रही है सब्जी तो,
1: बढ़िया तरीके से ही रही है।
0: हाँ, कुछ ना तो क्या कर लो, ट्रे वगैरह ट्रे में लगा लेंगे।
1: हाँ, ट्रे में।
0: और अब तो मोबाइल में देख देख कर बोतलन में पता ना क्या क्या चीजें में बना लेते हैं।
1: बहुत सारी चीजें हैं जो है मार्केट में बिक रही हैं, जिससे हमारे जो किसान भाई बहन हैं और शहर में हमारे जो युवा भाई हैं जो नौकरी पेशा वगैरह करते हैं। देखो भैया, नौकरी करण वालों शाम को आकर थक जाते हैं वो।
0: बिल्कुल।
1: सुबह ड्यूटी जाते हैं वो।
0: हाँ।
1: है ना, तो प्रकृति के साथ में रहने को मजा ही कुछ और होता।
0: बिल्कुल
1: है ना, वो चाहता कुछ सुख शांति मिले मेरे पाई।
0: सुबह को जल्दी उठ के अपन तो जल्दी कोई काम ना है, उठे और इतो उतो बैठे और नहाए तो आते फिर से ड्यूटी चलेगा। और अगर घर के आसपास कुछ थोड़ी बहुत साग सब्जी हुई और सुबह को उठेंगे बामे मिट्टी में काम करेंगे तो कुछ तरोताजा दिमाग और फिर नहा धो के जब ड्यूटी जाएंगे तो ऑफिस में अच्छे लगे।
1: बहुत अच्छे भैया, एकदम जो है दिमाग हमारा बढ़िया तरीके से काम करता है, मनो हमारे एकदम चंगो रहते है।
0: हाँ।
1: ना, प्रकृति के साथ आप अगर मिलजुल कर रहो ना, जो सुंदरता है हरी भरी
0: हरी भरी,
1: बाको मजा ही कुछ और है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: दिमाग में टेंशन ना होती है भैया,
0: और जब हम और आप जुड़ोगे प्रकृति से तो हमारे बच्चा उसे देखेंगे और बच्चा भी प्रकृति से।
1: बिल्कुल। देखो भैया, आजकल माहौल ऐसा है जो आप करेंगे आपको देख के आपके बच्चा करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: है ना। अगर आप प्रकृति से दूर रहने की कोशिश करोगे, हमेशा गर्मी बैठे रहोगे, कोई काम ना करोगे, तो बच्चन को भी गलत प्रभाव पड़ेगा।
0: बिल्कुल भैया। और जाके अलावा पता है एक फायदा और बहुत अच्छा है, जैसे बड़े बूढ़े हैं घर के और बालकू है तो पता चली बड़े बूढ़े खेत पर तो जा ना पाते हैं, और वे पुराने जमाने के खेतन पर जान बारे खेतन को खुरपी बारे खाली रहे रो ना जाते उनसे।
1: हाँ।
0: तो पता चली कि अगर घर में थोड़ी बहुत किचन गार्डन है तो बाई में खुरपी लेके बैठ गए तो उनको वहां में टाइम कट जाता और बालकों उनके संग नई नई बातें।
1: भैया देखो किचन गार्डन में देखो कई तरह के हमारे जो है भैया हमने देखी है, हमारे पास में है, हमारे बाग के पास में ही एक ना बना रखो भैया।
0: अच्छा।
1: हमारा खेत है ना बाग, आम को तो बाग के पास में कुछ हमारे डेयरी पालक भाई रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो उनने क्यारियां बना रखी है पास में ही, छोटी छोटी अपनी जगह में ही, जो मकान से कुछ जगह मकान बन ना पाओ तो उन्होंने सोची की जहां हम जो है अपनों गार्डन बनाए।
0: हाँ, तब तो गार्डन बनाने
1: तो बामा उनने कई तरह का के जो है पौधे लगा रखे हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: एकदम सुबेरे सुबेरे हम जातेंगे घूमनता ही
0: तो
1: भी भाई बैठे मिलतेंगे और हरो धनियों वगैरह और मिर्च और जो भी है टमाटर वगैरह जो भी है, और बड़ो भैया और आनंद आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भैया खेत भी मकान बनवा लियो, कहाँ आप बीच बस्ती में होगे, क्योंकि प्रकृति को नजारे कुछ और, सुबह सुबह ठंडी हवा एकदम
0: और ताजा ताजा सब्जी मिलती है तो उसको स्वादिष्ट ही अलग ही होते।
1: और एक चीज और भैया, किचन गार्डन करने से हमें बहुत सारे फायदा है ना। ताजी सब्जी बाजार में हम जाकर देखते हैं, कुछ लोग इतने लालची होतेंगे।
0: हाँ।
1: जब वे कुछ हैं ऐसे लोग, हमने क्योंकि सुनन में किस्सों आतेंगे और आंखन सो देखे हैं, खेत से निकले और पास में तालाब है वो, तो बाई में भी अपनी सब्जी धो रहे हैं भैया।
0: भैया देखो जो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो तो अधिकतर देखो जाता है, जो किसान साथी जैसे मूली उन्ना उखेड़ी खैया यहाँ उनके पानी है या फिर उनने एक दिन पहले इंजन चलाओ गड्ढा उड्ढा में तो बाई में अपने धोए कर और ले आए
1: वो गंदो पानी
0: बिल्कुल,
1: और बाम आप हरी सब्जी धो रहे हो और बाको फिर हमारे और हम जैसे भैया हैं
0: सभी लोग खा रहे हैं,
1: सभी लोग खा रहे हैं
0: बिल्कुल।
1: तो भैया देखो गलत चीज आवेगी तो भैया प्रभाव तो पड़ेगा
0: बिल्कुल, कोई ना कोई रोग पैदा करेगा,
1: देखो बुखार उखार आ जाए भैया, बहुत सारी चीजें हैं जो फैलती है गंदगी से,
0: लीवर खराब हो जाए कुछ
1: भी, बहुत सारी चीजें हैं भैया ऐसी। और तो भैया हमारा तो जय कानून, देखो हमारे बहुत सारे किसान भाई सब्जी वगैरह खेती करते होंगे तो भैया जरा से स्वार्थ के चक्कर में अगर आपको धोने हैं तो जो ठेला है जिसमें सब्जी लोड है आपकी, अगर धोने वाली फसल हैगी तो आप वो चीज घर लेकर आवो ना,
0: और मोटर चला के
1: और पानी मार के धो लो
0: बिल्कुल,
1: है ना, फिर वहां लेके जाओ आप बाजार में,
0: सही बात,
1: साफ अच्छी हो दिखाई। और भैया जो दुर्गंध है बहुना आ भाई, क्योंकि गंदे पानी दुर्गंध गंदी आती है,
0: गंदी है भाई।
1: और गंदी दुर्गंध आ भाई तो रोड सही ना मिले है ना,
0: और किचन गार्डन करीबी हुई तो इन सब से बच रहे।
1: तो भैया देखो आपको बाजार में आके भीड़ भाड़ में आके भीड़ भाड़ में आती है तो भैया कहूँ कोई मिर्चा बेच रहा है सूखी तो बाकी धास आ रही है ना, हमने देखी हम खुद लेते आते होंगे भैया, लेकिन अब तो हम सोच रहे हैं कि भैया जो है ऊपर जो है बढ़िया तरीका से किचन गार्डन हम खुद ही शुरू करने वाले हैं, तुम बताओ।
0: और कहा है जैसे जेब में कोई पैसा है या ना है तो चली जरा इधर में गए और तोड़ लाए बाल के तोड़ लाए और अपने,
1: अरे तुरैया भैया इतनी बढ़िया आती है ना, इसे कहते हैं कि देख के आदमी को जी ललचाई
0: जाए। और हमारे कल ही हमारे एक बराबर में थोड़ी सी जगह है वहां हमने ठट्टर बांध के तुरैया लगाई दी।
1: अच्छा,
0: तो परसों हमने देखी वो जरा सी और कल शाम को देखी तो वो पता चली एक सवा किलो की ही गई,
1: बहुत
0: हमने बाकी फिर कोफ्ता बनाया बड़ी अच्छी लगी,
1: वो चीज बढ़िया है भैया।
0: हाँ तो जो अपने घर की चीजें हैं इनको प्रयोग हमारे किसान साथी उनको करना चाहिए, और पहले के बड़े बूढ़े तो खूब ही करते बटे वोटे इन पर लगा लेते
1: और पेठा
0: पेठा लगा लेते अब आदमी इतना आलसी है, अगर बाकी कहूँ पर जगह पड़ी है तो ऐसी पड़ी रही वहां में मक्खी मच्छर घास पैदा होता रहा, लेकिन बेज हुए बाको प्रयोग ना कर सकते क्योंकि उन्हें खाली रहना पसंद है, बीमार होना पसंद है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर थोड़ी मेहनत ना कर सकते, जगह को प्रयोग ना कर सकते।
1: भैया हम देख रहे हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो प्रकृति से हट गए आजकल मोबाइल की तरफ ज्यादा भाग रही है,
0: इसलिए बीमार रह रही है
1: और मोबाइल तरफ भाग रही है, तो भैया कुछ लोगों की आंखें कमजोर ही रही है शुरू में ही
0: सही बात है।
1: अरे भाई प्रकृति से जुड़े रहो, जब हरे भरो राय को चारों तरफ है ना तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से जो है भैया देखो जो किचन गार्डन है वो हमारे ताई तो और हमारी जीवन शैली ताई बहुत ही जरूरी है
0: बिल्कुल,
1: हमारे जो है हमारे स्वास्थ्य सही रहा है किचन गार्डन हम करेंगे तो
0: अच्छा
1: हमारा मन लग रहा है,
0: एक फायदा और हो जाता है।
1: हाँ
0: जैसे हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने मतलब कोई अनुभव करने
1: अनुभव करने
0: अनुभव करने किसी चीज को हम आजमा के देखने कोई फसल को तो हमने वो थोड़े से अपने किचन गार्डन में कर लिए क्या
1: सही बात है
0: ना, और बाको हम जैविक तरीका से बाको करें तो वहां पता चल जाए कैसे बाको रिजल्ट रहो।
1: भैया हमारे ऐसे बहुत सारे हमने जो हमारे कुछ मित्र हैं वे किचन गार्डन कर रहे हैं और जैविक पद्धति से कर रहे हैं, तो वे सुबह सुबह अब जो है बाजार कम करते होंगे वे आलू वगैरह, तो देखो कुछ लोग तो आलू की फसल कर
0: रहे जो तो पहले से ही होती चली
1: और लेकिन जो सब्जी वाली फसलें कर रहे हैं तो कहते हैं कि भैया सुबह को हमारे बच्चन को जो है तैयार एकदम तरोताजा मिलती है सब्जी और तोड़कर एक आध दो तीन लाइक आतंक जितनी जरूरत होती है और सब्जी बन जाती है।
0: अच्छा एक फायदा और किचन गार्डन से बाद में जब मिट्टी साफ सुथरी होती है ना तो लोग घर की महिलाएं हैं और पुरुष हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं नंगे पैर बाद में घूमते हैं, अब तो हमने देखी मोबाइल में लोग क्या कर रहे हैं कि किराए पर जाकर जहाँ जिनके जगह खाली पड़ी है वहाँ जगह पे किराए पर जाके और जमीन में गड्ढा खुदवा के वहाँ पैर नीचे दबा के बाको किराओ देते हैं जमीन में पैर दबाने के एक घंटा।
1: अच्छा
0: तो हमें वे काय के बारे की हमें मिट्टी से उन्हें जो है नंगे पैर से कुछ उनके तत्व उनके शरीर में
1: ना बिल्कुल नंगे पैर जो है मिट्टी पे कोकू हरी घास पे और मिट्टी पे चलना बहुत लाभकारी।
0: तो जब किचन गार्डन हो तो बामा नंगे पैर जब घूमेंगे तो सब लोग स्वस्थ रहेंगे। तो भैया देखो सब भैया बहन से हमारा जय कहना है कि आपके घर के आसपास जगह है या फिर ना है तो आप छत पर गमलन में कर लो, आप किचन गार्डन थोड़ी बहुत जरूर करो
1: बिल्कुल भैया,
0: जैसे आप और आपको पूरे परिवार स्वस्थ रहे और किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो।
1: बिल्कुल, और बचत हो वही भैया।
0: बिल्कुल। और एक बात कैसी वहां में जो जैसे फूल गोभी है या और कोई सब्जी है, बाकी जो डटरे उठे बच्चे वे अपने पशु को खुवा दे
1: ना। बिल्कुल सही बात है भाई, किसान है हम, खेती बाड़ी कर रहे हैं तो हमारे पशु पाल रहे हैं हम, क्योंकि दूध बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। अब ये देखो पशुन की बात आएगी और दूध की बात आएगी तो इससे संबंधित एक जानकारी है, अगर आप कहो तो अपने भैया को सुनवा।
1: बिल्कुल भैया, बिल्कुल सुनवा हेमपाल भैया निकी और पूछ पूछ।
0: बिल्कुल। तो साथियों, दुग्ध उत्पादन में पशु आहार को महत्व, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा और आपसे बातचीत करके जानकारी दिलवा रहे हैं श्री राजेंद्र भट्ट। साथियों, हम आपको बता दें कि जो जानकारी हमें पंतनगर से प्राप्त भई और पुनः इसको प्रसारण करो जा रहा है, तो साथियों आप सुनो और हम सुने जो जानकारी।
2: सर, सबसे पहले आपसे हमारा सवाल है कि पोषण से क्या तात्पर्य है और इसका दुधारू पशुओं में क्या महत्व है?
3: किसान भाइयों, पोषण में पशु के रखरखाव में और दूध उत्पादन में पशु आहार का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप मोटा मोटा हिसाब देखें, पशु आहार लगभग 60-70% जो खर्च होता है पशु के रखरखाव पर, वो खिलाने पिलाने पर खर्च होता है। अगर दुधारू पशु का आहार ही ठीक नहीं होगा तो पशु स्वस्थ भी नहीं रहेगा और दूध भी अधिक नहीं देगा और टाइम से गाभिन नहीं होगा और बार बार बीमार होगा। इसलिए जो पशु का आहार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसको संतुलित मात्रा में बनाएं और संतुलित मात्रा में खिलाएं और समय से खिलाएं।
2: सर, पशु आहार से क्या तात्पर्य है?
3: दूसरी बात यह है, पशु आहार देखा होगा कि कई बार जो किसान भाई मार्केट से बाजार से खरीद कर लाते हैं, जो कंपनी के बैग लाते हैं उस पे भी पशु आहार लिखा रहता है, वह पशु आहार नहीं होता। पशु आहार जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनाता है, सूखा चारा, हरा चारा और राति मिश्रण। इसलिए जो आहार है ये केवल राति मिश्रण से नहीं होता, ये केवल हरे चारे और सूखे चारे से नहीं होता, इसलिए ये तीनों को एक साथ मिलाकर जब उसकी आवश्यकता अनुसार पशु को खिलाया जाता है उसको पशु आहार कहते हैं।
2: जी, संतुलित आहार क्या होता है, पशुओं के लिए संतुलित आहार का क्या महत्व है?
3: संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें अच्छी किस्म का हरा चारा, सूखा चारा, जो राति मिश्रण जो होता है ये दिया जाता है। इसमें पशु के दूध के उत्पादन के अनुसार, पशु के शरीर भार के अनुसार और पशु की वृद्धि के अनुसार खिलाया पिलाया जाता है। जैसे अगर आप देखें जो ज्यादा उत्पादन दूध देने वाले जानवर हैं, उनको प्रोटीन की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, हरे चारे की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से कम उत्पादन देने वाले जानवरों को या पशुओं को, गाय भैंस को, कम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो बीच के जानवर हैं उनको ऊर्जा की मात्रा देने की आवश्यकता है और प्रोटीन की मात्रा देने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ऐसा राति मिश्रण होना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा 20-22% होनी चाहिए और जो ज्यादा दूध देने वाले जानवर हैं उनके राति मिश्रण में 24% की मात्रा होनी चाहिए प्रोटीन की।
2: तो सर, अगला सवाल आपसे हमारा यही है कि जो ये राति मिश्रण की जो हम बात कर रहे हैं ये क्या होता है सर, तो क्या इसको किसान भाई अपने घर पे ही बना सकते हैं?
3: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, किसान भाई इसको अपने घर बना सकते हैं। और जो किसान भाई राति मिश्रण बनाना चाहते हैं मैं उनको एक सूत्र बता रहा हूँ, वो लिख लें। अनाज जिसमें कई प्रकार के अनाज ले लें, आप मक्का ले लें, गेहूं ले लें, जई ले लें, बाजरा ले लें और टूटे हुए चावल अगर आप ले लेंगे तो वो लगभग 30 भाग, उसके बाद चोकर है।

0: मिश्रण बन जाएगा। लेकिन अगर आपके जानवर ज्यादा दूध दे रहे हैं तो जो मैंने बताया सोयाबीन की खली या मूंगफली की खली वह अधिक मिलाएंगे और सरसों की खली कम मिलाएंगे। लेकिन अगर वसा आपके दूध में वसा ज्यादा चाहिए, घी ज्यादा चाहिए, तो वहां पर ऐसे पशुओं को हरा चारा खिलाना चाहिए और राती मिश्रण थोड़ा कम हो जाएगा, बिनौले की खल ज्यादा खिलाएंगे। बहुत से किसान भाई ये भी पूछते हैं कि हम अपने जानवर का वसा कैसे बढ़ाए दूध में, तो उसका प्रमुख कारण है अपने पशुओं को हरा चारा खिलाएं। अगर अच्छी क्वालिटी का जैसे आपको बरसीम है, रिज का है, अगर ये ज्यादा खिलाएंगे और इसमें थोड़ी फाइबर की मात्रा भी है, ज्यादा उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत उसे राती मिश्रण भी दे दें तो दूध में वसा की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन बहुत से किसान भाई ये भी पूछते हैं कि एसएनएफ से भी कैसे बढ़ाएं। कंपनी वाले कहते हैं हम दूध खरीदेंगे, एसएनएफ कैसे बढ़ाएं, तो ऐसे पशुओं को उसके आहार में राती मिश्रण की मात्रा ज्यादा बढ़ानी चाहिए जिससे एसएनएफ की मात्रा बढ़ जाए। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि वसा भी बढ़े और एसएनएफ भी बढ़े, तो ये हरा चारा है और सूखा चारा है, 60% हरा चारा और 40% सूखा चारा, और उसके साथ साथ दूध के उत्पादन 3 किलो दूध पर 1 किलो राती मिश्रण देना अनिवार्य है, तो जो गाय और भैंस है उनका दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, वो स्वस्थ भी रहेंगे, उसमें वसा भी बढ़ेगी और एसएनएफ भी बढ़ेगा।
1: जी सर, जैसे कि पशु बालक भाई क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें पशुओं से दूध का उत्पादन अधिक मिले, तो इसलिए वो जो आहार की जो हम बात कर रहे हैं, पशु को कितना आहार देना चाहिए और रात्रि मिश्रण की जैसे भी आपने बात की जो किसान भाई घर में बना सकते हैं उसको खिलाने की क्या विधि?
0: देखो सबसे अच्छा जो खिलाना है हरा चारा है। हरा चारा में जो मोटे चारे भी आते हैं और आपके दुधाली चारे भी आते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनमें जैसे रिज का है और आपका बरसीम है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा मिलती है। लेकिन जो मक्का का चारा है और आपका ज्वार का चारा है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम मिलती है, ये केवल पेट भरने के काम आते हैं। लेकिन जो पशुपालक हैं, अगर वो अच्छी किस्म का चारा लें तो उसमें 60% और 40% होना चाहिए। 10 किलो में ये समझ लीजिए 6 और 4, 6 किलो हरा चारा और 4 किलो सूखा चारा। लेकिन अगर गाय भैंस आपकी 250 से 300 किलो की है तो उसको कम से कम 30 से 40 किलो हरा चारा चाहिए, और उसके बाद दूध के उत्पादन के लिए गाय के केस में 3 किलो दूध पर 1 किलो राती मिश्रण और भैंस के दूध पर 2.5 किलो दूध पर 1 किलो राती मिश्रण देने की आवश्यकता है, सूखे और हरे चारे से अलग अलग। उसके साथ साथ उसको अगर खनिज मिश्रण की कमी है तो वहां पर खनिज मिश्रण भी आप उसको 50 ग्राम रोजाना दे सकते हैं। लेकिन अगर गाय या भैंस दूध ज्यादा दे रही है तो खनिज मिश्रण जो है 80 से 100 ग्राम भी प्रतिदिन देना चाहिए, नमक जो है वो भी 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए।
1: जी सर, अगला सवाल है आपसे, जैसे कि सर्दियों की हम बात करते हैं तो सर्दियों में दूध उत्पादन के लिए जो आहार है वो क्यों महत्वपूर्ण है सर?
0: इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वातावरण का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, पशु को ठंड लगती है और पशु अपने शरीर की ऊर्जा खर्च कर लेता है अपने शरीर को बचाने के लिए, इसलिए ऐसा भोजन देना चाहिए उसके शरीर में गर्मी उत्पादन करे, इसलिए हरा चारा भी उसे देना चाहिए और राती मिश्रण भी उसे देना चाहिए और रख रखाव के लिए उसका ठंड से बचाव करना चाहिए।
1: तो सर जैसे भी हमने अभी पूर्व में राती मिश्रण की बात की, तो लेकिन हम बात करते हैं खनिज मिश्रण की, तो ये खनिज मिश्रण का क्या तात्पर्य है और इसका क्या लाभ मिलता है पशुपालक भाइयों को?
0: खनिज मिश्रण में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, ये सभी जब पशुओं को आप देंगे दूध का उत्पादन बढ़ेगा। और कई दफे आप लोगों ने देखा होगा पियाने के बाद एकदम से बैठ जाता है और फिर नहीं उठता और गर्दन घुमा कर बैठता है, उसको देखो अगर शरीर पे उसका हाथ रखा जाए तो उसका शरीर कांपने लगता है और शरीर को ऐसा लगता है बुखार है लेकिन टेम्परेचर नहीं दिखाई देता। इसको कहते हैं दुग्ध ज्वर, नाम तो ज्वर है। इसमें क्या होता है कैल्शियम की कमी हो जाती है उसके रक्त में और बियाने के तुरंत बाद क्योंकि जानवर चारा नहीं खा रहा, राती मिश्रण नहीं खा रहा, तो उससे क्या आता है दूध के उत्पादन में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा आती है। वह कहां से आती है? वह रक्त से हड्डियों से मिलकर निकलती है, इसलिए पशु को रक्त ज्वर हो जाता है और या ज्वर कहते हैं उसको और मिल्क फीवर भी उसे कहते हैं, तो उसको इसलिए खनिज मिश्रण देना अति आवश्यक है।
1: सर अब बात करते हैं हम गाभिन गाय की, तो सर गाभिन गाय को कैसा आहार देना चाहिए और गर्भवती गाय को आहार में क्या देना चाहिए?
0: देखो गर्भवती गाय जो होती है या गाभिन गाय जो है, पहली बात तो यह है गाभिन होने के बाद क्या क्या खिलाना चाहिए। अगर वह दूध दे रही है और गाभिन भी है और उसके पेट में बच्चा पल रहा है, तो जो भी दूध का उत्पादन हो रहा है, जैसे कि मैं अभी बताया 3 लीटर दूध पर 1 किलो राती मिश्रण जो

0: आप हरा चारा सूखा चारा दे रहे उससे अलग, ये तो हो गया दूध के उत्पादन पर। मान लिया वह 10 लीटर दूध दे रही है तो उसका राति मिश्रण हो गया 3 किलो, ठीक हो गया। और 1.5 किलो आप देंगे शरीर को रख रखाव के लिए या जो पेट में बच्चा पल रहा है उसके लिए। अब आता है आखिरी के ब्याने के 2 महीने पहले और 2 महीने बाद कैसी खिलाए पिलाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है गाय और भैंस का
1: जी।
0: इस समय ऐसा आहार खिलाना चाहिए जो पाचक हो और जो दस्तावर हो, यानी कि गैस ना बनाए और कब्ज भी ना करे
1: जी।
0: तो उसको हरा चारा भी दें और उसके आहार में चोकर की मात्रा ज्यादा बढ़ाएं। चोकर की मात्रा इसलिए बढ़ाएं, कई बार ऐसा होता है शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ब्याने के बाद जानवर के पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है, ये इसी के कारण से होता है, फास्फोरस की कमी के कारण। और भी कई कारण हो सकते हैं लेकिन मुख्य कारण ये होता है। तो इसलिए उसको उस टाइम चोकर खिलाएं। और जो राति मिश्रण की मात्रा है कम से कम भी उसको 2 किलो दूध सूखने के बाद बच्चे के बढ़वार के लिए और माँ के रख रखाव के लिए, तो आप उसे राति मिश्रण की मात्रा देंगे। अगर वो नहीं देंगे तो पशुओं में ऋणात्मक ऊर्जा का महत्व बढ़ जाएगा और ब्याने के बाद, क्योंकि पशु अधिक चारा राति मिश्रण नहीं खा रहे हैं तो वहां पर भी ऋणात्मक ऊर्जा का महत्व हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, दूध का उत्पादन कम होगा, पशु का शरीर कमजोर हो जाएगा। और अगर आप डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो डॉक्टर को ये बताएंगे कि भाई हमारे पशु चारा नहीं खा रहा, दूध का उत्पादन कम हो रहा है। इसका कारण यह है कि ब्याने से पहले जो खिलाई पिलाई हमें अच्छी करनी चाहिए थी, जब वो दूध नहीं दे रहा और ज्ञापन है आखिरी के 2-3 महीने, तो उस टाइम बहुत अच्छी खिलाई पिलाई पशु को करने चाहिए। तो ये कम ऊर्जा की बात है, ब्याने के बाद ये समाप्त हो जाती है और दूध का पशु का उत्पादन भी कम नहीं होता और ये जो ऋणात्मक गुण है ये पशु का खत्म हो जाता है।
1: तो सर अगला सवाल है कि गाय के ब्याने के बाद क्या खिलाना चाहिए।
0: हाँ, ब्याने के बाद ऐसा आहार हो जो पचनीय हो, चोकर हो, दलिया हो, हल्का हरा चारा हो, गुड़ का काढ़ा हो, और उसको ब्याने के बाद सबसे पहले तो गुनगुना पानी पिलाना चाहिए। पशु की ताजगी को और स्फूर्ति के लिए हल्दी 30 ग्राम, सौंठ 15 ग्राम, अजवाइन 15 ग्राम, गुड़ 250 ग्राम को 1 लीटर पानी में उबाल दो और 3 दिन तक सुबह और शाम दोनों टाइम पिलाना चाहिए। और उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि गेहूं, जौ, बाजरा का दलिया गुड़ में मिलाकर सुबह शाम 5 से 7 दिन तक देना चाहिए, जिससे उसकी पेट की सफाई भी हो जाए, हाथों की सफाई हो जाए और वो जानवर जेर भी गिरा दे
1: जी। तो सर अगर हम बात करते हैं कि पशु आहार में नमक की हम जैसे बात करते, इसका क्या महत्व है सर पशु आहार में।
0: देखो अगर नमक नहीं देंगे तो सलाइवा लार नहीं बनेगी मुंह में, और अगर लार नहीं मिलेगी तो चारे का पाचन नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा कई बार पशु भाई ये शिकायत लेकर आते हैं कि मेरा पशु बहुत हांप रहा है। वो हांपता इसलिए है कि उसके मुंह में लार नहीं बन रही। लार बनने के लिए उसे नमक की आवश्यकता है और जो खिला पिला रहे उसको चलाने के लिए, उसको पचाने के लिए भी जरूरत है। पशु के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी नमक की बहुत आवश्यकता है। इसलिए पशु को जो दूध देने वाला पशु है 250-300 किलोग्राम का है, उसे 25 से 30 ग्राम नमक रोजाना आवश्यकता है।
1: सर अब बात करते हैं हम पशु आहार में बाईपास प्रोटीन की। हाँ। तो ये बाईपास प्रोटीन क्या है और इससे क्या लाभ है।
0: देखो जुगाली करने वाले जो पशु है इसका जो आमाशय 4 भागों में बटा होता है, तो अगर आप उसको ऐसी प्रोटीन देंगे जो शरीर के पहले भाग में रूमन में ही टूट जाए, जो कि 60-70% टूट जाती है जीवाणुओं के किण्वन के कारण से, फर्मेंटेशन के कारण से, तो क्या होता है सारी की सारी प्रोटीन अमोनिया में बदल जाती है और ये अमोनिया यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाती है, यूरिक एसिड बनकर और यूरिया बनकर। यानी कि जो सबसे महंगी चीज है, जो प्रोटीन की कीमत बहुत ज्यादा है, वह आपने वेस्ट कर दी। इसलिए ऐसी प्रोटीन का निर्माण करना चाहिए, खिलानी चाहिए। मैंने अभी बताया ह्यूमन के अंदर 60-70% टूट जाती है, लेकिन हमें ऐसी प्रोटीन करनी चाहिए और ह्यूमन में टूटे 20-30%, लेकिन जो उसका नीचे का भाग है, इंटेस्टाइन वाला भाग है, वहां पर कुछ प्रोटीन की मात्रा मिल जाए। अगर ऐसी प्रोटीन खिलाएंगे तो दूध का उत्पादन निश्चित रूप से पशु का बढ़ेगा। और ये ऐसे पशु को खिलाई जाती है जो आपके ज्यादा दूध देने वाले हैं, जो ज्यादा वृद्धिशील पशु है।
1: जैसे कि जो प्रथम बार यानी जो पहली बार जो गाभिन गाय या भैंस ब्या रही है
0: जी,
1: तो उसको सर कैसे आहार, उसको उसको देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए?
0: देखो, जो गाय या भैंस पहली बार भी आ रही है उसको प्रोटीन और ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, और खनिज मिश्रण भी। उसका कारण ये है, अगर खनिज मिश्रण और पोषक तत्व वो ज्यादातर दूध बनाने में खर्च हो जाते हैं, लेकिन उसका जो शरीर है वो तीसरे ब्यांत तक वृद्धि करता रहता है, तीन ब्यांत तक वो वृद्धि करता रहता है, इसलिए उसके वृद्धि करने के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अतः हमको दूध को, जैसे कि मैं पहले बतलाया हूँ कि पशु के रख रखाव और वृद्धि के लिए कम से कम उसको 2 किलो राती मिश्रण रोजाना देना आवश्यक है। इसके साथ साथ ही जो दूध का उत्पादन हो रहा है उसमें भी गाय के केस में अगर अच्छी किस्म का हरा चारा उसको आप खिला रहे हैं तो 3 लीटर दूध पर 1 किलो राती मिश्रण, और भैंस के केस में 2.5 किलो दूध पर 1 किलो राती मिश्रण देने की आवश्यकता है। परंतु ऐसे भी जानवर हैं जो 15-20 लीटर या 25 लीटर दूध दे रहे हैं, वहां पर 2.5 लीटर गाय के दूध पर 1 किलो राती मिश्रण और भैंस मर 2 लीटर दूध पर 1 किलो राती मिश्रण के साथ साथ हरा चारा और सूखा चारा उसे देना चाहिए। उसके साथ साथ उसे कम से कम भी 100 ग्राम खनिज मिश्रण, 30-40 ग्राम नमक देना चाहिए, और जो पानी की मात्रा है वो उसे 50-60 लीटर की आवश्यकता होती है, वो 3 भागों में बांट के आप पिला सकते हैं। ऐसे ही हरा चारा, सूखा चारा और राती मिश्रण भी खिलाना चाहिए।
1: सर, एक सवाल हमारा आपसे और है, और जैसे ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि बहुत से पशुपालक भाई, किसान भाई संकर किस्म के जो है जानवर रखते हैं जो अधिक दूध देने वाली गाय होती है, तो इसके लिए भी सर जो दूध निकालना है हमारे पशुपालक भाइयों को कितने बार निकालना है और कब जो है कितने महीने पहले जो है दूध को सुखा देना चाहिए किसान भाई?
0: पहली बात तो है, ऐसे जानवर जो संकर किस्म के जानवर 8 किलो से लेके आपको 30 लीटर तक के दूध के मिल जाएंगे। पहले तो मैं बताता हूँ 8 लीटर दूध वाले के लिए 2 बार दुहान करना चाहिए, लेकिन जो 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर 40 लीटर वाले जानवर हैं, कई बार ये देखा गया है कि उन पर 3 बार भी दुहान करते हैं 8-8 घंटे के बाद, उससे क्या होता है 5-10% दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। एक चीज तो ये, बियाने से बाद कम से कम बियाने के 2 महीने पहले जानवर को सुखा देना चाहिए, यानी कि दूध नहीं निकालना चाहिए, जिससे जो पेट में बच्चा पल रहा है वो पल जाए, और दूसरी चीज ये है जो थनों में उनकी मरम्मत भी हो जाए, जहां दूध का उत्पादन होता है आयन बोलते हैं, उस आयन की भी मरम्मत हो जाए, तो इसलिए कम से कम भी बियाने से 2 महीने पहले जानवर को सुखा देना।
1: किसान भाइयों, जैसे कि अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अशोक कुमार जी को, तो सर आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला और आपने किसान भाइयों को इस विषय में इतनी महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भाइयों बहनों, दुग्ध उत्पादन में पशु आहार का महत्व, इस विषय पर अभी आपने विस्तार से जानो डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा से, और आपसे बातचीत करके जानकारी दिलवा रहे थे श्री राजेंद्र भट्ट। साथियों, हमें उम्मीद है कि आप अपने पशुओं का डॉक्टर साहब के बताए अनुसार देखभाल करोगे। अब साथियों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ावें उससे पहले कुछ जरूरी संदेश है, उन्हें सुन लेते हैं।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हमारी जनगणना हमारा विकास।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: भाई बहनों, अब समय ही चलो है कार्यक्रम में मनोरंजन को, तो साथियों नथुलाल की आवाज में सुनवाते हैं जो लोकगीत।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना प्यारा सा लोकगीत, और अब साथियों कुछ सुने संदेश। साथियों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम युवा प्रगतिशील कृषक श्री अमन कुमार जी से बातचीत, ब्लॉक सहजवान, जिला बदायूं। किसान साथियों, राम राम साथियों, आज हमारी बात हो रही है युवा किसान भाई अमन जी से, जो कि ब्लॉक सहजवान जिला बदायूं के निवासी हैं। अमन भैया राम राम।
1: राम राम भैया।
0: अमन भैया, जून को महीना चल रहा है और इसलिए हमारे जो है किसान भाई खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। अब की बार तो देख रहे हैं भैया हम कि सबकी नजर बारिश पे टिकी है।
1: सही बात है भैया, मौसम विभाग कहे तो रोज ज्यादा मतलब मानसून अच्छे बरसेगो, अब जा है सब अच्छे से हो जाए तो धान मक्का और बाजरा सब बढ़िया से हो जाएगा।
0: हाँ, सही बात कही आपने अमन भैया। और आजकल हम हमारे जो किसान भाई हैं, मौसम की जानकारी हम देख रहे हैं कि मोबाइल से ले लेते हैं, इससे खेती को काम देख रहे हैं कि आसान ही हुए।
1: हाँ भैया, अब जा है कि जब चल रहा है नेट फेट बता दे तो पहले से ही, तो जा है कि अगर बारिश वरिश दिख जाती है कि तो भाई हिसाब से अपनों तैयारी कर लेते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही बात की आपने अमन भैया। अच्छा अमन भैया, हमने सुना कि कई जगह हमारे किसान भाई ड्रोन को इस्तेमाल करने लग रहे हैं अब।
1: हाँ भैया, दवाई उवाई छिड़का देते हैं और खाद फाद लग जाती है भाई से, टाइम बच जाता है, लेबर ना मिलती है ना, लेबर की बचत हो जाती है।
0: हाँ जो बात सही है, काम जल्दी ही जाता है वो।
1: जी जी।
0: अच्छा अमन भैया, देख रहे हैं कि हम जो खेती की लागत जो है हमारी बढ़ जा रही है, बीज खाद और डीजल सब महंगा हो जा रहा है।
1: हाँ भैया, है तो बड़ा चिंता का विषय, अब ये है कि जैसे जैसे सरकार थोड़ी थोड़ी मदद मिल जाती है वैसे जाए।
0: अमन भैया, जून के महीना में हम देख रहे हैं कि पानी बचाने पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और कई बार बारिश का मौसम से हमारी जो फसलें हैं उनको नुकसान भी हो जाते है।
1: सही बात है भैया, खेतों में पानी रोकने के लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, और ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी मशीनें हैं, वैसे सिंचाई विचाई करते रहते हैं तो चलते रहते काम।
0: हाँ देखिए, तो बहुत नई पद्धति है। अच्छा अमन भैया, आजकल जैविक खेती की काफी चर्चा ही रही है।
1: हाँ भैया, वैसे जा है ये गोबर की खाद है तो वैसे अपनी करते हैं तो इससे जो मिट्टी बढ़िया बनी रहती है और फसल ज्यादा होती है।
0: हाँ जो बात सही कही आपने भैया कि मिट्टी की देखी जाए तो जो है पैदावार बढ़ती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है। अच्छा अमन भैया, एक बात पूछना आपसे कि फसल बीमा कराने का जरूरी है, मौसम को कोई भरोसा ना रहता है का जरूरी।
1: देखो भैया अभी थोड़े दिन पहले हमारे एन पे ओले पर गए तो वैसे बीमा में तुरंत ही लेखपालन ने अपनों वो करो और आर्थिक सहारा मिल गो तुरंत ही, तो बीमा बहुत फायदेमंद रहता है, कराना चाहिए।
0: हाँ सही बात कही आपने, हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ किसान भाई हैं जो बीमा ना कराता तो सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। आप बीमा करा सकते हैं हमारे किसान भाई, और बीमा को लाभ जैसे अमन भैया बता रहे हैं कि मिल गए है कई किसान भाइयों को, और हमारे किसान भाई भी ले सकते होंगे। और कुल मिला के जून को जो महीना है वो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी तैयारी करें और सही जानकारी से जो है हमारे किसान भाई अपनी फसल कर सकते होंगे।
1: सही कह रहे हो भैया, अब देखो ज्यादा फिर मानसून अगर अच्छो बरस गयो तो जा है कि बढ़िया से अपनी फसल हो जाएगी।
0: हाँ बिल्कुल सही बात कही अमन भैया। अच्छा अमन भैया, आज के इस कार्यक्रम में हमारे किसान भाई जो आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे अच्छी तरह खेती बाड़ी अपनी कर सके।
1: भैया बढ़िया से मेहनत करो और सब फसल जो है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा फसल के उत्पादन हो जाएगा, तो जाए कि अपनों सब चाम बढ़िया से चलते रहे हो, बाकी बीमा उमा जरूर करा लो ताकि जाए कि अगर प्रकृति के रूप से अगर कहीं नुकसान होता है तो उसके लिए भरपाई हो जाती है वैसे जाए।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश दिया अमन भैया आपने हमारे किसान भाइयों को कि फसल का बीमा कराना कितना जरूरी है और इससे हमारे किसान भाई लाभ जरूर उठाएंगे। आपने हमसे समय निकाल के बातचीत करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया बहनों, अभी आपने हमारे भैया हरदेव ने जो युवा कृषक से बातचीत करी वो सुनी। अब हरदेव भैया देखो, आज 16 जून है।
0: हाँ।
2: और आधो पखवाड़ो इस माह को बीत गो और आगे जो पखवाड़ो आ रहा है, जहाँ में हमारे किसान साथी का काम कर सकते हैं, किन किन कारण काम उनको करना जरूरी है, जहाँ पर कुछ चर्चा कर लेते हैं।
0: बिल्कुल सही बात कही भैया।
2: भैया देखो, जो महीना जो 15 दिन है ना, ये बहुत ही जो खरीफ की हमारी फसल आ रही है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो जो हमारे किसान साथी ने धान की पौध डाल दी, उसमें सिंचाई करते रहें यानी नमी बनाते रहें, लेकिन साथियों इस बात को आप ध्यान रखें कि गर्मी खूब पड़ रही है और ऐसी गर्मी से बचने के लिए आप शाम के समय उसकी पौध की सिंचाई करें,
0: और लेकिन ज्यादा पानी ना भरें।
2: हाँ,
0: पौधे डूब जाएंगे।
2: अगर अगर ज्यादा ही होगा तो सुबह ही आप जाओ और सुबह वाकई ले निकाल दो,
0: निकाल दो, निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए जो है हम अपने कार्यक्रम में आवेदन से बताते हैं किसान भाइयों को कि किसान साथियों, जब भी आप कोई भी खेती करें या पौधों जो डालें, तो समतल जगह में डालें।
2: बिल्कुल, तो जिससे जो है पानी एक लेवल पर आए तो सही रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और साथियों, पौध में आप खरपतवारों को बिल्कुल ना होने दें, खुरपी की सहायता से हाथन से आप उसे निकालें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे ज्यादा बीच में जिसको होते हुए दवा को भी प्रयोग करते हैं, और वैसे तो हम तो जय कहेंगे कि आप जितनी दवाइयों को प्रयोग कम करें उतना ही अच्छा है। इसके अलावा जो साथियों बेल वाली फसलें हैं, उनमें हरदेव भैया हमारे भैया क्या कर रहे हैं, जैसे बेल वाली फसलें जो भी हैं, जैसे लौकी है, तुरई है, करेला है, जो कुल कुल बड़ी ही गई हैं बेल हैं, तो उन पर ठट्टर बांध दें,
0: ठट्टर बांध दें, और भैया जो खरपतवार रह गए हैं तो वो खुरपी की सहायता से निकल तो रहे।
2: हाँ,
0: निकालने
2: बहुत जरूरी है। अगर आपने ठट्टर बांध दो, बेल ऊपर चढ़ाए नहीं, पता चली निरी घास जमी पड़ी है तो वो ग्रोथ ही ना करे पौधा, और वहां में निरी मच्छर वगैरह ही जाएंगे, कीट ही जाएंगे, तो वे वैसे ही नुकसान पहुंचा बंगे। तो इस बात को भी हमारे किसान साथी ध्यान रखें। और देखो बारिश को समय आ रहा है, तो बारिश को समय आ रहा हो तो आप जो खेत की मेड़ा है जिसमें आप धान वगैरह लगाओगे उन्हें साफ कर लें, उन्हें और उन्हें पुख्ता कर लें, मोटी कर लें,
0: चढ़ा लें मेड़ा।
2: हाँ, क्योंकि पता चलिए मेह बढ़ से गो और आपने मेड़ संवारी है ना, तो फिर कहाँ से संभाल लोगे,
0: आप पुख्ता कर लोगे ना, तो भैया जब बारिश वरिश हो भाई तो जो कटान ना हो भाई हमारे,
2: हाँ
0: बहुत जरूरी है। पता चले कि आप लेबर लगाए पड़े हो और पानी कटो पर हुए, आपकी सारी लागत भैया पानी में बह जाएगी।
2: हाँ, जैसे अमरूद के बगिया है या नींबू के पेड़ उड़ है, उनकी छटाई को समय बहुत अच्छा है, जो सूखी डाली है या फिर टूटी बूटी है उनकी छटाई उटाई बहुत अच्छी तरीका से इस समय इस पखवाड़े हमारे किसान साथी बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
0: और बहुत अच्छी आपने बात बताई हिमपाल भैया। तो अब हम अपने किसान भाइयों को दे दें मौसम की जानकारी। किसान साथियों, कल का उच्चतम तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। साथियों, हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है और मौसम में आर्द्रता 51% रहने को साथियों अनुमान है।
2: तो भैया जो तो हो कल को मौसम को हाल। अब साथियों हम आपसे विदा लें, उससे पहले हम आपको बता देते हैं अपने कार्यक्रम को पतो। साथियों, हम आपसे विनती करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो हम पतो बता पाए उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिख भेजें, चाहे पत्रों के माध्यम से लिखें या फिर व्हाट्सएप वगैरह या फिर SMS के हम नंबर बताते हैं उसके माध्यम से आप हमें लिख भेजें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें, तभी हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो साथियों लिखें हमारे कार्यक्रम को पतो। पतो है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901। साथियों यदि आप हमें व्हाट्सएप करना चाहें तो आप 94100878786 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो साथियों अब हम दोनों भैयन को दो अनुमति। राम राम, राम।

किसान साथी सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बज चुके हैं। कानून और हम में आइए सुनते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना से भेंटवार्ता। विषय है वसीयत और उत्तराधिकार कानून। प्रस्तुति है अवधेश कुमार गौतम की।

0: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम कानून और हम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वसीयत और उत्तराधिकार कानून, जिस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियोज में हाजिर हैं एडवोकेट अरुण प्रकाश सक्सेना जी, पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता रामपुर। सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि हमारा विषय है वसीयत और उत्तराधिकार कानून, सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वसीयत का क्या अर्थ होता है?
1: देखिए, वसीयत एक कानूनी दस्तावेज यानी लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति यह तय करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किसे और किस अनुपात में दी जाए। सरल शब्दों में कहें तो वसीयत व्यक्ति की अंतिम इच्छा होती है जो संपत्ति के बंटवारे से जुड़ी होती है। वसीयत केवल लेखक की मृत्यु के बाद प्रभाव में आती है।
0: वसीयत बनाने के लिए क्या कोई विशेष कानूनी प्रक्रिया या कोई प्रारूप होता है?
1: जी हाँ, देखिए, वसीयत को वैध यानी वैलिड बनाने के लिए कुछ कानूनी शर्तें हैं। जैसे वसीयत लिखित रूप में होनी चाहिए, लिखने वाला व्यक्ति संपूर्ण होश हवास में होना चाहिए, दो गवाहों के हस्ताक्षर भी आवश्यक हैं, वसीयत पर वसीयतकर्ता यानी टेस्टेटर का हस्ताक्षर और अंगूठा होना चाहिए, वसीयत को रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत कराना कानूनी रूप से उचित और अच्छा माना जाता है, हालांकि ये अनिवार्य नहीं होता।
0: वकील साहब, अगर कोई व्यक्ति वसीयत नहीं बनाता या बिना वसीयत के ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उस संपत्ति का क्या होता है या वसीयत कैसे बनेगी?
1: जी हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है और आमतौर पर सामाजिक समस्या से जुड़ा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति वसीयत नहीं बनाता है तो उसकी संपत्ति का कैसे निस्तारण होता है।
0: जी
1: देखिए, यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मर जाता है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकार कानून यानी लॉ ऑफ सक्सेशन के अनुसार होता है। हिंदूज, मुस्लिम, ईसाई और पारसी सभी समुदायों के लिए उत्तराधिकार के अलग अलग कानून हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 जो मुख्यतः ईसाई और पारसी समुदाय के लिए है।
0: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के अनुसार कौन कौन उत्तराधिकारी होंगे?
1: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकारियों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है।
0: जी,
1: क्लास वन उत्तराधिकारी, इसमें पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता और मृत पुत्र के बच्चे आते हैं।
0: जी,
1: क्लास टू उत्तराधिकारी, इनमें पिता, भाई, बहन, दादा, दादी, चाचा आदि आते हैं। पहले क्लास वन के उत्तराधिकारी संपत्ति में हिस्सा पाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में, यदि अगर उसमें से क्लास वन में कोई जीवित नहीं है, तो क्लास टू वालों को अधिकार मिलता है।
0: वकील साहब, क्या बेटियों को भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त होगा?
1: जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को भी बेटों के समान अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। अब बेटी भी अपने पिता की संपत्ति में जन्म से सह उत्तराधिकारी यानी को पार्टनर होती है, भले ही वह विवाहित क्यों ना हो। यह कानून संपूर्ण भारत में लागू है।
0: क्या वसीयत को कभी बदला जा सकता है?
1: जी हाँ, वसीयत को वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले कभी भी बदला या रद्द किया जा सकता है। वह नई वसीयत बना सकता है और नई वसीयत बनते ही पुरानी वसीयत स्वतः निरस्त मानी जाती है।
0: अगर वसीयत पर विवाद हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा या व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
1: देखिए, यदि परिवार या उत्तराधिकारियों के बीच वसीयत को लेकर विवाद है तो उस स्थिति में वसीयत की प्रमाणिकता यानी प्रोबेट के लिए सिविल कोर्ट में आवेदन किया जाता है।
0: जी,
1: कोर्ट जांच करती है कि वसीयत सही तरीके से बनाई गई है या नहीं और फिर आदेश जारी करती है। प्रमाणित वसीयत के बाद संपत्ति का बंटवारा उसी के अनुसार किया जाता है।
0: जी, वकील साहब, क्या मौखिक वसीयत यानी कि ओरल विल भी मान्य होगी?
1: आमतौर पर भारत में मौखिक वसीयत को स्वीकार नहीं किया जाता।
0: जी,
1: हालांकि कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मुस्लिम कानून में मौखिक वसीयत ओरल विल कुछ परिस्थितियों में वैध मानी जाती है, बशर्ते वह गवाहों के सामने स्पष्ट रूप से कही गई हो।
0: क्या वसीयत में कोई पराई संपत्ति या संयुक्त संपत्ति लिखी जा सकती है?
1: जी नहीं, वसीयतकर्ता केवल उसी संपत्ति की वसीयत कर सकता है जो उसके नाम पर वैध रूप से दर्ज हो, उसके द्वारा अर्जित की गई हो। संयुक्त या विवादित संपत्ति पर वसीयत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक उस पर उसका एकमात्र अधिकार सिद्ध ना हो जाए।
0: वकील साहब, क्या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या बच्चों को वसीयत से वंचित भी कर सकता है?
1: जी हाँ, कानूनी रूप से ये बात सही है कि वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी दे सकता है या ना दे, लेकिन ऐसे मामलों में वसीयत को संदेहास्पद मानकर अदालत में चुनौती दी जा सकती है, खासकर यदि पत्नी या बच्चे आर्थिक रूप से उन पर आश्रित हों।
0: वकील साहब, वसीयत बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, वसीयत साफ सुथरी भाषा में होनी चाहिए, उसमें कोई अस्पष्टता ना हो।
0: जी,
1: संपत्ति का पूरा विवरण, जैसे कि जमीन, मकान, बैंक अकाउंट, गहने, जेवर आदि सब लिखना चाहिए। गवाह विश्वसनीय और निष्पक्ष होना चाहिए।
0: जी,
1: वसीयत की एक प्रति सुरक्षित स्थान या बैंक लॉकर में भी रखी जानी चाहिए। परिवार के किसी विश्वसनीय सदस्य या वकील को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए।
0: क्या वसीयत पर टैक्स देना पड़ सकता है या कोई स्टैंप ड्यूटी भी लगती है?
1: नहीं, वसीयत पर कोई स्टैंप ड्यूटी या टैक्स नहीं देना पड़ता। हालांकि यदि वसीयत के आधार पर संपत्ति का नामांतरण कराया जाता है तो स्थानीय निकाय शुल्क या म्यूटेशन फीस लग सकती है।
0: कुल मिलाकर कोई स्टैंप ड्यूटी या टैक्स वसीयत पर नहीं लगता है?
1: जी नहीं।
0: वकील साहब, क्या वसीयत का लाभ नाबालिग को मिल सकता है और नाबालिग के ऊपर वसीयत के क्या प्रभाव होंगे, उदाहरण से समझाइए।
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर वसीयत किसी नाबालिग के नाम की जाती है तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? देखिए, कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी वसीयत किसी भी संपत्ति नाबालिग और बालिग किसी के नाम भी कर सकता है। अब नाबालिग बेनिफिशियरी तो हो सकता है, लेकिन नाबालिग स्वयं कोई वसीयत या कागज एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। उसी बात यह है कि वसीयत जो प्रभावी होगी वो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद होती है।
0: जी,
1: जब वसीयत के तहत संपत्ति नाबालिग के नाम की जाती है तो उसका कानूनी संरक्षक या एग्जीक्यूटर उस संपत्ति का रखरखाव रखता है। नाबालिग के बालिग होने तक संपत्ति का प्रबंधन उसी संरक्षक के पास रहता है।
0: जी,
1: जैसे इसे उदाहरण से समझें, मान लीजिए श्री रामलाल अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने पोते अनिल के नाम वसीयत में लिख देते हैं।
0: जी,
1: जो उस समय 12 वर्ष का है, तो ऐसी स्थिति में वसीयत वैध मानी जाएगी। संपत्ति का स्वामित्व अनिल को मिलेगा, लेकिन प्रबंधन और उपयोग का अधिकार उसके संरक्षक के पास रहेगा।
0: जी,
1: और अनिल के 18 वर्ष होने पर वह स्वयं उस संपत्ति का स्वामी बन जाएगा। यदि वसीयत में कोई शर्त नाबालिग के विरुद्ध है,
0: जी,
1: जैसे मान लीजिए वसीयत में लिखा जाए कि संपत्ति तभी मिलेगी जब बालक किसी धर्म को अपनाएगा, तब ऐसी शर्त निरस्त हो जाएगी। इससे संबंधित प्रावधान है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। तो इन सभी कानूनों के अंतर्गत जो प्रावधान है वो नाबालिग से जुड़ी वसीयतों पर लागू होते हैं।
0: वकील साहब, संक्षेप में श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति की सुरक्षा और पारिवारिक सौहार्द बनाए रखने के लिए समय रहते एक स्पष्ट और वैध वसीयत बनानी चाहिए। इससे भविष्य के विवादों से बचा जा सकता है और परिवार के सदस्य कानूनी झंझटों से सुरक्षित रहते हैं।
0: जैसे कि हमारा विषय था वसीयत और उत्तराधिकार कानून, और इस विषय पर बहुत ही सरल शब्दों में इस पर जानकारी हमें दे रहे थे एडवोकेट अरुण प्रकाश सक्सेना, पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता रामपुर। सर, आपने हमारे स्टूडियोज में आकर इस विषय पर इतनी सार्थक जानकारी हमारे और हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
0: श्रोताओं, कानून और हम के अगले अंक में फिर से एक नए विषय के साथ और एक लीगल एक्सपर्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अवधेश गौतम को दीजिए अनुमति।

0: कानून और हम में आप सुन रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना से भेंट वार्ता। विषय था वसीयत और उत्तराधिकार कानून। प्रस्तुति थी अवधेश कुमार गौतम की। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।
1: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
2: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
1: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
2: आपातकाल में साथ निभाए,
1: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
2: 112।
1: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
2: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
1: यदि चाहिए पुलिस सहायता
2: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
1: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
2: मिटाकर हर सस्पेंस को
1: डायल 112।
2: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
1: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
2: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
1: या फिर भेजें ईमेल always use 112 India mobile app।
2: जब घेरे कोई भी आपदा,
1: तुरंत मिले सहायता
2: डायल 112।
1: चिंता से पाएं छुटकारा,
2: पुष्पा झुकेगी नहीं,
3: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।
4: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
5: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
4: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
5: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
6: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष, हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
5: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
7: से नो टू प्लास्टिक।
6: एक बार सोच के देख जरा, क्या जल बिन तुम जी पाओगे, तरस जाओगे बूंद बूंद को, जो व्यर्थ में जल को बहाओगे।
5: बिन पानी जीवन बदहाली, पानी से ही है खुशहाली।
8: जल है असली सोना, इसको कभी मत खोना,
6: अगर चाहते हैं भविष्य सुरक्षित बनाना तो बेहद जरूरी है जल को बचाना।
5: पानी की रक्षा, देश की सुरक्षा।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ व FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

0: आज 7:31 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन सकेंगे आयुषी के स्वर में कुछ गीत। आठ बजे आपके रेडियो सेट पर होगा कार्यक्रम गीत गाता चल। रात्रि 9:30 पर साहित्यिक पत्रिका के अंतर्गत आप सुन सकेंगे डॉक्टर प्रणव शास्त्री से वार्ता, विषय रहेगा हिंदी कविता में वेदना के स्वर। आशा बिसारिया से सुन सकेंगे उनका काव्य पाठ। इसी क्रम में कहानी संस्कार में आप सुन सकेंगे अंजलि वर्मा को। रात्रि 10:30 पर आपके रेडियो सेट पर होगा कार्यक्रम गीतांजलि। यह था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी रामपुर है।
1: जल के बिना तो जल जाओगे, पानी की एक बूंद बिना तुम कैसे प्यास बुझाओगे।
2: कीमत समझो पानी की अब, वरना फिर पछताओगे।
3: रिश्ते नाते पीछे होंगे जब जल की होगी मारा मारी। रुपयों से भी जल न मिलेगा, जल की होगी पहरेदारी।
2: जल है तो कल है,
3: यही चिंतन पल पल है।
4: पानी को बचा कर रखिए, इसका सदुपयोग कीजिए।

0: जल के बिना है मुश्किल जीना, दुर्लभ हुआ स्वच्छ जल पीना। सबकी प्यास बुझाता पानी, पानी है तो है जिंदगानी।
1: जरा सोचिए, जब धरा पर रहेगा जल, तभी तो बचेगा आने वाला कल। जल की बचत, कल की सुरक्षा।
2: जितना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए योग,
3: उतना ही अनिवार्य है स्वच्छ जल का प्रयोग।
4: बस करना होगा जल का सदुपयोग।
3: पानी बचाओ, जीवन बचाओ।
5: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर। 7:18 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से नशर किए जाएंगे।

0: डॉट कॉम। तो हई का जो हई का हम बता दें जिका एक एक अक्षरन में FAREMANDHOMEAIRLKO@gmail.com।
1: तो बहनी एक के साथ है, अपनी बैठकी का समय पूर्ण हो रहा है, तो पंचन से लीन जाए विदा। जय।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
6: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
7: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे, और डॉक्टर्स पैदा होते से मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया। और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
6: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में जिला प्रशासन और सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लगाई गई विकसित भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की योजनाओं की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों और मिर्जापुर के विकास कार्यों को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
8: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वांचल को रेलवे की तरफ से कई रेल सेवाओं की सौगात प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए आज बताया कि हाल ही में उन्होंने पूर्वांचल की रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेल मंत्री से कई महत्वपूर्ण मांगे की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इन सुविधाओं में दोहरीघाट और यहार नई मेमो ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन शामिल है। इसके अलावा छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया, जिसमें वंदना सिंह ने प्रदेश में टॉप किया है। परिणाम में कुल 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई है। इनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से 17 जून को पहला कार्गो विमान उड़ान भरेगा। पहले दिन एक कार्गो उड़ान होगी। 1 जुलाई से एयरपोर्ट से वाणिज्यिक और कार्गो सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। कार्गो सेवा शुरू होने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रदेश के साथ उत्तर भारत की आर्थिक को भी गति मिलेगी। प्रदेश के कई जिलों में सातवें बड़े मंगल के अवसर पर भक्त हनुमान जी के मंदिरों में सुबह से ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। अयोध्या में भी भक्त हनुमानगढ़ी सहित कई अन्य मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
9: अयोध्या में आज ज्येष्ठ माह के सातवें बड़े मंगल पर हनुमानगढ़ी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने बजरंग बली के दर्शन पूजन कर अपनी श्रद्धा निवेदित किया, साथ ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। शहर के कई स्थानों पर विशाल भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, जहां हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। भक्ति, सेवा और श्रद्धा के इस पावन माहौल से अयोध्या पूरी तरह राम और हनुमानमय नजर आ रही है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
6: भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
10: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल 17 जून को होने वाले श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। आज मैदान पर पहले अफगानिस्तान की टीम ने अभ्यास किया और इस समय भारतीय टीम पसीना बहा रही है। भारतीय टीम अभी श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है, जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
6: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा, पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
11: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ व FM 102।
12: कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं।
11: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ व FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हो चुके हैं। कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं आयुषी के स्वर में कुछ गीत।

सुगम संगीत में आपने सुने आयुषी के स्वर में कुछ गीत। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत गातवा चल।

कार्यक्रम गीत गाता चल में स्वीकार कीजिए आपकी आज की रेडियो पार्टनर प्रियंका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और अभिजीत की युगल आवाजों में फिल्म फुटपाथ से।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म फुटपाथ से। इस गीत के गायक कलाकार थे अलका याग्निक और अभिजीत। सुनना चाहा था आप सभी ने। रुद्रपुर शांति कॉलोनी से सुरेश कुमार, अजय कुमार, शिखा शर्मा, प्रियंका, शिवानी लता, राजू सैनी, राजेश कुमार और सभी साथी। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झाड़ावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी। इसी के साथ बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन, नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुंदी बाई बागरी। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राज खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल, संजीव व इनका समस्त परिवार। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाडकर, सरिता, प्रिंस एकांश ग्वांडकर। बदलापुर मुंबई से प्रणीता ग्वांडकर, सिद्धांत और अर्जुन ग्वांडकर। इसी के साथ आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली शैलेश ग्वांडकर, सुमित और कुमारी ध्वनि ग्वांडकर। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी बरेली उत्तर प्रदेश से बेरी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, कनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव। गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन और वेदिका सुतार। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा, नंदिनी रघुवंशी, लड्डू चौधरी, देविका चौधरी, स्वामी प्रज्ञा चौधरी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय,

उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, इसी के साथ दुबेहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। सरगुजा मेन पार्ट से प्रभा डोमिन, प्रमिला डोमिन, आशा, निशा और पूरा डोमिन परिवार। इसी के साथ तखतपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, राधिका देवी, पूजा देवी और मिश्री देवी साहू। मेन बाजार कुंडलीवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और फिरोज आलम। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, सूचा सिंह, विनोद पुरी और जयपाल यादव। श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म ये दिल आशिकाना से। इस गीत को सुनना चाहा है? आप सभी ने रेशमी नगर नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता। ग्राम करेली बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, नसरीन अंसारी, समान अंसारी, शमीम अंसारी और माहिनूर अंसारी। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, जाहिद अली। इसी के साथ मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। आप सभी के अनुरोध पर आपको सुनवा रहे हैं ये गीत हुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में फिल्म ये दिल आशिकाना से।

ये गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में फिल्म ये दिल आशिकाना से। सुनना चाहा था आप सभी ने। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजेश जाधव, प्रशांत राजेश जाधव, संचित प्रथमेश देशमुख, सर्वद देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना देशमुख। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन और सुरेखा सेन। नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। करणवीर हाउस बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कुमार जोड़ा, करणवीर सिंह करण, दीपेंद्र वीरेंद्र, कुलदीप, सिम्मू एकम, दमन और अभिजोत। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अली अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन, आशिक हुसैन और मुन्ना अंसारी। कासगंज से राधे श्याम शाक्य, ऋषभ जौली, मधु। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमेन डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल, अर्जुन और धीरज।

0: सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, शोएब खान, साइमा खान, मुस्तफ़ा खान, आफिया खान, शाहिद भाई और राहू। श्रोताओं का कार्यक्रम में बढ़ेंगे आगे, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं ये आवश्यक संदेश।
1: पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
0: कार्यक्रम गीत गाता चल में पुनः स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फिजा से। इस गीत को गाया है सुनिधि चौहान और करसन सरगाठिया ने। सुनना चाहा है आप सभी ने। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, शायना और निवान शर्मा।

जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेश वर्मा और उमेश मिथिलेश वर्मा। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो, पर्ल और विलिस डी कैस्ट्रो। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर और विजयलक्ष्मी सावनकर। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सूफियान, अनस, आयजा और अल्फिया। बासखेड़ा पीलीभीत से एके राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, कैलाश चंद्र राजपूत, भगवान दास, मदन लाल, रवि कुमार, नवनीत वर्मा, खुशी, संतोषी, प्रिया और चंचल कुमारी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित अहूजा। राजद्वार रोड मीठा कुआं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित, अभय, रिया और आरश। आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं ये गीत फिल्म फिजा से। इस गीत के गायक कलाकार हैं सुनिधि चौहान और करसन सरगाठिया।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म फिजा से। गायक कलाकार थे सुनिधि चौहान और करसन सरगाठिया। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं

फिल्म मैं हूं ना से। इस गीत को गाया है सोनू निगम, अल्ताफ सावरी और हाशिम साबरी ने। सुनना चाहा है आप सभी ने।

ग्राम चौहलदा बागपत से संजय नमन और अपार। कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवण अनीता और राहुल। जिला संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा, हरप्रीत कौर और

मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। इसी के साथ जामा मस्जिद रोड गोगा गावा से हाजी इशहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और आयूब शेरी। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान और मोहम्मद इसरार एवं नरगिस खातून। मुंगीजापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक और यश। संबलपुर कांकरे से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। इसी के साथ गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी।

डुमन राव बिहार से, डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। आप सभी के अनुरोध पर आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म मैं हूं ना सी। इस गीत को गाया है सोनू निगम, अल्ताफ साबरी और हाशिम साबरी ने।

0: ये था कार्यक्रम गीत गाता चल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर। 8:45 होने वाले हैं। कुछ क्षणों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: कीजिए जो है समाचार संध्या। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
2: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैप 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
3: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
4: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
5: भारत में मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
4: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
3: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
6: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहाँ से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहाँ से जो इलीगल ट्रेड होता था वो भी बंद हुआ है।
3: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
8: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interests as well as priorities of the global south. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development, climate finance, energy security, and inclusive economic growth. The summit also provides an opportunity for India to strengthen bilateral partnerships with major economies on the sidelines. Saira.
7: Well, thanks, Ankit, for those updates. Moving on, earlier in the day, Prime Minister Modi reached Evian on a two-day visit to attend the summit, which commenced yesterday. In a social media post after his arrival, the Prime Minister said that he looked forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts towards a more sustainable and prosperous planet. On the sidelines of the summit, the Prime Minister is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, UK Prime Minister Keir Starmer and President of UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later this evening, he will attend a gala dinner to be hosted by President Macron. A key engagement during the summit will be PM Modi's meeting tomorrow with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in the context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses, and advanced contingency plans for low-rainfall districts. Our correspondent has filed this report.
9: The Agriculture Minister gave a clear message that protecting farmers' interests is the government's top priority under the guidance of Prime Minister Narendra Modi. The meeting focused on ensuring that all necessary steps are taken well in advance to safeguard agriculture and farmers from any adverse weather conditions that may arise during the season. Mr. Chauhan gave clear directions that full preparations should be made in advance in those districts where there is a possibility of low rainfall or uneven rainfall. He said that such districts should be clearly identified and crop-wise contingency plans should be prepared in coordination with the state governments so that farmers can be provided immediate alternatives, advice and support that in any weather challenge situation. He strongly emphasized that special attention should be given to water conservation, moisture management, intercropping and alternative crop patterns. With Suparna Sekia, Rohan, Akashwani News, Delhi.
7: Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi, during which consensus was reached among six states on the long-pending Keshav multi-purpose dam project aimed at rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign an MOU for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Keshav project will be placed before the Union Cabinet for approval. The Supreme Court today sought response from the centre and states on a plea alleging the misuse of the Unique Identification Authority of India issued Aadhaar cards as proof of citizenship, domicile and residential address. The plea sought directions to restrict its use strictly for identity verification only. A bench of Chief Justice Suryakant and Justice V. Mohana issued notices to the centre and all states and union territories. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today announced that the historic Eastern Frontier Rifles or EFR will soon be revived, with more than 1,000 Gorkha youths to be recruited into the force. Addressing a public rally in Kursang under Darjeeling District to accord a grand welcome to the newly elected Chief Minister in the Darjeeling Hills, Mr. Adhikari paid tribute to the valour and sacrifices of Gorkha soldiers in defending the nation. He alleged that the previous state government led by Mamata Banerjee had frozen recruitment into the Eastern Frontier Rifles. The Chief Minister said that EFR, once regarded as a historic force, had been reduced to only two battalions during the previous regime. Mr. Adhikari further announced that recruitment to the state police force would soon be opened, creating employment opportunities for a large number of Gorkha youths. He added that at least 30% of seats in state recruitment would be reserved for women. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, the farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we will focus on Narendra Modi government's zero tolerance policy against terrorism.
10: Last year, on the intervening night of 6th and 7th of May, Operation Sindoor sent a clear message to the world that India does not seek war, but terrorism will not be tolerated. Operation Sindoor drew a new red line that if terrorism is a state policy, it will be met with a direct and forceful response. Targeting strongholds of Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and Hizbul Mujahideen, India successfully destroyed 9 major terrorist launch pads located in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. More than 100 terrorists terrorists were killed in this operation. There was widespread global support, with numerous global leaders extending their support to India. Talking to Akashvani News, Lieutenant General KJS Dhillon, retired, who was the 15th Corps commander in Jammu and Kashmir, praised the intelligence of government agencies during Operation Sindoor.
4: The intelligence which was gathered over the 15 days period, or the gap in between Pahalgam and terror strikes on 6th, 7th May 2025, intelligence was so accurate, acquired by various means, collated, synthesized and then acted upon.
10: Meanwhile, to secure its land borders spanning over 15,000 kilometers across 7 neighboring nations, India today conducts its effective foreign policy guided by the principle of nation first, while simultaneously advancing towards self-reliance in the defense sector. Talking to Akashvani News, Professor Anup Kumar Day from Silchar said open border was a huge issue in Assam, and Narendra Modi government has worked steadfastly to address this issue.
6: Pradhan Mantri Narendra Modi ji,
11: since the Prime Minister Narendra Modi took charge, he highlighted this biggest issue of Assam, and today fencing has been completed in most of the areas. Because of that, not only infiltration from there has been stopped, but also the illegal trade that used to happen from there has been cut off.
10: NDA government remains resolute and deeply committed to a policy of zero tolerance against terrorism. With Anand Kumar, Suparna Sekhya, Akashvani News, Delhi.
7: Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupinder Yadav today held a detailed review along with Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan on crop residue management. The meeting also discussed prevention of stubble burning in the context of air quality management in Delhi NCR and adjoining areas. In a social media post, the minister said that the review was focused on ways and means to efficiently and effectively manage and monitor and crop residue in a bid to combat air pollution in Delhi NCR. India and Japan have adopted the rules of implementation for the Joint Crediting Mechanism, or JCM, under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation on climate action, greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. According to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the rules of implementation were adopted on 8th of June this year, following the Memorandum of Cooperation signed between the two countries last year for the joint crediting mechanism. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the MOU reached between the US and Iran. US has not clarified whether Lebanon is part of the final agreement. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu yesterday described the agreement as US President Donald Trump's decision, noting that Israel had its own priorities and would remain in a buffer zone in Lebanon as long as necessary. India Meteorological Department IMD has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh for tomorrow. Similar weather conditions are expected over Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, coastal Andhra Pradesh, Orissa and Andaman and Nicobar Islands. The Met Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for tomorrow. The Fencing Association of India, FAI, has officially announced the Indian senior team for the 26th Senior Asian Fencing Championships 2026, which will be held in Delhi from 19th June to 24th of June. Marking a historic milestone, India will host the prestigious continental event for the first time. Over 30 countries and more than 400 top athletes will participate in this high-stakes competition. India's 24-member squad comprises 12 women and 12 men and will be led by CA Bhavani Devi, India's first and only fencing Olympian. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in a Group 1 clash at New Jersey in United States tonight. In another fixture, Norway will face Iraq in a Group 1 encounter at Boston Stadium. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gurkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. That's all in the news at 9. Good night.
12: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر ایویاں میں جی سیون سربراہ اجلاس میں شرکت کی وہ آج رات کینیڈا اور برطانیہ کے وزرائے اعظم نیز متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ باہمی میٹنگ بھی کریں گے وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجودہ خریف سیزن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلی سطح کی ایک میٹنگ کی مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1,000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا بھارت اور جاپان نے زہریلی گیس کے اخراج میں کمی کرنے اور پائیدار ترقیاتی اقدامات سے متعلق تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے پیرس معاہدے کے تحت مشترکہ کریڈٹنگ میکانزم کے لیے نفاذ کے ضابطے کو اپنایا ہے ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی آئی ایم ڈی نے شمالی بھارت میں کل کے لیے بجلی چمکنے اور تند ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کی پیشگوئی کی ہے اور فینسنگ یعنی شمشیر زنی کی سینئر ایشیائی چیمپئن شپ 2026 کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج فرانس کے شہر ایویاں میں جاری جی سیون سمٹ میں ایک اعلی سطح کے ورکنگ اجلاس میں حصہ لیا اس اجلاس کا موضوع تھا نئی شراکت داریاں اور بین الاقوامی استحکام کی تعمیر نو کا فروغ اس اجلاس میں جی سیون ملکوں کے لیڈر شراکت دار ممالک اور عالمی بینک اور افریقی ڈیولپمنٹ بینک کے سینئر نمائندے شریک ہوئے فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں کی جانب سے وزیر اعظم مودی اور شریک ہونے والے دیگر لیڈروں کے باقاعدہ خیر مقدم کے فوراً بعد یہ میٹنگ شروع ہوئی ایک گروپ فوٹوگراف کے بعد وزیر اعظم مودی نے سوشل میڈیا پر تصویر جاری کی اور لکھا کہ بھارت اور جی سیون ممالک عالمی خوشحالی پائیداریت اور انسانوں کی فلاح کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہمارے نمائندے انکت کمار جو وزیر اعظم کے جی سیون کے دورے کی رپورٹنگ کے لیے ان کے ہمراہ گئے ہوئے ہیں نے تازہ ترین صورتحال سے واقف کرانے کی غرض سے ایویاں سے یہ رپورٹ بھیجی ہے
13: اس سمیلن میں بھارت کی موجودگی پوری طرح رنیتک ہے کئی جی سات ارتھویوستھائیں جس طرح سے بدلتی بھو راجنیتک پرستھتیوں اور سپلائی چین کی چنوتیوں کا سامنا کر رہی ہیں وہ اب بھارت کو صرف ایک بڑے اپبھوکتا بازار کے روپ میں نہیں دیکھتی ہیں آج کے پریپریکس میں نئی دلی گلوبل مینوفیکچرنگ مہتوپورن کھنیجوں اور تکنیکی نواچار کے لیے ایک بے حد بھروسے مند اور آدھاربھوت بھاگیدار کے روپ میں ابھرا ہے بھارت کے درشٹیکون سے یہ جی سات شکھر سمیلن اپنے راشٹریہ ہتوں اور گلوبل ساؤتھ کی پراتھمکتاؤں کو آگے بڑھانے کا ایک اہم اوسر ہے نئی دلی کا مکھیہ زور ویاپار نواچار اور مضبوط سپلائی چین میں گہرے سہیوگ پر ہے اور یہ ایسے سمے میں ہو رہا ہے جب دنیا سکریہ روپ سے وشوسنیہ آرتھک بھاگیداروں کی تلاش کر رہی ہے اردو خبروں کے لیے ایویا فرانس سے انکت کمار
12: اس سے قبل آج دن میں وزیر اعظم کل شروع ہوئے سمٹ میں شرکت کے لیے دو روزہ دورے پر ایویاں پہنچے اپنی آمد کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے لکھا کہ وہ اہم عالمی معاملات پر دنیا کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت اور تبادلہ خیال کے خواہش مند ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ایک زیادہ پائیدار اور خوشحال قرہ ارض کی جانب اجتماعی کوششوں میں پیش رفت کے تئیں پرعزم رہے گا سمٹ سے الگ وزیر اعظم कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी, इंग्लैंड के वजीर आजम केयर स्टामर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। आज शाम देर गए वो सदर मैखां की जानिब से मुनक्किदा एक शानदार इशाइये में शिरकत करेंगे। समिट के दौरान एक और अहम बात वजीर आजम मोदी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल होने वाली मुलाकात है। दोनों लीडरों के मुतालिक तवक्को है कि वो कई शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल करेंगे, साथ ही बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी सतह पर रूनुमा होने वाले अहम वाक़ियात पर तबादला ख्याल करेंगे। फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर वजीर आजम मोदी कल शाम पेरिस पहुंचेंगे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज फ्रांस के नीस मैसेना में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का आगाज किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि फ्रांस के बावकार खुर्दा कारोबारी मकामात में से एक में भारत के आलमी दर्जे के डिजिटल अदायगी के प्लेटफॉर्म को लाना यूपीआई की आलमी पैमाने पर तौसी में एक और नुमाया कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि यह पहल बड़े पैमाने पर भरोसे, बिला रुकावट और इंटर ऑपरेबल डिजिटल हल फराहम करने की भारत की सलाहियत का मजहर है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि यह आगाज भारत और फ्रांस के दरमियान इकतसादी और तकनीकी ताल्लुकात को मुस्तहकम करता है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान जामे शराकत दारी की बढ़ती हुई गहराई और उमंगों की अक्कासी होती है। बड़े सनअती मुल्कों के ग्रुप ऑफ सेवन समिट के मौके पर अमरीकी इत्तेहादियों ने आज रूस यूक्रेन तनाजे के चार साल से ज्यादा अरसे के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन की हिमायत के एजेंडे के आगे बढ़ाने के लिए काम किया। मेजबान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखां ने कहा कि वो ये ख्वाहिश करते हैं कि ट्रंप को तरगीब दी जाती रहे कि वो यूक्रेन की हिमायत और रूस पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला जारी रखें ताकि किसी अमन माहदे तक रसाई में मदद मिले। ट्रंप के तहत अमरीका ने यूक्रेन के लिए इमदाद में कटौती की है। फ्रांस और उसके यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक अब कीफ को फौजी और माली इमदाद फराहम करने वाले बड़े ममालिक बन गए हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी आज सुबह वर्किंग इजलास में G7 लीडरों के साथ शिरकत की, लेकिन मुज़ाकरात जल्द ही खत्म हो गए क्योंकि लीडरान सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट के लिए जमा हुए थे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में आला सतह की ज़राअत से मुतालिक एक मीटिंग में शिरकत की और 2026 की खरीफ की फसल के लिए मुल्क भर में तैयारियों का जायजा लिया। वज़ारत ज़राअत ने एक बयान में कहा कि एलनीनो की मुमकिन सूरत हाल के तनाजुर में वजीर मौसूफ ने कपास की पैदावार में इजाफे, दालों में खुद किफालत को हासिल करने और कम बारिश वाले जिलों में हंगामी नौइयत के मनसूबे तैयार रखने पर खसूसी जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
14: ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मीटिंग में सीजन के दौरान नामवाफिक मौसमी सूरत हाल से ज़राअत और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी तौर पर तमाम ज़रूरी इकदामात किए जाने को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। जनाब चौहान ने हिदायत दी है कि उनाजला में जहां कम बारिश या गैर मुसावी बारिश होने का इम्कान है, पेशगी तौर पर तमाम इकदामात किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे अजला की शनाख्त की जानी चाहिए और रियासतों के साथ मिलकर फसल के हिसाब से हंगामी मंसूबे तैयार किए जाने चाहिए ताकि मौसमी चैलेंज की सूरत में फौरी तौर पर किसानों को मुतबादिल आलात और ताउन फराहम की जा सके। नई दिल्ली से सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
12: मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभिंदु अधिकारी ने आज ऐलान किया है कि तारीखी ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1000 से ज्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियांग में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने मुल्क के दिफा में गोरखा फौजियों के जोश व जज्बे और कुर्बानियों के तई खराज अकीदत पेश किया। जनाब अधिकारी ने मजीद ऐलान किया कि रियासती पुलिस फोर्स में जल्द ही भर्ती शुरू की जाएगी, जिससे गोरखा जवानों को बड़ी तादाद में रोजगार के मौके मिलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती भर्तियों में कम से कम 30% सीटें ख्वातीन के लिए रिजर्व होंगी। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम दहशतगर्दी के खिलाफ नरेंद्र मोदी हुकूमत की कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
15: पिछले बरस 6 और 7 मई की दरमियानी शब को ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को एक वाजे पैगाम दिया कि भारत जंग नहीं चाहता लेकिन दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई सुर्ख लाइन खींच दी कि अगर दहशतगर्दी किसी की स्टेट पॉलिसी है तो उसे एक बराह रास्त और कुव्वत से भरपूर रद्द अमल का सामना करना होगा। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में वाकई दहशतगर्दों के 9 बड़े लॉन्च पैड्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। इधर 7 पड़ोसी मुल्कों तक फैली 15,000 किलोमीटर से ज्यादा अपनी जमीनी सरहदों के तहफ्फुज़ के लिए आज भारत मुल्क को अवलियत देने के उसूल की रहनुमाई में अपनी मुअस्सर खारजा पॉलिसी पर अमल कर रहा है। साथ ही दिफा के शोबे में खुद कफील होने की जानिब पेशरफ्त कर रहा है। आकाशवाणी की खबरों के शोबे से बात करते हुए सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने कहा कि आसाम में खुली सरहद एक बड़ा मसला था और नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस मामले से निपटने के लिए तेजी के साथ काम किया है। एनडीए हुकूमत दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तई पूरी तरह पुरअज्म है। नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
12: ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने पेरिस मुआहदे की दफा 6.2 के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मैकेनिज्म JC

0: is not just a routine state, it is the cradle of Indian national.
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज व एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्यिक पत्रिका। इसके अंतर्गत सबसे पहले आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रणव शास्त्री से ये वार्ता। विषय है हिंदी कविता में वेदना के स्वर।
2: संसार में सभ्य और असभ्य सभी देशों के प्राणी अपने भावों को व्यक्त करना चाहते हैं। प्राणी मात्र जिस माध्यम से अपने भावों को प्रकट करता है उसे भाषा की संज्ञा दी गई है। जिस देश के साहित्य का जिस भाषा में सृजन होता है उसे साहित्यिक भाषा का नाम दिया जाता है। जिस माध्यम से जन साधारण अपने पारस्परिक विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे जनभाषा कहा जाता है। हिंदी भारत की जनभाषा भी है तथा साहित्य प्रणयन का सशक्त आधार भी। हिंदी कविता का फलक बड़ा मोरपंखी है। कभी इसमें पर्व त्योहार की झांकी मिलती है तो कभी प्रकृति का मनोहारी चित्रण, कभी यह समाज को सुधारती हुई दिखती है तो कभी समाज का महिमामंडन करती प्रतीत होती है। हिंदी कविता में कहीं आनंद की गूंज सुनाई पड़ती है तो कहीं वेदना के स्वर। उल्लास और वेदना के इन्हीं मधुर झोंकों का नाम है साहित्य। हिंदी कविता अपने आदिकाल से ही वेदना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनती रही है। इसकी जननी संस्कृत माता के गर्भ में जरा झांकें तो आदि काव्य रामायण का जन्म ही वेदना से होता हुआ पाएंगे। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि ने जब क्रौंच वध होते देखा तो उनके हृदय की वेदना ने शब्द के रूप में परिणति पाई और सहसा उनके मुख से फूट पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठा तुम मदने शाश्वत समा, यत क्रौंच मिथुनादेकम मदधि काम मोहिता। भक्तिकाल में तुलसी का काव्य दया ममता करुणा वेदना की साक्षात प्रतीति कराता है। रामचरितमानस के वनवास प्रसंग, जटायु वध, सीता हरण सदृश कई प्रसंग बड़े कारुणिक हैं। सीता हरण के पश्चात राम और लक्ष्मण वन में व्याकुल होकर ही पूछते फिरते हैं

आई, मीराबाई की विरह वेदना तथा कृष्ण प्रेम तो विश्व विश्रुत है ही, उनकी आत्मानुभूत वेदना की अभिव्यक्ति कितनी स्वाभाविक है। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होय। एक अन्य चित्र देखें, सखी मेरी नींद नसानी हो, पियो को पंथ निहारत सिगरी, रेण बिहानी हो, अंतर वेदन विरह की वह पीर न जानी हो, मीरा व्याकुल विरहणी सुदबुद बिसरानी हो। मीराबाई का प्रस्तुत दोहा तो वेदना और शिक्षा का जीवंत दृष्टांत है।

तो कवि हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध कविता आत्म परिचय वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक दीवाना। सुमित्रानंदन पंत ने तो यह घोषणा ही कर दी कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। आइए तुलसीदास की अमर कृति रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा के समय राम के विलाप के दृश्य को निहारें। ऊहा

0: पाता। सारतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी कविता वेदना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। कविता है तो दुख है, दुख है तो कविता फूटेगी ही।
1: कार्यक्रम साहित्यिक पत्रिका में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं आशा बिसारिया से उनका काव्य पाठ।
2: मेरी प्रथम रचना चरखे की खादी पर देशभक्ति का रंग चढ़ाया है। चरखे की खादी पर

बेटों का नया दौर अब आया है, देश पे मर मिटने वालों का नया दौर अब आया है, कभी नहीं मिटने देंगे हम अपनी

भारत की मिट्टी का जो छोटा टुकड़ा हमें भाता है, जिसके नीचे लिखी बालकों ने बलिदानी गाथा है। भारत की मिट्टी का जो छोटा टुकड़ा हमें भाता है, जिसके नीचे लिखी बालकों ने बलिदानी गाथा है। दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।

आतरम आओ मिलकर साथ में बोले वंदे मातरम। प्रस्तुत है एक और देश गीत, ये खुशगवार मौसम, ये खुशगवार मौसम सबको बुला रहा है, जागो ए देशवासियों दिन खास आ रहा है। ये खुशगवार मौसम सबको बुला रहा है, जागो ए देशवासियों दिन खास आ रहा है, जागो ए देशवासियों दिन खास।

जो का मलाइका आके सबको जगा रहा है। जागो ए देशवासियों, दिन खा

रंग श्वेत जग में शांति का संदेश ला रहा है, जागो ए देशवासियों, दिन खास आ रहा है। जागो ए देशवासियों, दिन खास आ रहा है। सीमा करें सुरक्षित,

मुश्किल सबका सुकून से रहना, इनको नमन करूं मैं, इनको नमन करूं मैं, मेरे दिल में आ रहा है जागो ए देशवासियों, दिन खास आ रहा है, जागो ए देशवासियों, दिन खास आ

जागो ए देशवासियों, दिन खास आ रहा है। जागो ए देशवासियों, दिन खास आ रहा है। ये खुशगवार मौसम सबको बुला रहा है। जागो ए देशवासियों, दिन खास आ रहा है। ये खुशगवार मौसम सबको बुला रहा है। जागो ए देशवासियों, दिन खास आ रहा है। और जल हम सबका जीवन है, और जल के महत्व पर एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ।

0: इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कहानी संस्कार में ये सुनते हैं अंजलि वर्मा को।
1: सुखिया पंडित ने अपना सारा जीवन पंडिताई में ही बिता दिया। ज्ञान की कोई कमी ना थी, माँ सरस्वती की उन पर बड़ी कृपा थी। लेकिन पता नहीं क्या बात थी, लक्ष्मी उनसे कोसों दूर रहती थी। इसी गरीबी के चलते सुखिया पंडित ने अपनी खोली नाले के पास ही बना ली थी। कथापत्री वाचन कर जो कुछ भी मिल जाता उसी में गुजारा करना उनका धर्म था। भोर होते ही पंडिताइन जी की खटपट शुरू। अरे पंडित जी, भोर हो गई है, जल्दी उठो, मैं कब से तुम्हें उठा रही हूँ। एक तुम हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। पंडिताइन पंडित जी को घर बुहारते बुहारते टिकटिकाए जा रही थी। अरे पंडित जी, जल्दी करो, तुम्हारा तो सारा काम ही आराम आराम से होता है, लेट लतीफी तो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी है। अभी नहाना धोना है, पूजा पाठ करना है। तुम्हारी इसी लेट लतीफी के चलते मनसुख पंडित आज फिर बाजी मार ले जाएगा। देखो मनसुख के घर में कैसी खुशियां छाई रहती हैं। एक हम लोग हैं कि हंसी तो हमारे घर से रास्ता ही भूल गई है। अरे भगवान, उठ तो गया हूँ, काहे को अपना खून जला रही हो। तुम्हारे मुख से वो भगवत भजन बहुत अच्छे लगते हैं, तुम कुछ भजन भजन किया करो। एक तुम हो कि अपनी सारी ताकत बर्तनों की खटखट और अपनी चकचक में जाया कर देती हो। और देखो रही मनसुख की बात, वो तो सब अपने अपने भाग्य की बात है, अपने माथे पर लिखे को कौन मिटा पाया है। इसके बारे में तो वो नीली छतरी वाला ही जाने, जिस विधि वो रखेगा उसी विधि हमें रहना है। हमें तो बस अपना कर्म ही करना है, पंडित जी ने मुस्कुराकर पंडिताइन को समझाया। तुम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि आज किसी बड़े घर में यजमानी करने को मिल जाए, तो बस अपना तो काम ही बन जाए। वो तो मैं रोज करती हूँ, पर कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे निर्धनता ने हमारे घर से पहचान कर ली है। कुछ समझ में नहीं आता, एक निर्धनता का दंश, दूसरे बे औलाद। काश हमारा भी कोई बालक होता। जब मैं आसपास के बच्चों को हंसते खेलते किलकारी मारते देखती हूँ तो मेरा मन कितना व्याकुल हो जाता है, ये तुम क्या जानो। नहीं नहीं, मैं तेरे मन की सारी बात समझता हूँ, पर क्या कर सकता हूँ, सब ईश्वर के हाथ में है, जैसी उसकी मर्जी। सुन, ज़्यादा परेशान नहीं होते। और हाँ देख, जब तक मैं नहा धोकर आता हूँ तो पूजा की सारी तैयारी रखना ताकि विलम्ब ना हो। अब तो तू खुश? ऐसा सुन पंडिताइन के मुख पर गहरा सुकून छा गया। लच्छो भिखारिन थोड़ी ही दूर पर गोनी बिछाकर सड़क किनारे बैठती तो अक्सर पंडित पंडिताइन का द्वंद युद्ध उसके कानों में पड़ता तो वो मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाती। भोर होते ही पंडित जी यजमानी को निकल पड़े। लच्छो भी अपनी दिनचर्या से गोनी बिछाकर बैठ गई। सूनी आंखों से सड़क को देखती रहती, काश कोई पथिक आए, मुझे भिक्षा में कुछ दे जाए। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं भी कल्लू भिखारी जैसी बड़ी भिखारिन बनना चाहती हूँ। कम से कम 8-10 भिखारी तो मेरे अधीन होने ही चाहिए। बड़ा घमंड है उस मुए को, मुझे तो मंदिर के पास फटकने ही नहीं देता, जैसे सारी जमीन का पट्टा अपने नाम लिखा लिया हो। अभी तो लच्छो सोच ही रही थी तभी एक लंबी सी सफेद कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला, अत्याधुनिक पाश्चात्य सभ्यता में रची बसी महिला एक हाथ में बैग को थामे कार से बाहर। धन का मद उसके चेहरे पर टप टप टपक रहा था। लेकिन ये क्या, बैग को नाले की तरफ उछाला, पर बैग भी नाले में ना गिरा, गिरा तो पंडित जी के दरवाजे पर। बैग उछाल कर भद्र महिला के मुख पर गहरा सुकून उभर आया। मुख पर ऐसी आभा फैल गई जैसे किसी बड़े शुभ कार्य को अंजाम दे दिया हो। फिर पर्स में से उसी शालीनता से 100 का नोट लच्छो की तरफ बढ़ाया। इतना बड़ा नोट, वो भी भीख में? अरे लच्छो, आज तो तेरी लॉटरी ही निकल आई। अरे लच्छो, क्या सोच रही है, जा बैग में तो देख क्या माल मसाला है। अभी लच्छो बैग की तरफ बढ़ी ही थी पर ये क्या, पंडित जी भी आधम के। अरे ओ पंडिताइन, जरा एक लोटा जल तो दे, बहुत गर्मी है, प्यास के मारे हलक सूखा जा रहा है। जल थमाते हुए पंडिताइन ने प्रश्न दाग दिया, कैसा रहा आज का दिन? अरे भगवान, बताता हूँ, तनिक विश्राम तो करने दो। अरे सुन, बाहर एक बैग पड़ा है, कहीं तूने तो नहीं फेंक दिया उसे? मैं क्यों फेंकूंगी भला, आप भी ना जाने क्या क्या बोलते रहते हो। चलो देखें तो सही इस बैग में क्या पड़ा हुआ है। पंडिताइन ने पंडित जी को उकसाया। अरे ये क्या, शिशु, वो भी नवजात। हे भगवान, कैसे पत्थर दिल लोग हैं इस दुनिया में, सुखिया पंडित के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। कैसी बातें कर रहे हो आप, ये तो भगवान का प्रसाद है हमारे लिए। मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, हम बे औलाद को औलाद दो, इसलिए भगवान ने प्रसन्न होकर इसे हमारे पास भेजा है। चलो इसे घर ले चलते हैं। बस अब क्या था, जो संतानहीन थे वो माता पिता बन गए। बच्चों के घर में होने से घर का वातावरण कैसे बदल जाता है कि बस कुछ पूछो मत। जब घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं तो गुंगे भी बोल पड़ते हैं। समय कैसे बीत रहा था पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक पंडिताइन चिंतित, अरे पंडित जी जरा देखो तो, अपना छोटू इतना समय हो गया बैठता तक नहीं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है, कोई परेशानी जरूर है। अरे तू काहे को चिंता कर रही है, मैं हूं ना, हम आज ही छोटू को डॉक्टर के पास ले चलेंगे। हाँ पंडित जी, अब देर करना सही नहीं है। डॉक्टर ने बच्चे को एग्जामिन किया, थोड़े चिंतित दिखाई दिए। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है, मेरा बच्चा बैठ तो पाएगा ना? देखिए हिम्मत से काम लीजिए, सच तो ये है कि आपका बेटा अब कभी उठ बैठ चल फिर नहीं पाएगा। इसकी रीढ़ की हड्डी में बड़ी गहरी चोट लगी है, फिर भी ईश्वर पर भरोसा रखो, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। पंडित पंडिताइन एकदम सन्न अवाक एक दूसरे को देखने लगे, खामोश बच्चे को घर ले आए। घर आते ही पंडिताइन तो एकदम फट ही पड़ी, हमारी तो किस्मत ही खराब है, ये क्या मुसीबत हमारे गले पड़ गई, पहले ही क्या कुछ कम परेशानियां थीं, अब लो और झेलो। मैं तो कहती हूँ इस बला को जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ाओ, अभी भी कोई खास देर नहीं हुई है। हाँ पंडिताइन तू ठीक ही कहती है, मैं ऐसा करता हूँ, रात्रि होने पर इसे पड़ोस वाले घूरे पर छोड़ आता हूँ, फिर ये बालक और इसकी किस्मत। पर जरा ध्यान से, किसी को कानो कान भनक ना लगे। अगले दिन सुबह सुबह जब लच्छो भिखारिन अपनी खोली से बाहर निकल घूरे के पास पहुंची, बच्चे के रोने की आवाज सुनकर चौंक गई। ये रोने की आवाज कहाँ से? हे भगवान, ये बच्चा तो पंडिताइन का लगे है, क्या ये भी? पर मुझे क्या, मुझे तो इससे फायदा ही है, मुझे बच्चा मिला, कल मेरा सहारा बनेगा, हम दोनों साथ में भीख मांगेंगे तो और भी अच्छा होगा। वैसे भी बच्चे वाली भिखारिन पर लोग जल्दी दया करते हैं, बड़ी कृपा है भगवान तेरी जो मुझे ये बच्चा मिल गया, अब मैं भी उस कलुए से बड़ी भिखारिन बन जाऊंगी। समय की रफ्तार बढ़ती चली गई, कल जो छोटा शिशु था अब वो घसीटा भिखारी बन गया। घसीट कर चलने से बच्चे का नाम घसीटा पड़ गया। अब घसीटा भी मंदिर के पास वाले चौराहे पर बैठने लगा। लच्छो थोड़ी दूर बैठ घसीटा पर बराबर नजर रखती थी, घसीटा भी अच्छी खासी भीख पा जाता था। अचानक एक लंबी सी सफेद कार घसीटा के पास रुकी, कार का दरवाजा खुला, महिला बाहर निकली, 100 का नोट घसीटा की तरफ बढ़ाया। इतनी बड़ी भीख, घसीटा को तो महिला देवी स्वरूप लगने लगी। लच्छो ने उस महिला को देखा, पहचानी सी जान पड़ी, इसे तो कहीं देखा है। अरे यही है वो औरत जिसने इस बच्चे को नाले में फेंक दिया था, वो भी कितनी कठोरता से। क्या इसके सीने में माँ का दिल नहीं है? इस निर्लज्ज को तो ये भी नहीं पता जिसे ये भीख दे रही है वो इसी की कोख का जना है। लच्छो मन ही मन बुदबुदाती है, हे ईश्वर, समाज का इतना गंदा रूप देखा नहीं जाता, एक वो धनी महिला, दूसरे सुखिया पंडित, जैसे कृत्य करने वाले सफेद पोश लोग, दूसरी में लच्छो भिखारिन, इनसे तो हम भिखारी ही अच्छे हैं, भगवान तेरी माया भी निराली है। ऐसा सोचते सोचते लच्छो आसमान को निहारने लगी।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्यिक पत्रिका। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।
2: Thank you. क्यों करते मुझको बर्बाद, बस इतना तो रखना याद, मेरे बिना संभव न जीवन, सर्व सुलभ मैं हूँ अमूल धन।
3: जी हाँ, पानी है जीवन की आस, जल संरक्षण का करो प्रयास। हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
4: सामने है इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
5: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
4: ये प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथीन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध,
3: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
4: जागिए और जगाइए,
5: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए,
3: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
4: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
6: से नो टू प्लास्टिक।
0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही क्षणों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी लखनऊ से रिले किया जाएगा। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण।
2: नमस्कार श्रोताओं, खेल दर्पण का आज का अंक लेकर मैं रमनप्रीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम दो भागों में है। पहले भाग में फीफा वर्ल्ड कप 2026 और दूसरे भाग में भारत के लोकप्रिय खेल कुश्ती पर भेंटवार्ता को लिया गया है।

मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रमनप्रीत सिंह, और आज अगले कुछ मिनटों में अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें थम जाती हैं और पूरी दुनिया एक गेंद के पीछे दीवानी हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की।

में उत्साह है, मैदान तैयार है और इस वक्त उत्तरी अमेरिका के तीन खूबसूरत देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में फुटबॉल का ऐसा बुखार चढ़ा है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। चाहे आप मेसी के जादुई ड्रिबल्स के दीवाने हों, रोनाल्डो की बुलेट जैसी फ्री किक के मुरीद हों या एम्बापे की बिजली जैसी रफ्तार के फैन, आज का यह खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम न सिर्फ इस साल चल रहे वर्ल्ड कप के रोमांच पर बात करेंगे बल्कि उस इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे जिसने इस खेल को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बना दिया।

तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चलते हैं सीधे मैदान की ओर।

दोस्तों, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह एक उत्सव है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्यों? चलिए आपको इसके पीछे के दिलचस्प आंकड़े बताता हूँ। सबसे पहली बात, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप की मेजबानी तीन देश मिलकर कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। कड़ाके की ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप तक 16 अलग अलग शहरों के शानदार स्टेडियमों में यह जंग चल रही है। और बात सिर्फ तीन देशों की नहीं है, इस बार फीफा ने फुटबॉल प्रेमियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब तक हम और आप सिर्फ 32 टीमों को वर्ल्ड कप में भिड़ते देखते थे, लेकिन इस बार दिल थाम लीजिए, पूरे 48 देश इस सुनहरी ट्रॉफी के लिए जी जान लगा रहे हैं। 48 टीमें, 12 ग्रुप्स और कुल मिलाकर 104 मुकाबले, यानी एक पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ शुद्ध फुटबॉल का रोमांच। इस नए फॉर्मेट ने टूर्नामेंट को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। ग्रुप स्टेज से टॉप दो टीमें तो आगे जाएंगी ही, साथ ही तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें भी नॉकआउट स्टेज यानी राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाएंगी। इसका मतलब है कि हर एक गोल, हर एक सेकंड और हर एक कॉर्नर किक किसी भी टीम की किस्मत बदल सकती है। कोई भी टीम खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती।

लेकिन दोस्तों आज हम 48 टीमों के इस महाकुंभ को देख रहे हैं, तो जरा सोचिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1930 में। जी हाँ, आज से करीब 96 साल पहले उरुग्वे की धरती पर पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। उस समय ना तो आज जैसी सुख सुविधाएं थी और न ही रंगीन टेलीविजन। सिर्फ 13 टीमों ने उसमें हिस्सा लिया था और मेजबान उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर पहला खिताब अपने नाम किया था। वहां से शुरू हुआ यह सफर हर 4 साल में और बड़ा और बेहतर होता गया। इस सफर ने हमें ऐसे महानायक दिए जिन्हें दुनिया कभी भी भुला नहीं सकती। पेले, ब्राजील के वो जादुई खिलाड़ी जिन्होंने अपनी कलात्मक फुटबॉल से 3 बार 1958, 1962 और 1970 में अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाया, उन्हें आज भी फुटबॉल का राजा कहा जाता है। डियोगो माराडोना, साल 1986 का वो वर्ल्ड कप, इंग्लैंड के खिलाफ वो हैंड ऑफ गॉड गोल और उसके ठीक बाद 5 खिलाड़ियों को छकाते हुए किया गया सेंचुरी का सर्वश्रेष्ठ गोल। माराडोना ने फुटबॉल को एक कला से ऊपर उठाकर जुनून बना दिया। लियोनेल मेसी, और भला हम साल 2022 के कतर वर्ल्ड कप के उस ऐतिहासिक फाइनल को कैसे भूल सकते हैं। लियोनेल मेसी का वो आंसू भरा चेहरा और जब उन्होंने आखिरकार उस सुनहरी ट्रॉफी को चूमा और अपने देश अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाया, वह आधुनिक फुटबॉल का सबसे भावुक पल था। फुटबॉल का इतिहास ऐसी ही कहानियों, आंसुओं, जीत और हार के रोमांच से भरा पड़ा है। चलिए इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर वापस आते हैं वर्तमान में। इस वक्त जो वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जा रहा है, वहां पहले ही हफ्ते में धमाके शुरू हो चुके हैं। बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट रहे हैं और जिन्हें कमजोर समझा जा रहा था वो दिग्गज टीमों की आंखों में आंखें डालकर खेल रही हैं। शुरुआती दौर के मुकाबलों पर नजर डालें तो कई रोमांचक नतीजे देखने को मिले हैं। जहां जर्मनी ने कुराकाओ के खिलाफ 7-1 की प्रचंड जीत दर्ज की है और अपने इरादे साफ कर दिए हैं, वहीं स्वीडन ने भी ट्यूनिशिया को 5-1 से हराकर एक तरफा अंदाज में अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन हर मैच एक जैसा नहीं है। कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 पर छूटा। ब्राजील जैसी 5 बार चैंपियन रही टीम को मोरक्को ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया और नीदरलैंड तथा जापान के बीच हुआ मुकाबला भी 2-2 की रोमांचक टक्कर के बाद बराबरी पर खत्म हुआ। यह दिखाता है कि इस बार मैदान पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ टूर्नामेंट और भी ज्यादा कड़ा होता जा रहा है। फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्पेन जैसी दिग्गज टीमें अब अपने अगले मुकाबलों के लिए कमर कस चुकी हैं। फुटबॉल पंडितों का मानना है कि इस बार का चैंपियन वही बनेगा जो 19 जुलाई को न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले ग्रैंड फिनाले तक अपने धैर्य को काबू में रखेगा।

0: for Africa.
1: अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम भारत में बैठकर इस महामुकाबले का मजा कैसे लें, क्योंकि मैच तो आधी रात को या सुबह सुबह आते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय फैंस के लिए फुटबॉल का यह बुखार अब पूरी तरह से मुफ्त होने जा रहा है। जी हाँ, भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीडी स्पोर्ट्स पर इस वर्ल्ड कप के कई चुनिंदा और बड़े मुकाबले, खासकर नॉकआउट और बड़े मैचेस बिल्कुल फ्री प्रसारित किए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं भी है, तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस अपना टेलीविजन ऑन कीजिए और डीडी फ्री डिश लगवा लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े खेल के गवाह बनिए।

भारत में भले ही हमारी क्रिकेट टीम दुनिया पर राज करती हो, लेकिन जब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात आती है तो कोलकाता के सॉल्ट लेक से लेकर केरल के मल्लपुरम तक और मुंबई की गलियों से लेकर दिल्ली के पब्स तक पूरा देश फुटबॉल के रंग में रंग जाता है। चाय की टपरियों पर इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि इस बार ट्रॉफी अर्जेंटीना ले जाएगी या फ्रांस जीतेगा या फिर ब्राजील छठी बार बाजी मारेगा।

घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे इस सफर का समय अब समाप्त होने वाला है, लेकिन फुटबॉल का यह सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। अगले कुछ हफ्तों तक नींदें उड़ने वाली हैं, दफ्तरों और कॉलेजों में सिर्फ गो गो गो गोल का शोर सुनाई देने वाला है।

0: आइए कार्यक्रम के अगले भाग में सुनते हैं कुश्ती पर भेंटवार्ता, जिसमें हमारे मेहमान हैं ऋषि श्वेत सिंह, जो कुश्ती कोच एवं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के सदस्य हैं, और भेंट करता है राघवेंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं कुश्ती की तो गांव के वो अखाड़े याद आ जाते हैं जिनमें पहलवान अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर अपने दांव को सामने वाले पहलवान पर आजमाते थे और आज भी आजमाते हैं। तो किस तरह से जब हम इतिहास को देखते हैं तो मल्ल युद्ध नाम से इसे जाना जाता था, तो मल्ल युद्ध से कुश्ती और कुश्ती से मैट वाली कुश्ती का एक लंबा सफर तय किया है इस खेल ने, इस विधा ने। तो कुश्ती के विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक ऋषि श्वेत सिंह जी। ऋषि श्वेत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: ऋषि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने कोचिंग करियर की शुरुआत कैसे की, किस बात ने आपको एक रेसलर से कोच बनने के लिए प्रेरित किया?
2: पहले तो मैं बता देना चाहूँ कि मैं लगभग 30 साल हो गए मुझे कुश्ती करते हुए। मैं 10-11 साल की उम्र से मैंने कुश्ती शुरू की थी और कुश्ती का रुझान मेरा इसलिए उसकी तरफ गया क्योंकि मेरे पिताजी भी वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक रहे तो मेरा अखाड़े से बचपन से मेरा और मैट की कुश्ती से मेरा नाता रहा और मैंने फिर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में अपना कुश्ती प्रशिक्षण किया। उसके बाद मैं लखनऊ आया और लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम से भी मैं बतौर खिलाड़ी और कुश्ती प्रशिक्षक के रूप में भी जुड़ा हुआ हूँ वर्तमान में। और मैं लगभग 15-16 साल से कुश्ती प्रशिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश कुश्ती खेल निदेशालय के अंतर्गत अंशकालिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है और भारतीय खेल प्राधिकरण में भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनारस में अखाड़े पे मेरी पोस्टिंग रही है और इस वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनकी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करता हूँ प्रशिक्षक के रूप में।
1: ऋषि जी, आपने जैसा कि बताया कि आपके पिताजी भी कुश्ती प्रशिक्षक थे तो आपने बहुत बड़ा समय, एक बड़ा लंबा समय आपने देखा हुआ है और इस क्षेत्र में जुड़े रहे हैं आप, तो बचपन में पिताजी को भी आप देखते रहे होंगे और आज खुद एक कोच के तौर पर हैं, तो तब से लेके अब तक आप इस खेल में क्या अंतर पाते हैं, खिलाड़ियों के मनोदशा में या परिस्थितियों में क्या अंतर पाते हैं?
2: देखिए, मैंने जब बचपन में कुश्ती देखी थी और कुश्ती खेलता था पिताजी के साथ अखाड़े में जाना, मैट पर जाना, तो वर्तमान समय में और उस समय के बीच में अंतर है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत फर्क आया हुआ है। पहले जो कुश्तियां थी हमारे पास मैट तो थे मगर हमारे पास जैसे आज के समय में वीडियो एनालिसिस है या ऑनलाइन इंटरनेट पे या सोशल मीडिया के थ्रू हम किसी भी चीज को बहुत आसानी से देख लेते हैं, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उस समय ये चीजें नहीं थी, उस समय आपके पास सीमित संसाधन थे और खेल की जो सुविधाएं थी वो भी बहुत सीमित थी। हर जगह मैट नहीं होते थे, ज्यादातर हमारे पहलवान मिट्टी के अखाड़ों में ही प्रैक्टिस किया करते थे। मगर आज वर्तमान के समय में हमें लगता है कि मिट्टी के अखाड़े के साथ साथ हमारे पास हर अखाड़े के पास लगभग मैट भी है और जो हमारे यहाँ एक पारंपरिक कुश्ती की मानसिकता थी लोगों ने अब उससे बाहर आकर आधुनिक ओलंपिक कुश्ती की तरफ भी रुझान किया है जिससे हमारी देश की कुश्ती दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर होती जा रही है।
1: ऋषि जी, आपकी कोचिंग फिलॉसफी क्या है, आप एक अच्छे पहलवान में किन बुनियादी गुणों को देखते हैं?
2: देखिए, कोच के लिए फिलॉसफी

0: डिसिप्लिन का मतलब होता है कि सबसे पहला हमारा जो होता है वो अनुशासन
1: जी।
0: किसी भी खेल में आपको अनुशासन बहुत जरूरी है
1: जी।
0: और ये चीज सिर्फ खिलाड़ी के ऊपर नहीं लागू होती, इस चीज का सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो प्रशिक्षक के रूप में ही शुरू होता है। अगर प्रशिक्षक अनुशासित है, नियमित है और अपने काम के प्रति समर्पित है तो उसका खिलाड़ी उस चीज को देख के मोटिवेट होता है या प्रेरित होता है और उसमें अपने अच्छा योगदान देने की कोशिश करता है।
1: कई बार ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी कई प्रतियोगिताओं में हार जाता है तो कहीं ना कहीं उसको मानसिक तौर पर टूट जाता है, तो जब कोई अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप अपने खिलाड़ी को जो आपका शिष्य है उसे किस तरह समझाते हैं या आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: देखिए, हम खेल के अंदर हार और जीत खिलाड़ी को हम हमेशा पहले जब प्रैक्टिस सेशन में रखते हैं तभी ये बहुत प्रिपेयर करके रखते हैं कि जरूरी नहीं कि आप जो प्रैक्टिस करके जा रहे हैं आप हमेशा इससे जीतेंगे
1: जी।
0: तो आप अपने आप को पहले भी ये तैयार करके रखिए कि हो सकता है कि हम हारेंगे, तो हम इस चीज की तैयारी पहले से भी करके रखते हैं जिससे कि उसके हारने पर
1: जी।
0: उसके ऊपर उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। और खिलाड़ी को हम एक प्रशिक्षक के रूप में एक चीज हमेशा तैयार रखते हैं, बेटा ये आखिरी नहीं है
1: जी,
0: ये आपकी हो सकता है शुरुआत हो, क्योंकि हर जीत का आनंद आपको हार से ही मिलेगा
1: जी।
0: तो आपने अगर कुछ हारा है तो आपको ये देखना है कि हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई, उसको आजकल आधुनिकता की जैसे मैंने बात की तो हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है या बहुत ज्यादा निगेटिविटी हो रही है तो हम काउंसलर रखते हैं और उनसे काउंसलिंग करवाते हैं साइकोलॉजिकल, और बाकी बतौर कोच हम एक गार्जियन के रूप में या उसके बेस्ट जो होता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरी नहीं है
1: जी,
0: इससे आगे भी मिलेगा। और हमारे बहुत से खिलाड़ियों ने देखिए ओलंपिक दर ओलंपिक पिछले में कुछ रहा उससे आगे अच्छा किया और आगे अच्छे करते गए हैं।
1: अब जो वर्तमान कुश्ती जो होती है, रेसलिंग होती है, उसमें भार वर्ग का बड़ा महत्व होता है, तो ऐसे में वेट मैनेजमेंट भी एक समस्या बन जाती है खिलाड़ियों के लिए, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं?
0: हम लोग बच्चों को एक प्रॉपर वेट में पहले से डिसाइड होता है कि हाँ आपको इस वेट में करना, ड्यूरिंग ट्रेनिंग
1: जी
0: जब हम लोग उसका प्रशिक्षण चल रहा है उसमें उसी समय हम उसके वेट के ऊपर बहुत नजर रखते हैं, डाइट प्रोग्राम क्या है
1: जी,
0: उसको किस वेट में लड़ना है, क्योंकि आज के समय में हमारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो सुबह शुरू होती हैं, ड्यूरिंग सेम डे वेट होता है और सेम डे पूरा टूर्नामेंट लगभग खत्म होता है। एक्सेप्शनल कुछ जो गेम्स हैं उसमें नेक्स्ट डे मेडल बाउट्स होती हैं, जैसा कि भी लास्ट ओलंपिक में हमारे साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें हम लोगों ने अच्छा अपना मेडल खो दिया
1: जी, जी, जी।
0: तो उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं और हमेशा वॉच रखते हैं बच्चों के ऊपर और उनके साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं कि बच्चे के आखिर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो किस वेट कैटेगरी के लिए फिट है। अब ऐसा नहीं कि बहुत बच्चा वेट जो है उसका स्ट्रक्चर उस तरह का है कि वो 60-70 किलो तक कर सकता है, उसको हम माइनस करके 55 में नहीं लाने की कोशिश करते, और ट्रेनिंग के दौरान हमेशा मॉनिटर करते हैं कि वेट बढ़ तो नहीं रहा घट रहा है। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की टीम होती है, न्यूट्रिशंस की टीम होती है, वो उसको एनालिसिस करती रहती है।
1: आजकल कुश्ती में वीडियो एनालिसिस और विरोधी खिलाड़ियों की कमजोरियों को समझने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, आप अपनी ट्रेनिंग में इन तकनीकों का उपयोग कैसे करते हैं?
0: आज अपनी गेम को सुधारने के लिए ये कि बहुत अच्छे संसाधन के रूप में है कि वीडियो एनालिसिस, कौन खिलाड़ी आया हुआ है प्रतियोगिता में, उसके पिछली बाउट्स परफॉर्मेंस क्या थी, उसकी वीकनेस कहाँ है, अपने खिलाड़ी की वीकनेस क्या है, अपना खिलाड़ी कहाँ पे स्ट्रांग है, इसको हम बहुत अच्छे से उसको यूज करते हैं। और टाइम टू टाइम हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अब वीडियो एनालिसिस का बकायदा एक सेशन रखते हैं कि हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक सेशन हमारा वीडियो एनालिसिस का है जिसमें हम सेशन वाइज या वीकली वाइज बच्चे की पूरी ट्रेनिंग रूटीन और उसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं और बच्चों को भी बैठाते हैं कि हाँ आपने यहाँ गलती की है, आपकी ये पॉइंट आपका स्ट्रांग है, अपोनेंट आपके कंपटीशन में ये आएगा तो इसका लड़ने का तरीका ये है, इन सब चीजों के ऊपर हम बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं जो हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे का हमें सेशन करना है तो हमें उसमें ट्रेनिंग करानी है तो क्या गलतियां हो रही हैं, बार बार गलतियां हो रही हैं, तुमको कैसे सुधारा जाए, तो ये चीज हम रिकॉर्ड करके लाते हैं, अदर टाइम में उसको बैठ के एनालिसिस करते हैं, फिर उस पे जाके हम नेक्स्ट सेशन में फिर काम करते हैं।
1: रेसलिंग में चोटों का जोखिम बहुत अधिक बना रहता है, खिलाड़ियों को इंजरी से बचाना पड़ता है, तो आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल में किस तरह के सुरक्षा उपाय और वार्म अप रूटीन शामिल किए जाते हैं?
0: प्रॉपर ये है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले प्रॉपर वार्म अप ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि खिलाड़ी प्रॉपर वार्म अप हो और उससे पहले उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कि आज ट्रेनिंग के लिए वो कितना रेडी है, हो सकता है कि लास्ट सेशन उसके ऊपर बहुत ओवरलोडिंग हो गई हो या मेंटली कोई और भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से वो ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो हमें सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले उसकी मेंटल स्टेटस को देखना पड़ता है कि ये मेंटली वो कितना फिट है, उसके बाद अगर उसको कोई मेंटली दिक्कत है या कुछ है तो उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग लोड कम कर सकते हैं या अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट डे आता है कि ट्रेनिंग से बचाना है तो प्रॉपर वार्म अप किया, एरर्स कम करें उसके ऊपर ध्यान देते हैं, अगर स्किल प्रॉपर तरीके से कर रहा है, अगर एरर नहीं नहीं है उसमें, तो वो इंजरी कम से कम लगने के चांसेस हैं। जब गलतियां करेगा, और उसका सबसे बड़ा जो चीज होती है मैनेजर, बड़ा लोड, ट्रेनिंग लोड क्या है, मेन ये होता है। अगर ओवरलोड होके आया हुआ है प्लेयर, तो आप लोग भी जैसे काम करते हैं, अगर ओवरलोड है तो नहीं कर पाएंगे उस चीज को, और गलतियां होती हैं। तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में गलतियों का मतलब फिर चोट होता है।
1: अच्छा, अब जब कोई गेम चल रहा होता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आखिरी मिनट बचे हुए हैं, आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं और सिर्फ एक दो पॉइंट्स का ही अंतर है, तो ऐसे में आपने मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, तो ऐसा अगर जब कोई मौका आता है, तो चूंकि ये आम बात है खेल में आना, तो उसके लिए खिलाड़ियों को आप किस तरह से तैयार करते हैं?
0: देखिए, कंपटीशन में तो हम प्लेयर्स को बहुत मेंटली स्ट्रांग करके भेजते हैं। हम मैच चल रहा है, कभी हो सकता है कि आप एक दो पॉइंट से आगे हैं, एक दो पॉइंट से पीछे चल रहे हैं, लास्ट है। जैसा कि हमारे उस समय पे खिलाड़ी की मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, छोड़ना नहीं है। हमारे वर्ल्ड में दो मेडल आए, एक ओलंपिक में और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और जो कंडीशन आप बता रहे हैं मेन कंडीशन वही थी। हमारे रेसलर्स साक्षी मलिक 2016 लास्ट मिनट मेडल बाउट एकदम लूज कर रही, मेंटली स्ट्रांग थी
1: जी।
0: उसने अपना पूरा परफॉर्मेंस देने की कोशिश, तो एज ए कोच हम ये कहते हैं बेटा आप अपना जो बेस्ट कर सकते हो, जितनी आपके पास वो आप वहां पे लगाओ। साक्षी मलिक ने लगाया था, मेडल लाया। नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 12-4 से हार रहे थे
1: जी।
0: लास्ट में बाई फॉल करके 30 सेकंड अंदर उन्होंने कुश्ती जीती। तो उस समय मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर प्लेयर डिपेंड करता है, और एज ए कोच जो भी साथ में होता है, हमें अदर कोच है, जो भी टीम कोच गया, वो फिर उस कंडीशन में ये कहता है बेटा आप अपना ऑल आउट करो, जितना है आप अपना पोटेंशियल, जो भी आपने सीखा है आप वो लगा दो वहाँ पे।
1: ऋषि जी, अभी आपने साक्षी मलिक जैसे बड़े महिला रेसलर की बात की, तो भारत में महिला कुश्ती का ग्राफ पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। आपके अनुसार महिला पहलवानों को जमीनी स्तर पर आगे लाने में क्या मुख्य चुनौतियां हैं और उनका क्या समाधान है?
0: मुख्य चुनौतियां तो देखिए हमारे पास सबसे ये थी कि लोग महिलाओं को कुश्ती में भेजना नहीं चाहते थे
1: जी।
0: मगर आज के परिवेश में जो माहौल चल रहा है हमारे यहाँ, लोग डोमिनेट है कि हाँ हमारी बच्चियां जाएं
1: जी।
0: और जिसका परिणाम आप अगर हम राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बात करें, तो विगत वर्षों में हमने ये देखा है कि पहले था कि हरियाणा की गर्ल्स ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, और जबकि हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां महिलाओं के लिए बहुत पाबंदी हुआ करती थी, मगर महिला, और उत्तर प्रदेश आज के डेट में, महाराष्ट्र भी है, हिमाचल भी है, राजस्थान भी है, बिहार है, झारखंड जैसे प्रदेशों से भी हमारे यहाँ महिला कुश्ती बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है उसके ऊपर। और हम चाहेंगे कि गार्जियन से भी अनुरोध करेंगे कि आप बच्चों को लाएं, कुश्ती बहुत अच्छा गेम है। महिलाओं के जहां तक लोग कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा गेम है। आप ना लाइए मेडल के लिए, मगर आप बच्चे को अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए लेकर आइए।
1: अच्छा है, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को रेसलर बनाना चाहते हैं, तो किस उम्र में बच्चों को इस खेल में डाल देना चाहिए, प्रवेश करा देना चाहिए?
0: देखिए, एक कुश्ती के विषय में कहा जाता है कि बहुत पावर गेम है
1: जी,
0: स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है, मगर स्किल भी है। तो स्किल सीखने की एज हमारे यहाँ बच्चों की लगभग 10 साल से शुरू हो जाती है। 10 साल तक बच्चा हर चीज को समझने लगता है, उसको सोचने की क्षमता अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। तो हमारा कहना कि 10-11 साल की उम्र से आप बच्चे को, बाकी बचपन से बच्चे अखाड़े आते हैं जाते हैं, तो वो है 10-11 साल की एज से प्रॉपर उसको, यहाँ अब ये प्रोफेशनली इस तरफ जाना चाहता है
1: जी।
0: तो उस तरफ आप उसको डाइवर्ट करें।
1: इस वर्ष आप एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती का भविष्य किस प्रकार देख रहे हैं?
0: एशियन स्तर पे देखिए हमारी कुश्ती बहुत अच्छी है, ओलंपिक में हमारे पास मेडल कम रहते हैं, मगर विगत कुछ वर्षों से हमारे पास एशियन गेम में काफी अच्छे मेडल्स आए, गोल्ड मेडल्स लेके, और हम अच्छी कंपटीशन में रहे हैं। इस बार भी टीम का सिलेक्शन हो चुका है, और हमें लगता है कि इस बार भी हमारे 5 से 6 गोल्ड मेडल और बाकी और सिल्वर ब्रॉन्ज में हम रहेंगे
1: जी। ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं प्रदेश के स्तर पर भी जिनके बारे में कहना चाहेंगे कि नहीं, वो कुछ बेहतर ही करेंगे इस एशियन गेम्स में?
0: एशियन गेम में से अभी तो जो सिलेक्शन हुआ, जो टीम हमारी बनी है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा उम्मीद अपने अमन सहरावत, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं
1: जी,
0: उनसे उम्मीद है। अभी एक 65 kg में सुजीत कलकल अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मुकुल दहिया है, दीपक पुनिया ओलंपियन है जो लास्ट ओलंपिक में एक दो अंकों के अंतर से मेडल से रह गए थे, उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। और लड़कियों में बात करें तो निशा दहिया है, अंतिम पंगाल और मानसी, ये कुछ महिला पहलवान है हमारी, जो हमें पूरी उम्मीद है कि ये मेडल और गोल्ड मेडल तक के लिए हमारी दावेदारी ये लोग करती हैं।
1: उत्तर प्रदेश में आप कुश्ती या रेसलिंग का भविष्य किस तरह से देख रहे हैं? कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो भविष्य में अपने आप को निखार सकते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं?
0: हमारे उत्तर प्रदेश से अभी तो एक सीनियर वर्ग में जॉन्टी है, बहुत अच्छा सीनियर लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहा है अभी एशियन गेम्स ट्रायल में, वो दीपक पुनिया से ही हारा
1: जी।
0: और बाकी जूनियर स्तर पे भी हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, अभी एक जयवीर लड़का है जिसने एशियन बहरीन में हुए थे उसमें गोल्ड जीता था।

0: देश के लिए,
1: जी जी
0: यूपी का है, सौरव है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो हमें लगता है कि आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर,
1: जी
0: चंचल सिरोही है उत्तर प्रदेश पुलिस की है और यूपी की टीम से खेलती है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी टीमें हैं हमारे पास, बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल पुलिस टूर्नामेंट में जिन्होंने देश के लिए भी मेडल जीता था, और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि वो भारतीय टीम में भी आएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: जी जी ऋषि जी, कुश्ती विषय पर हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना खेल दर्पण का आज का अंक। चलते चलते मैं आपसे बस यही कहूंगा कि खेल चाहे कोई भी हो, वह हमें जोड़ता है, दीवारें तोड़ता है और सिखाता है कि आखिरी सीटी बजने तक कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद है श्रोताओं को कार्यक्रम के दोनों ही भाग पसंद आए होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर दीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा कुछ और कड़क खबरों और खेल के रोमांच के साथ कार्यक्रम खेल जगत में। तब तक देखते रहिए फुटबॉल, सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ और मुस्कुराते रहिए और जोश से कहिए लेट्स फुटबॉल। शब्बा खैर, बाय बाय, नमस्कार।
3: दर्पण। अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर तैयार किया गया और प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज व FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि।

कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने। सुनना चाहा है आप सभी ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतेक विरक और मीका विरक। शांति कॉलोनी रुद्रपुर से सुरेश कुमार, अजय कुमार, शिखा शर्मा, प्रियंका, शिवानी लता, राजू सैनी, राजेश कुमार व इनके सभी साथीगण। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ और शाइना शर्मा। चौधरी ढाबा बिलारी से रजा अहमद, इसरत जहां, आरिश हुसैन और आयत जहां। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, असलम सैफी। इसी के साथ गंज जुड़वारा से शमशुल कमर और शाहीन कमर। जिला अमरोहा नई बस्ती पतेह खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सलीम, फहीम सिद्दीकी, यासिन अंसारी और सुदेश चौहान। भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। विघ्नेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान बरेली कैंट रेलवे कैबिन के पास चनेहटी बरेली से। सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खां, राजिया, रूमा, बॉबी, शमा, मिक्की, बुशरा, आसिम। इसी के साथ जिला अस्पताल के पास से गजन खान, शहजादे शकील, मंजूर खान, किरण वजीर, राजिया गफ्फार और नसीम खान। नांदेड़ से प्रभाकर और आरती। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला धनजे और गायत्री धनजे। इसी के साथ खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। पंजूसराय संबल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। आप सभी फरमाइशकर्ताओं के फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से। इस गीत के गायक कलाकार थे अरिजीत सिंह। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जिंदगी तेरे नाम से। इस गीत के गायक कलाकार हैं के। सुनना चाहा है आप सभी ने। अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह और गगनदीप कौर। रामपुर लिसनर क्लब नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हम्माद। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी। मोहल्ला हलवायान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदरानी और हिना कौसर। अहमदाबाद रोड गुजरात से बहादुर प्रजापति, गोपाल प्रजापति, नंद किशोर, संजय, राजू, कुमारी भारती, कुमारी आरती, चुटकी, बबली, करण व इनका समस्त परिवार। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव दास और कीर्ति भानु। मुल्लाखेड़ा तहसील बिलासपुर जिला रामपुर से दीशान खान, आमिर खान, रईस खान, हबीब खान, बंटी, राजू, महबूब खान, जाहिद अली और नसीम जहां।

गनगोला दातागंज से। आलम खान, नेहा खान, साहिब खान, वारिश खान, अलम शेर और बली अहमद खान। जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से। बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। मोहल्ला चामुंडा, कस्बा नरौली से। इंतजार राही, शादाब राही, महताब निशा, मुस्ताक अंसारी और शहजाद अंसारी। राजद्वार रोड, मीठे कुएं, रामपुर से। आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, फिरासत, अर्पित, अभय, रिया और आरुष। बिलराम गेट, कासगंज से। एम असलम सैफी, जैबुन निशा, अकरम सैफी, आबाद खान। बहेड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम, कहकशा, दानिश आदिल और शफाक। ग्राम व पोस्ट, हररपुर मटकली, जिला बरेली से। शारून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, सर्वेश सैनी और डीजे प्रधान। मोहल्ला बारादरी, महमूद खान, रामपुर से। भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फौजिया, रोशनी, असद भाई बहन, फिरोजा, मुस्कान और शाइना बी। गोला बाजार, बक्सर से। श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर से। मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और ऋतिक। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक। मोपका भाटापारा से भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित, सुमित्रा साहू। इसी के साथ मोबा रायपुर से भूपेंद्र कुमार साहू और मंजू साहू। आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में ये गीत फिल्म जिंदगी तेरे नाम से। इस गीत को गाया है के ने।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म जिंदगी तेरे नाम से। इस गीत को गाया था केके ने। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तुमसा नहीं देखा से। इस गीत के गायक कलाकार हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल। सुनना चाहा है आप सभी ने। अमरपुर छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई, प्रभुलाल बागरी। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, संजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सपना, शिवी, सलोनी और राजू। शीतला भवानी माता वार्ड खंडवा से अनिल विंचुरकर, मंगला शोभित विंचुरकर। इसी के साथ उदयनगर से मोहित रत्न पारखी, स्वाति मिष्टी और मनस्वी रत्न पारखी। ओल्ड लिसनर ग्रुप बरकाकाना से मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, शाहीन सुल्ताना, अफजाल ताज और तस्नीम। पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, ममता चौधरी, ओमवती भारती, बेटी कनक, नकुल, नैन्सी और सारांश।

बोलखेड़ा, उज्जैन से विनोद मूर्त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूर्त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूर्त। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान, इंशा खान। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, पथिक, सोनाली और कृष्ण। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से साबित खान, महेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू, प्रतीक कुमार और धर्मेंद्र प्रजापति। बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। गांधी चौक राजस्थान से बवलेश पवार, डैनी पवार और मनीष। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान। शनिवार का बाजार पाकवाड़ा से मजाहिर हुसैन अंसारी, रईसा नाज और मुजक्किर। सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। सुंदरखेड़ राजमाता नगर महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खान, शाहिदा परवीन, इमरान खान, रेहान खान, इकराम खान, समीना बी, आसिफा और शबीना। रेलवे कॉलोनी भटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक व समस्त डागला परिवार। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और जुनैद अब्बासी। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवर, अंजलि केवर, रुद्राणी केवर और कृष्णा केवर। इसी के साथ साबरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे और पुष्पाताई नारे। श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में ये गीत फिल्म तुमसा नहीं देखा से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने।

0: ये था कार्यक्रम गीतांजलि, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 11 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में हिंदी समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark in Arm campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitaye, Sarvajan Sukhaye has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. Ranath also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer on the sidelines of G7 summit in Avignon, France. Tomorrow, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of operations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses and advanced contingency plans for low rainfall districts. Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi during which consensus was reached among six states on the long-pending Kishaw multi-purpose dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a memorandum of understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Kishaw project will be placed before the Union Cabinet for approval. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari today announced that the historic Eastern Frontier Rifles EFR will soon be revived with more than 1,000 Gorkha youths to be recruited into the force. Addressing a public rally in Kurseong and the Darjeeling district to accord a grand welcome to the newly elected Chief Minister in the Darjeeling Hills, Mr. Adhikari paid tribute to the valor and sacrifices of Gorkha soldiers in defending the nation. India and Japan have adopted the rules of implementation for the joint crediting mechanism or JCM under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation on climate action, greenhouse gas emission reduction and sustainable development act initiatives. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the memorandum of understanding reached between the United States and Iran. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in Group 1 clash at New Jersey in the United States tonight. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ पर एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:50 पर हम अपनी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ

आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:50 पर हम अपनी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ